एक मधुर शब्द, एक सच्ची बात और एक सकारात्मक विचार किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जो प्रेरणा का संदेश दें।

0: अस्य मासस्य षष्ठः दिनाङ्कः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शन परकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढे भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ.

0: शंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह चजबतूज मेजबान सकीना तो मैसेज छे
1: मेराजुद्दीन
0: तो बोजन वाले वनो कंट्रोल रूमस मन छे असितियाज नसीर अहमद इरशाद अहमद नायको।
1: सकीना जी, ये सुलि सुबह संघर्ष फलान पान सालन गाश छु पेवान तो दिलस छे नई आश बेदार गसान।
0: बिल्कुल महराज, यही आश तो उम्मीद हत इंसान निंद्र वथान से आज पकनाओ सो कम ब्रो यस रात अदली रोज बे सुबह सुबह कह रज खबर या रज शेश इंसान बोजान या रुत के चीज तह नश वातान पत दिल खुशी सपदान।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही वनो तह। सकीना जी, आज आतवार मामूल मुताबिक आसन सन बोजन वल विन कन कन दीर बोजान।
0: सही कत अच्छा कहें तिशा आतवार हिंद कोर तह जिकिर तो आतवार दोस कें दोस अंगन अशनावन निश त खबर अतरा हिन तो कें दोस या वनो वारिया दोस या आजकल वारिया टूरिस्ट कश्मीर तरान या यह हेको वन कि आम ये लूक पन लोकल तम टूरिस्ट स्पॉटन कुन ग सैल कर मगर ये वनो कि नबर वनस टेम्परेचर हाई बाकी स्टेटों पर योर लूक
1: जोगदर
0: या बाकी मुल्को पे ये टेम्परेचर हाई गान सानी मौसम बदलान हेको वन कि पांच शे लट।

0: शाइन बात है जब हम डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करते हैं, केचविद, पहलगाम, गुलमर्ग, आरबल, कोकरनाग, वेरीनाग, ऐसी डेस्टिनेशंस की तलाश जारी है जहां पे जाया जा सके और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, हिडन है, तो उनको मंजरियाम पे लाया जाएगा, वहां पे भी आप जा सकते हैं। अब कुछ आलमी सतह की खुशखबरियां हैं जो हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे। ये सुनने वालों को बता दें कि यूरोप में नदियों को बहाल करने की तारीखी मुहिम के तहत 2300 मील से जायद आबी गुजरगाहों को दोबारा जोड़ा गया है ताकि जंगली हयात और आबी मखलूक की अफजाइश को बेहतर बनाया जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तिब के शोबे में एक पेशरफ्त हुई है
0: जी, शेयर कीजिए।
1: साइंसदानों ने लबलबे की कैंसर के इलाज के लिए एक नई दवा का कामयाब तजुर्बा किया है
0: जी।
1: इस दवा ने मरीजों के जिंदा रहने की औसत मुद्दत को दोगुना तक बढ़ा दिया है जो कि इस मुहल्लक तरीन बीमारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है।
0: बिल्कुल, वाकई में पेशरफ्त है और उन मरीजों के लिए खुशखबरी है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और जो मुख्तलिफ बीमारियों से जूझ रहे हैं। और हमेशा ये बात होती है जब कश्मीर में खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है, पचवना की ये चुनती उठ की मन्नी अबर सहूलत मैसर होते हैं तो वाकई में ये खुशी की खबर है। अब काबिल तजदीद तवनाई की बात करते हैं और ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। आप देखो होगा जितने भी संडेज लगभग मैंने ड्यूटी की है, इस बारे में बात करती हूँ जब हम खुशी की खबरों की बात करते हैं, गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। कश्मीर में भी देखा गया है कि इट्स डिपेंडेंट इसी पावर पर, पाकिस्तान कहां पे जाता खाने को, उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन दूसरा मुतबादिल भी अगर आपके पास अवेलेबल है उसको अवेल कीजिए तो आप परेशानी से बच सकते हैं। तो ये बात, अब लिथुआनिया एक कंट्री है, उस जैसे मुल्क ने फॉसिल फ्यूल पर इनसार कम करके अपनी बिजली की निसफ जरूरियात काबिले तजदीद तवनाई यानी शमसी और हवाई तवनाई से पूरी करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और जितने संडे मैंने किया मुख्तलिफ कंट्रीज की मैंने बात की, आज लिथुआनिया की बात है, तो ये कह सकते हैं कि कश्मीर में भी कई लोगों ने ये जो है जिन काबले शमसी तवनाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन तादाद उतनी नहीं है, करना चाहिए। और एक और आखिरी खबर ये है, इंडोनेशिया में सयाहत के लिए हाथियों की सवारियों पर पाबंदी आयद कर दी है जिससे जानवरों के हकूक के तहफ्फुज़ में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। यहाँ जब हम इंसानी हकूक की बात करते हैं, लेकिन जो अलम्बरदार है पूरी दुनिया की इंसानियत के, वो जानवरों के तहफ्फुज़ की भी बात करते हैं। तो बातें और भी जारी रहेंगी, कुछ और खबरें, कुछ और बातें, कुछ और कह सकते हैं इंफॉर्मेशन अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल एक ऐसा ट्रैक हम आज अपने सुनने वालों के लिए पेश करेंगे। पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि इसमें आपको एक टांगे की चाप सुनने को मिलेगी। म्यूजिक ट्रैक ऐसा है, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि बुलवार्ड साइड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जब भी कभी मैं घूमने फिरने जाती हूँ तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि वहां उस साइड से जाया जाए, गोड़ा वहां पर स्टार्ट किया। एक जो मुझे लगता है कि 0% भी नहीं है, मुझे लगता है कि टांगा सर्विस उस साइड से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन ऐसी है कि नजारा ऐसा है, टांगे पर बैठ के खूबसूरत नजारा आप एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल इस गीत को एंजॉय करके आप ये जहन में रखिए कि आप बुलवार्ड साइड से जा रहे हैं, जो आपकी पसंदीदा डेस्टिनेशन है उसका रुख कर रहे हैं, ये गीत सुन के।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जी जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो से ऑन किया उनको बता दें कि आप लाइव शो पयामी सुबह एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। मैं हूं आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ है मेराज। आज चूंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है और इस दिन का बुनियादी मकसद अवाम को मुजर सेहत, खराब और गैर मयारी गजाओं से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे आगाह करना है, ताकि एक इंसान जो है वो अवेयर रहे कि उसकी सेहत की अहमियत क्या है, ग़िज़ा कैसा होना चाहिए, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है।
9: सही, बिल्कुल सकीना जी। ये भी अपने सुनने वालों को बता दें कि अक्वामे मुताहिदे ने WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से पहली बार 7 जून 2019 को ये दिन मनाया था। आज के दिन का मकसद ही यही है कि हमें अपनी खुराक के बारे में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए ताकि सेहतमंद रह सके।
8: देखिए मैक्सिमम लोग टंग के चटकारे को बहुत अहमियत देते
9: सही,
8: हैं।
9: सही।
8: जेको टाथ ना, तो बस ये एक ठीक है ना, मगर ये है कि आज चूंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है,

0: कंजूस है। कुछ ये है कि वो जहां पे जो चीज देखते हैं खरीदते हैं कि कितने फिरोज ठीक, मेरी फिटनेस कैसे रहेगी। और कुछ दोस्त ऐसे हैं वो जो शिकायत करते हैं कि रिजल्ट वो भी सही है। तो उनके लिए एक टिप है हमारी कि अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, कुछ खाने की बात करते हैं, कमजोरी टिश्यू खून टिश्यू काम, तो उनके लिए मैं ये एक बात बताऊं कि सुबह जब आप उठें, ये चीजें तो बहुत सस्ती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं, वो ये कि खाली पेट भुने हुए चने और गुड़ का इस्तेमाल एक कदीम और ताकतवर नुस्खा है। ये खून की कमी, पट्टों हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमागी सेहत के लिए भी एक बेहतरीन मुकम्मल सप्लीमेंट है। तो इस चीज का अगर इस्तेमाल करेंगे चना और गुड, ब्रोज गोर खिमारी है मुमकिन उस गोई काम। और ये ट्रेंड अब आ गया है जब हम करते हैं पम्पकिन सीड्स की बात, खरबूज बेल अनान, गुलाफ्ता बेल अनान, ब्रो तुम त्रावान कुंदरन सी ऑर्गेनिक चीज अस गरन मज मौजूद तुम बे अनान। कुछ आप भी शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हैं।
1: आज संडे है और आज हम गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड
0: जी जी कोई और खबर
1: खेलेंगे हवाले से। जी जी बताइए, भारत की नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रगानंदा ने नॉर्वे शतरंज 2026 जीत कर तारीख रकम की और इस टूर्नामेंट के पहले भारतीय चैंपियन बन गए। ये भारतीय खेलों के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है,
0: बहुत ही एक सराहने लायक बात है। देखिए जब कोई बच्चा या कोई खेल खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो उसकी पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। अब खबरों का वक्त हो रहा है।
1: बिल्कुल।

0: 2020 में पब्लिश किया था और 2021 में ये यहाँ पर श्रीनगर में ही वो ओरिजिनल किताब रिलीज हुई थी। उसके रिलीज होने के बाद कुछ अफसाने बहुत पॉपुलर हुए, कई दोस्तों का ये इसरार था और अंग्रेजी में भी अगर इनका तर्जमा हो जाए तो उन्होंने इस तर्जमा किया उसका, इस किताब का जो ओरिजिनल कहानी है इसमें, ओरिजिनल किताब है जो कलेक्शन है उसमें 9 कहानियां हैं, लेकिन जो अभी अंग्रेजी का तर्जुमा है उसमें मेरी कुछ जो रिसेंट नई वाली कुछ कहानियां हैं वो भी शामिल की गई हैं।
1: डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस जम्मू कश्मीर तरफ से जम्मू कश्मीर यूनिटी हिंदी डिग्री कॉलेजन में अंडर ग्रेजुएट तो इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम में गोडनिक राउंड किस अलॉटमेंट लिस्टस तहत ऑनलाइन फीस दाखिल करने का आखिरी तारीख 8 जून यानी पगह शाम के 5 बजे तक बढ़ाने आमुत। डायरेक्टेड कॉलेजेस जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बसीरन फीस जमा करने वाले उम्मीदवार वोन तम कर दस्तावेजन हिज वेरिफिकेशन या तस्दीक बापत पन्न अलॉट करना आमत कॉलेजन में 8 जून पे 10 जून तम रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक महकम टू व्हीलर यानि मोटरसाइकिल तो स्कूटर बेतरी चलावन वाले हिंद तरफ सपदान खिलाफ वर्जी रुकावने बापत प्रथ मुमकिन इकदाम करान। एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद भट्टन वोन महज जी सवार हकन टू व्हीलरस पे सफर कर तिंद बापत हेलमेट लागन जरूरी छे। आखरस पे खबर हॉकी में भारतीय मर्दन हिंद टीम 14 वरी वंस तम कि खिलाड़ियों हिंद एशिया कप त्रेम फिर जूनमुत। जापान के शहर काका मिघारस में गिन्ने आमत फाइनल मुकाबलस में दुत भारतन जापान अके मुकाबले चोरो गोलों सत शिकस्त। बेपास भारतीय जनान हॉकी टीम जनूबी कोरिया 3-0 सत हारन लय हंद मेडल जूनमुत। अत सत वातन यह खबरनामा अंत।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर। सुबह के 7:55 और 30 सेकंड हुए हैं। पेश है तफसील अब के बाद आज हमारे यहां से नशर होने वाले बकिया प्रोग्रामों की। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा डिस्कशन टाइम। आज के प्रोग्राम का मौजू है सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल। शुरका हैं फिरदौस अहमद लोन, इदरीस बख्तियार, शेख ओएस तारिक और प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं मुनीर अहमद डार। शब 10 बजे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश होगा आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगे जावेद अंदराबी। सुन तारीख इस प्रोग्राम में सुबह 8:15 पर डॉक्टर अजमल शाह और डॉक्टर सतीश विमल के दरमियान गुफ्तगू होगी। मौजू है वाई कश्मीर इज नॉट इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सुबह 8:45 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा खामोशी कुदरत की जुबां है। आज की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। जेके बैंक डायरी ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:45 पर। सुबह 10 बजे एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा रेडियो साथी। बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम होनहार सुनते हैं सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे सज्जूद सैलानी का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा पेश होगा जोलान। चंद उर्दू गजलें आप सुनेंगे दिन में 12:10 पर और चंद कश्मीरी गजलें आपके लिए पेश की जाएंगी 12:40 पर। दिन में 1:10 पर मगरबी मौसीकी का हफ्तवार प्रोग्राम पेश होगा संडे रिक्वेस्ट शो।

हमारी शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम नई मंजिलें ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 2:30 पर। पहाड़ी प्रोग्राम 4 पेश होगा। पंजाबी प्रोग्राम नश्र होगा 4:30 पर। गुजरी प्रोग्राम रोज की तरह शाम 5 पेश होता है। शाम 6:05 पर आप सुनते हैं प्रोग्राम गनी बाय निंद खतरा। हालात हजरत का प्रोग्राम शहरबीन हर रोज नश्र होता है शाम 7 और वादी की आवाज प्रोग्राम रात 8 ब्रॉडकास्ट होता है। सामने थी तफसील। अब के बाद आज हमारे यहां से नश्र होने वाले बाकी प्रोग्रामों की सुबह के 8 रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नश्र होगा।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने

0: कहा है कि ये छात्र और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

0: मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का

0: रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय

0: रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दोतरफा तआवुन को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राज़ील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफ़ी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपये होगी जबकि इससे पहले ये 913 रुपये थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड़ के शुमाली ज़िलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछलियाँ पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरिकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जैक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इकतसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज़ माहिरीन इकतसादियात और पॉलिसी माहिरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खित्ते में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक NCR में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। आखिर

0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैनुल अक्वामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। इस आकाशवाणी हम श्रीनगर स्टेशन।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
3: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्षा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408000।
2: सामिनी मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। सामिन, वो जिस तरह एक गाय एक रस्सी से एक जगह बंधी हुई होती है, एक दायरे में बंधी होती है, उसकी मंजिल है कि पेट में भरपूर घास को जमा करके चुगाली कर ली जाए। अगर मैं ये कहूँ कि वो इंसान जो इसी तरह बंधा हुआ है रस्सी के साथ नहीं बल्कि अपने ख्यालात के साथ, कस्टम्स के साथ, हालात के साथ, मामलात के साथ, समझौते के साथ, असर के साथ, तकदीर और तदबीर के साथ, मजबूरियों के साथ, निबाह के साथ वगैरह वगैरह। मगर अहम बात यह है कि अपने उसूल, अपने फिक्र, अपना हाल, अपनी जिम्मेदारी, खूब ये सब चीजें किसी न किसी तरह से इंसान को अपने अपने दायरे में बांध देते हैं और बांधी हुई रस्सी की लंबाई ही किसी का दायरा तंग या वुसत बयां करते हैं। अगर हम यही बात अलग तरीके से कह सकें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी फिक्र, अपनी सोच इंसानी दायरे को तंग या वुसत फराहम करती है। समीन, माँ बाप जब हमारे दायरे में हमारी रखवाली करते हैं तब तक उनकी कोई अहमियत नहीं होती। जब तक इंसान के अंदरूनी आजा ऑप्टिमम सतह पे काम करते हैं तब तक उनकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत तब होती है जब हमारे आजा हमारे इरादों का साथ नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि इंसान हर वक्त हर चीज के बारे में गौर करें, रोजाना फिक्र करें, अपने बारे में, अपनी जिंदगी के पर्पस के बारे में, हर सूरत में नेचर के बारे में फिक्रमंद रहे कि कुदरत मुझसे क्या चाहती है और मुझे कुदरत को अपने हक में लाने के लिए क्या क्या करना होगा। इसी तरह के फिक्र इंसान को जिस्मानी तौर, नफसानी तौर और रूहानी तौर ताकतवर बना सकती है। सामीन, स्टूडियो में तशरीफ फरमा है वादी के नामवर यूनानी तबीब डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
2: डॉक्टर साहब, फितरत या नेचर को समझने का आसान तरीका क्या है?
4: देखिए रिफत जी, मैं अगर सोया हुआ हूँ
2: जी
4: तो मेरी जो तवानाई जरूरत है जिसको मैं बेसल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कहता हूँ वो 1 कैलोरी 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से मुझे जरूरत होती है।
2: बिल्कुल,
4: यानी 1 घंटे
2: जी।
4: इसका मतलब अगर मैं बैठा हूँ तो मेरा खर्चा करीबन 2 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर
2: जी।
4: अगर मैं खड़ा हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में तो 3 कैलोरी खर्च।

0: से है। अगर मैं चहल कदमी कर रहा हूँ तो चार
1: जी,
0: तेज तेज पांच छः, और अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ
1: जी,
0: यानी जिसको हम कहेंगे कि पानी में तैरता हूँ, तो तैरने की रफ्तार जो है उसमें मेरा खर्चा 9 किलो कैलोरीज तक हो जाता है
1: जी।
0: अब यहाँ से मेरी बात शुरू होती है। बात क्या है, पानी का जो नेचर है
1: जी,
0: वो जिंदा इंसान को डुबोने के लिए सारा जो उसकी तवानाई है वो खर्च करता है, ये उसका नेचर है पानी का।
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई डूब गया यानी उसको तैरना नहीं आया
1: जी,
0: तो मर गया पानी में डूब के।
1: बिल्कुल।
0: और जो मर गया उसके बाद पानी का नेचर क्या है कि लाश को ऊपर उठाए, ये दोनों पानी की खसलतें हैं।
1: बिल्कुल।
0: इंसान की खसलत इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हैं ना
1: जी।
0: तो इसका मतलब हमें पानी का नेचर देखना है, पानी में गोता लगाने से पहले समझना है, यानी आप सबसे ज्यादा ताकत लगाते हैं उस पानी के नेचर के अगेंस्ट। जब आप अपना सर्वाइवल सोचते हैं कहाँ, जब आप पानी में तैरते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब वो तवानाई आप में नहीं है, जब आप उस नेचर के साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो तब आप डूब सकते हैं।
1: क्या बात।
0: और जब आप डूब गए तो फिर ये पानी का नेचर ये है, उसकी खसलत ये है कि वो आपको अपने ऊपर उठा देती है, आप तैरते हैं बाद में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसी तरह से हमें नेचर को समझना है। नेचर को समझने के लिए मुझे पूरी कायनात को, अपने दायरे को, अपनी जो हसीयत है उसको समझना है कि हम एक जर्रा के बराबर हैं। पूरी दुनिया, यानी जेम्स जो टेलीस्कोप है उसने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया कितनी बड़ी है, और हो सकता है इसके बाद भी कोई, जेम्स वेब के बाद भी कोई और टेलीस्कोप आ जाए, तो हमें लगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप भी कुछ छोटा दिखा रहे थे, दुनिया या कायनात इससे बहुत आगे की चीज है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम तो छोड़ दीजिए, ये गैलेक्सी भी कहीं बिल्कुल जो है नुक्ते की तरह कहीं पर दिखाई देती होगी या नहीं देती होगी, तो बहुत छोटा सा नुक्ता
1: जी।
0: तो इसका मतलब फिर हम और हमारी हैसियत क्या है, तो पहले हमें ये बात समझनी है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद हमें ये समझना है कि यार हम एक इस दुनिया में, ये जो जिंदगी का एक खेल है, तो ये खेल भी हमारा नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत।
0: अगर हम ये समझते हैं कि हम खेल रहे हैं, तो एक और गलत फहमी
1: है हमारी। बिल्कुल।
0: ये खेल भी किसी और का है, और हम बिल्कुल, शायद मैं अगर प्यादा कहूँ उस चेस बोर्ड का, तो शायद वो हैसियत भी नहीं है।
1: क्या बात है।
0: तो हकीकत ये है कि अब हमें अपनी हैसियत को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कि हमें इसी टाइम में कुदरत ने क्यों लाया, किस पर्पस से लाया, और वो पर्पस क्या हमारा है, नहीं है, बल्कि हमें एक नाचीज को एक मौका दे दिया,
1: मौका दिया गया है।
0: जैसे आपने किसी पे जिंदगी में एहसान किया होगा, और एहसान के बदले उसने कुछ बुरा किया होगा
1: जी,
0: तो जाहिर सी बात है आपके तबीयत में भी कुछ उल्टे सीधे ख्यालात उसके बारे में डेवलप तो हो जाएंगे।
1: सही बात है।
0: इसी तरह से एक नाचीज हम भी थे जब हम पैदा न हुए थे, और किसी बहुत बड़ी ताकत ने हमें कोई चीज बनाया, हमें एहसास दे दिया। एहसास किस चीज को दे दिया कि एक नुतफे से जो शुरू हुई जिंदगी, वो अब 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, क्विंटल, इससे कम, इससे ज्यादा, एक बोझ के वो बोझ इसके साथ रह गया।
1: बिल्कुल।
0: तो इसका मतलब वो जो एहसास है, उस एहसास का नाम इंसान हो गया
1: जी।
0: हमें अपने एहसास को हमेशा जिंदा रखना है, जगाते रखना है।
1: बिल्कुल।
0: कहीं हमें ये बोझ दबा न दे, कभी हमें और वो जो ख्वाहिशात हैं
1: जी,
0: वो जो शैतानी वसवसे हैं, वो हमें कुदरत से दूर न करें, क्योंकि अगर दूर उन्होंने किया तो शायद हम फिर जो है उस लायक भी न रहें कि हम किसी को, यानी कुदरत को मुंह दिखाने के काबिल
1: भी न रहे।
0: तो मैं ये समझता हूँ अभी एक चंद

0: दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक मौलवी साहब थे, पीर साहब
1: जी,
0: वो मदीने में ज़ियारत करने जाते हैं तो कोई कपड़ा अपने मुंह पे रखते हैं और वहाँ जो रोज़े पाक है
1: जी,
0: तो जो अपना चेहरा जो है वो छुपा के जाते हैं। तो मरीदों ने कहा आपने चेहरा क्यों छुपाया, कहा कि इतने लग्जिशें मुझसे हो चुकी है, कौन सा मुंह दिखाऊं।
1: क्या बात है।
0: तो जाहिर सी बात है, जब हमारा यकीन इस बात में है कि मश्शर के बाद हमें फिर से उठ खड़ा होना है,
1: बिल्कुल,
0: तो कौन सा मुंह हम दिखाएंगे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो जिस्म है, ये जिस्म 100 ट्रिलियन सेल्स का मजमुआ है
1: जी,
0: यानी ये भी एक पूरी दुनिया है।
1: बिल्कुल।
0: और इस दुनिया पे हमारे एहसास को, हमारे ख्याल को एक काबू मिला है। इस काबू की वजह से हम अपने जिस्म को जहां मर्जी वहां ले जाएं, जो सा काम हमारा ख्याल चाहता है उस जिस्म से हम करवाते हैं। तो सवाल ये है कि इस पे हमें हुकूमत देने का जो शर्फ है वो भी ऊपर वाले नहीं या इस बड़ी ताकत ने दिया है, तो इसकी पूछ वैसे ही होगी जैसे किसी बादशाह को कयामत के दिन होगी कि तूने अपने रियाया से क्या किया,
1: क्या किया।
0: तो जाहिर सी बात है हमें भी इस जिस्म के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि कोई भी ऐसी शय जो एक सेल को, एक टिश्यू को, एक आर्गन को, एक आर्गेनिक सिस्टम को अजियत दे, उसको समझ लो यार, ये अजियत देती है। और इससे नतीजा क्या होगा कि एक सेल की कॉलोनी, एक टिश्यू की कॉलोनी, उनको अजियत हो गई तो जाहिर सी बात है एक मर्ज हो गया। तो मर्ज जो है वो वजह जो है आप ही हैं। अब अजियत कौन सी चीज देते हैं? जितने भी केमिकल्स हैं जिसम में रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, अजियत देती है।
1: अजियत देते हैं, बिल्कुल।
0: जितने भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, जितने पेस्टिसाइड्स हैं, जितनी खादें हैं, ये अंदर जिस्म में रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं। सिर्फ वो चीजें रिकॉग्नाइज होती हैं जो नेचुरल हो और नेचुरल फॉर्म में हो, जो डोगलस वैलस ने अपनी स्टडी में अच्छी तरह से बताया है या समझाया है। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि अपना खाना पीना
1: जी
0: नेचुरल हो,
1: बिल्कुल,
0: अपना रहना सहना वो नेचुरल हो, अपनी सोच अपनी फिक्र फितरत के उसूलों के मुताबिक हो, ताकि आप जो है मतलब ऐसे जहनी बीमारियों में आप मुब्तला ना हो जाए जो सिर्फ और सिर्फ ख्यालात में जो है आप फंस गए, किसी ख्याल में कहीं और फंस गए, और जिसमें जो है बहुत सारी चीजों का जो है ना फिजिकली होना जरूरी भी नहीं है। इसी तरह से आप जब भी कभी बीमार हो जाए तो दवाओं के लिए भी, इवन विटामिन्स मिनरल्स के लिए भी नेचुरल फूड्स का सहारा लें, क्योंकि अननेचुरल फूड्स अगर आप ले लेते हैं उसके जरिए आप कोशिश करते हैं फूड स्टफ्स लेने की, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो डिजाइन ऊपर वाले ने बनाया है मुंह से अनस तक, वो इस तरह से बनाया है कि आपको फूड स्टफ्स लेने हैं ताकि ये जिस्म खुद ब खुद न्यूट्रिएंट्स बनाए, और खुद ब खुद जब ये न्यूट्रिएंट्स बनाए और उनको मैन्युफैक्चर करें, उनको प्रोसेस करें, आपको सिर्फ उनके प्रकर्सर्स या रॉ मटेरियल देना है, वो भी नेचुरल फॉर्म में, वरना इस डिजाइन का कोई काम ही नहीं,
1: काम ही नहीं है।
0: तो इस तरह से ये समझना जरूरी है कि कुदरत ने हम जैसे इंसानों के लिए इस पूरी दुनिया में फेवरेबल एनवायरमेंट बनाया
1: है।
0: तो इस फेवरेबल एनवायरमेंट को पहले हमें समझना है, और समझने के बाद हमें ये तय करना है कि क्या हम इसके खिलाफ जाएंगे। अगर खिलाफ जाएंगे
1: तो
0: नुकसान जिस्म को, एक सेल को होगा, और वही बीमारी की शक्ल इख्तियार करेंगे। और जब आप बीमार पड़ेंगे तो नेचर से ही फायदा ले लीजिएगा, नेचुरल मेडिसिन से फायदा ले लीजिए, नेचुरल फूड से, नेचुरल माहौल से। तो हम हमेशा वकालत इसी तरीके इलाज की करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सलाह मशवरा हो किसी भी डिजीज के बारे में, कुदरत ने क्या नहीं रखा है। अब अगर हमें पता हो तो हम जरूर कहेंगे कि फला चीज में कुदरत की शिफा मौजूद है, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब अगर हमें पता ना हो तो ये समझ लीजिएगा कि हमें पता नहीं है मगर कुदरत ने इन चीजों को मौजूद रखा है। हमें इल्म कम है, हम शायद

0: आपकी जो वो जो आपको जो चीज चाहिए वो हमारी कम इल्मी की वजह से हमें पता नहीं है, बल्कि हमसे भी बेहतर लोग होंगे, उनसे सलाह ले लीजिए, उनसे मशवरा ले लीजिए, या खुद फिक्र कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको कुदरत के साथ जो रिश्तेदारी है, कुदरत के उसूलों जी लेते हैं, या जो आपकी सेल्स, जो आपके टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम जो आपका चल रहा है, तो ये इन्हीं उसूलों को समझना है, इन्हीं उसूलों को अपनाना है, और इन्हीं में बलायत है, इन्हीं।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे तो और बातें होंगी। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, तो लेते हैं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे
3: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्षा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
4: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 MHz पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ये वक्त तो चला है मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां सुनने का।
5: आज की सुर्खियां।
6: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
4: आदाब सामिन, आज इतवार है, साल 2026 की जून महीने की 7 तारीख, मुताबिक 21 जिलहज, 1447 हिजरी। श्रीनगर से आज शाया होने वाले उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान मेराजुद्दीन और मेरे साथ है
7: जी, मैं हूं आपकी मेजबान सकीना।
4: समीन, आगाज करते हैं आज के अखबार के पहले सफ़े पर शाया अहम खबरों की सुर्खियों से।
7: जी, ये उर्दू रोजनामे की सुर्खी है कि स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम जल्द नाफिज होगा, नई सिक्योरिटी ग्रिड में जदीद टेक्नोलॉजी शामिल, मकामी इंतजामिया को भी सरहदी तहफ्फुज़ में शामिल किया जाएगा, वजीर दाखिला अमित शाह।
4: मुंशियात से पाक जम्मू कश्मीर 100 रोजा मुहिम, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की 19 अजला में मुहिम की कयादत, आज 20वीं रैली। नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले रहम के मुस्तहिक नहीं, 100 रोजा मुहिम सिर्फ एक बहुत बड़ी जंग का आगाज। जी हाँ, 100 रोजा मुहिम सिर्फ एक बहुत बड़ी जंग का आगाज, ये बरसों की जंग है, हफ्तों की जंग नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।
7: जी, कोशिशें जारी रखनी है, अमल घर से ही स्टार्ट करना है। तो इसी के साथ एक और रोजनामे की सुर्खी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और शदीद मौसमी हालात की पेश की इतला के लिए जम्मू में इलाकाई महकमे मौसमियात मरकज का इफ्तिताह किया गया।
4: मगरबी एशिया के बहरान के तनाजुर में वजीर अजम की इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल के साथ अहम मीटिंग, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद मआशी तरक्की बरकरार रखने की हिकमत अमली पर गौर, वजीर अजम नरेंद्र मोदी का तवानाई, महंगाई और सप्लाई चेन के चैलेंजों से निमटने के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर।
7: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि भारत दिफाई पैदावार के शोबे में काबिल जिक्र कामयाबियां, वजीर दिफा का ये कहना है, जिसकी एक नुमाया मिसाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई।
4: जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है और उसकी एक शह सुर्खी है, श्रीनगर पुलिस का आदि मनुष्यात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3.5 करोड़ रुपया मालियत की जायदादें कुर्क, 2 रिहायशी मकानात और जमीन शामिल, अवामी ताउन नागुजीर पुलिस।
7: अवंतीपुरा में जेर तामीर एम्स पर वजीर सकीना यत्तू, जी हाँ, वजीर सेहत सकीना यत्तू और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आमने सामने, सजाद लोन भी कूद पड़े, कहा एक साबिक वजीर आला किस कानून के तहत सरकारी जायजा इजलास की सदारत कर सकती हैं।
4: बिल्कुल, राजौरी में दहशत

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, शो जारी है पयामे सुबह। आज 7 जून है, जैसा कि मॉर्निंग में भी हमने बात की कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में लोगों को गैर मयारी आलूदा और मुजर खुराक से होने वाली बीमारियों के बारे में आगाह करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि हर फर्द तक साफ और सेहत बख्श खुराक पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी हिलाल अहमद मीर साहब। इनका लाइव शो पयाम सुबह में वेलकम करते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती है और 1.5 साल से लगातार जो हम देख रहे हैं कि बाहर से क्या आ रहा है, चाहे वो मीट हो या कोई और चीज, यूजुअली ये देखा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी है ईद के मौके पर किसी फेस्टिवल पे रमजान के महीने में वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आप देख रेख की सूरत हाल है, इसको बढ़ा नहीं सकते?
1: देखिए, जो आपने बात कही कि हम बड़े दिन के मौके पे ईद के मौके पे बाजारों में निकलते हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट, इसको ना सिर्फ FSSAI से जो एपेक्स बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ से टारगेट्स मिलते हैं, बल्कि जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है वहाँ से भी टारगेट्स मुकर्रर होते हैं और उसी टारगेट्स के हिसाब से डिपार्टमेंट काम करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि रोज हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में निकलते हैं, वहाँ से वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई हो जाती है। और उसके साथ साथ जो पहले ही वो इस चीज को देखते हैं कि जो वहाँ अगर हाइजीन उन्होंने कम्प्रोमाइज की गई हो, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं।

0: जी
1: तो उनके खिलाफ कानून के दायरे में उसके जो जो भी वहाँ अगर हाइजीन कम्प्रोमाइज हो गई होगी तो उस हिसाब से वहाँ कार्रवाई होती है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो मुद्दा मकसद है वो ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है उस तक साफ सुथरा खाना पहुँचे।
0: बिल्कुल,
1: आपको भी पता होगा जो फूड सेफ्टी का मामला है, जो कंटेमिनेटेड फूड है, उसकी वजह से तकरीबन 15 लाख लोग हर साल कंटेमिनेटेड या जो अनसेफ फूड है उसकी वजह से उनकी वामवात हो जाती है। मैं मानता हूँ जो फूड सेफ्टी का मामला है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, और मगर हम हर एक को इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको इसमें मेहनत करनी है। ये सिर्फ न सिर्फ डिपार्टमेंट का काम है, वो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर स्टार्ट होते हैं फार्म से, जिसको हम कहते हैं फार्म टू फोक। जो हमारा ग्रोवर है उसको भी ख्याल रखना है कि जो वो प्रोड्यूस बनाता है वो सेफ होना चाहिए एट हिज लेवल। यानी उसको जो फार्म प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करे, पेस्टिसाइड्स का यूज करे, वही इंसेक्टिसाइड्स यूज करे, वही पेस्टिसाइड्स यूज करे जो अप्रूव्ड हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड डोजेज है।

0: कंटेमिनेटेड या जो अनसेफ फूड है उसकी वजह से उनकी वहां मौत हो जाती है।
1: जी
0: मैं मानता हूं जो फूड सेफ्टी का मामला है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और मगर हम हर एक को इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको इसमें मेहनत करनी है। ये सिर्फ न सिर्फ डिपार्टमेंट का काम है, वो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर स्टार्ट होते हैं फार्म से, जिसको हम कहते हैं फार्म टू फोक, जो हमारा ग्रोवर है
1: जी।
0: उसको भी ख्याल रखना है कि जो वो प्रोड्यूस बनाता है वो सेफ होना चाहिए एट हिज लेवल, यानी उसको जो फार्म प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करे, पेस्टिसाइड्स का यूज करे, वही इंसेक्टिसाइड्स यूज करे, वही पेस्टिसाइड्स यूज करे जो अप्रूव्ड हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड डोजेज है उसी डोजेज का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद बारी आती है जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट करनी होती है, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस उनको अडॉप्ट करनी है, वो खुद इनको इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेफ है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है, वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आती है, हमें रेगुलर चेक्स करने होते हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो अपना रोल अदा करे। कंज्यूमर का क्या रोल है? कंज्यूमर का ये रोल है कि जब वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फूड आइटम वो बाजार से खरीदे तो खुद भी वो देखे, वो लेबल चेक कर सकता है, अगर उसको लगता है कि देयर इज एनी वायलेशन ऑफ द लेबलिंग प्रोविजंस तो वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राबता कायम कर सकता है, या घर लेके भी अगर वो पैक खोले और उसको अंदर से लगे देयर इज एनी इशू विद द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट तो तब भी वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राबता कायम कर सकता है। हमारे टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो राबता कायम कर सकता है। इमीडिएटली वी हैव डायरेक्शंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, चाहे हमारे कमिश्नर साहब हैं या उसके जो ऊपर जो ऑफिसर हजरात हैं या हमारी मैडम है सकीना मैडम, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि विद इन 24 आवर्स वी हैव टू एड्रेस दैट कंप्लेंट।
1: हिलाल साहब, जगह जगह कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, अब यूथ जो है एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो इस फील्ड में जाना चाहते, सही बात है, वो अपना कमा सकते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन पके हुए खानों को ज्यादा देर तक फ्रिज में महफूज किया जाता है। देखिए आपने इससे पहले भी कबाब रिश्ते कितने महीनों से फ्रिजेस में पड़े थे, ऐसा नहीं हो सकता कि हफ्ता दर हफ्ता आप ये मुहिम एक चालू रखे कि एमिस कैफे वर्ल्ड इस्तेबास की आतवार दयम का या चंद्रवार दयम का, इस बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए सकीना जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, इवन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, वो निकलते रहते हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे जो भी इटरीज हैं, वहां पर हम देखते रहते हैं कि उनकी जो हाइजीन है वो कैसी है, कैसे वो फूड को स्टोर कर रहे हैं। अगर फूड स्टोरेज में कोई इशू बनेगा, पिछली बार वो इशू क्या बन गया, जो रॉटन मीट लोग कहते हैं, वो मसला क्या था? मसला ये था कि जो बाहर से वो मीट आता था वो प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में उन्होंने नहीं रखा था, इसकी वजह से वो रॉटन हो गया था, खराब हो गया था। आपने भी देखा होगा या बाकी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने ये देखा कि कितनी सख्त कार्रवाई हमने उन लोगों के खिलाफ की, तकरीबन 12,000 kgs का उस किस्म का जो मीट था या हजारों की तैदाद में कबाब रिश्ते वगैरह वो हमने सीज करके वो हमने डिस्ट्रॉय किए। और कॉन्स्टेंटली, ये नहीं है कि सिर्फ उन दिनों हमने मुहिम चलाई, आज के डेट में भी हम उन लोगों पे नजर रखे हुए हैं। और इंश्योर मैं आपको के माध्यम से लोगों को ये करना चाहता हूँ कि जो अब आज की डेट में जो बाहर से मीट आता है बराबर लेबल तरीके से आता है, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में आता है, और जहां पर भी हमें लगता है, बीच में हमने वो जो पनीर के बारे में हमने मुहिम चलाई, हालांकि बहुत ज्यादा मुहिम वो जो डिवीजन में हमने चलाई, मसला ये है कि जब भी हमें लगता है कि देयर इज एनी इशू विद द क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम्स, वो इमीडिएटली टेक एक्शन। ऐसा नहीं है कि देखते हैं कि कब हमें कंप्लेंट आई। कंप्लेंट क्यों हम कहते हैं? बिकॉज जो हमारे, जैसे आपने भी कहा कि जो जाएगा वहां पे, अगर कोई कंज्यूमर जाता है रेस्टोरेंट में, उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद देखे कि वहां पर जो उसने खाना खाया उसमें किसी किस्म की कोई खराबी तो नहीं है। उसके साथ साथ दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं उसके बारे में आपने भी देखा होगा, जो वाजवान में कुछ लोग वो सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों को हमें खुद भी देखना है। देखिए डिपार्टमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकता है, मगर हम अवेयरनेस देते हैं लोगों को, हम बताते हैं कि जो सिंथेटिक फूड कलर्स है ये ऐसे बाजवान में या ऐसे जो स्नैक्स वगैरह है वहां इस्तेमाल नहीं करना है। देन एवरीबॉडी विल शेयर हिज रिस्पांसिबिलिटी, देन एंड ओनली देन आवर फूड व्हिच इज इन द मार्केट दैट विल बी सेफ, दैट विल बी होलसम।
1: हिलाल अहमद मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद यही आपसे बात करने का कि खुराक को महफूज बनाने और हिफ्जान सेहत के उसूलों पर सभी अमल पैरा हो जाएं, लेकिन आप एक डिपार्टमेंट है, आपके तहत बहुत सारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप अवाम के साथ मिलकर नजर रखना।

0: बहुत जरूर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है, 9:20 हो रहे हैं। आइए अब खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीरी उसके फौरन बाद उर्दू में। आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:20 सपद खबरें हंद बुलेटिन हूँ रऊफ अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिज रात सरकोट कश्तवाड़स मज श्री गौरी शंकर मंदिर मज हाजिरी। तमो जम्मू कश्मीर मज अमन अमान तो लूकन हज पापरजी बापत आही। तमो बूज लूकन हंद मसल तो वारिया मसल अंजरवन दुख मौक पे हिदायत। अत मौक असम्बली मज हजब इख्तलाफ लीडर सुनील शर्मा, कश्तवाड़ असम्बली मेम्बर शगुन परिहार तो वारिया दोयम अफसर त मौजूद। नाय वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ज़रूरी खदमत लेस त्रे ट्रक जूम उधमपुर तो डोडा जिलन हंद लूकन हंद बापत वक्फ करम। नये वजीर आलन वो सरकार अत कोशिश तहत 1.5 करोड़ रुपये खर्चाम। तमो वो नवीन कस्म ट्रक सपदन दूर दराज तो दुशवार गुजार इलाकन मज अवी खदमत हज फरहमी तो बुनियादी ढांचस मुतलिक जरूरी पूर कर मजिया मददगार साबित। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जमीनी सुथरस पे नशस खिलाफ वतलन वाजन आवाज तखवीत बख्शन तो नारको दहशतगर्दी खत्म करन अजम दुर्रोमुत। कश्तवाड़ मुंशियात मुखालिफ पदयात्रा जंड हवित रवाना कर ब्रोह खताब करान वो मनोज सिन्हा ज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत 54 दोहन दौरान 19 जिलन मज पदयात्रा तो बेदारी प्रोग्राम संज कर आमुत इन अंदर लूको बढ़ित बूलित शिरकत कर नौसूरस खिलाफ पन आवाज तुज।
3: 54 दिनों में लगातार एक मिशन के साथ एक प्रयास हुआ है कि जम्मू कश्मीर की धरती से हर एक तस्कर और नारको आतंकवादी का सफाया हो जाए, चाहे वो डर का इस्तेमाल हो या नारको आतंकवादी, चाहे वो पुलवामा में हो या रामगढ़ में, गुरुग्राम में हो या किश्तवाड़ में, उन्हें ये सच्चाई और जान लेने के लिए कि जो हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य पर बात कर रहे हैं उनके लिए अब तेरा नाम की कोई चीज
2: सेहत तलीम तो समाजी बजे हज वजीर सकीना इतवन तुल कुलगाम जिले किस मलवन इलाक मज मिशन युवास तहत अकिस बड़स रोजगार मलस दस। अत मौक पे आई नौजवान रोजगार तो खुद रोजगार किन मौकन मुतलिक आगही दिन जन मुस्तकन मज तकरी हज संद तकसीम कर पत वजीर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शोगुंडस मज हुरेमान क्लास रूम की तमीर कनकन जन डांगरपुर मलवन मज तमो तलब इलम हंद बापत इब्तदाई तलीम मुतलिक ए सी सी ई किट तकसीम कर। मुहरम अल हराम के हवाले इंतजाम जायजे हन बापत सबज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग सदारत मज अला सत्र मीटिंग। मीटिंग दौरान आई आजादारन हंद बापत फराहम कर वाजन बुनियादी सहूलत साम हन कशीर हंद सूबे कमिश्नर दुत मुतल महकमन हिदायत ज मुहरम नजर तल थवित तमाम जरूरी इंतजाम वक्त पे मुकमल कर मजहबी इजतमा आजादारी हंद जुलूस पुरमन तो जबर तरीक आंद वातन। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस तरफ जम्मू कश्मीर किन डिग्री कॉलेजन मज अंडर ग्रेजुएट तो इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम मज गिक राउंड किस अलॉटमेंट लिस्टस तहत ऑनलाइन फीस दाखिल करने का आखिरी तारीख 8 जून यानी पगह शाम 5 बजे तक बढ़ाने आमत। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीरन फीस जमा करने वाले उम्मीदवार तम कर दस्तावेजन हज वेरिफिकेशन या तस्दीक बापत पन्न अलॉट कर आम कॉलेजन मज 8 जून पे 10 जून तक रिपोर्ट।
4: हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की एक्सटेंशन के लिए, फी लिंक को ओपन रखने के लिए, तो इस सिलसिले में एक डिसीजन लिया गया है कि ये लिंक हम ओपन रखेंगे, मंडे शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। अभी और 2 दिन का टाइम हम उनको दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनको मंडे ट्यूजडे हमने उनको रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेंसडे तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपने कॉलेज में। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उसके बाद उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा।
2: ट्रैफिक महकम टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल तो स्कूटर बेतरी चलावन वाले हंद तरफ सपदान खिलाफ वर्जी रुकावने बापत प्रथ मुमकिन इकदाम करान। SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्टन वोन महज जी सवारी हेकन टू व्हीलरस पे सफर कर तिंद बापत हेलमेट लागन जरूरी। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत्य कह तमो।
0: बाइक्स या मोटरसाइकिल्स जो है उसमें दो ही लोग राइड कर सकते हैं, पिलियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है, नो बॉडी स्पेयर। इस वक्त लोग काफी वायोलेशन कर रहे हैं, बट देन फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं कि कम से कम राइडर जो है वो हेलमेट पहन ले, बट देन अल्टीमेटली दोनों को ये

0: वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। 9:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जेके बैंक डायरी।
1: ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके।

0: सात जून इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर।
1: प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
0: आज के शुमारे में भी शामिल रहेंगे कई सारे मौजूद, लेकिन हज़्म मामूल शुरुआत करते हैं इदारिया से।
1: जम्मू कश्मीर बैंक, हर फर्द की हर जरूरत का बैंक। आपकी ख्वाहिशों, उम्मीदों, उमंगों, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का बैंक, जहां पैसे को नहीं बल्कि रिश्तों को अहमियत की निगाह से देखा जाता है, जहां खिदमत को फरीजा समझकर आम लोगों के लिए राहत, सुकून, आराम, खुशहाली और तरक्की के सामान फराहम किए जाते हैं। हमारा मिशन नकदी लेन देन से परे आपकी परेशानियों का अजाला और मसाइल के हल में मुजमिर है। नकदी लेन देन के लिए बदलते वक्त में पैसे की जगह डिजिटल सॉल्यूशंस ने ली है, जिससे पैसे की चोरी के खदशात खत्म करने में आपके बैंक ने आपकी रहनुमाई की। लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। हमारे घरों में हमारी माओ बहनों का सोना और जायदाद मौजूद होता है, जिससे हमेशा ये खतरा लाहक होता है कि किसी की बुरी निगाह इस पे ना पड़े और मौका पाते ही वो चोरी या डाका डालकर हमें गमों के अंधेरे में ना ढकेल दे। अगर हमारी कोई कीमती चीज खो भी जाए तो उतना दुख नहीं होता जितना चोरी हो जाने पर होता है। आप लाखों करोड़ों का कीमती सामान, जरूरी कागजात और जेवरात वगैरह कैसे घर में महफूज समझते हैं? हमारी एक पल की बेहिसी एक साल की चौकसी को पल में हमारी बेबसी बना सकती है। खतरा मोल न लें, इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी को बरते। जेके बैंक से राबता करें। हमारे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स अक्सर ब्रांचेस में मौजूद हैं। अपनी नजदीकी ब्रांच जाकर लॉकर के बारे में जानकारी हासिल करें। अपना कीमती सामान हमारे महफूज लॉकर्स में रखकर मामूली रकम के इवज बेफिक्र हो जाएं। घूमने जाना हो, दावत पर जाना हो, या अपने रोजगार की खातिर नौकरी या कारोबार के लिए घर से बाहर हो, तो सुकून से जाएं। हम आपकी खुशियों को बेखलल बनाने के लिए आपकी फिक्र और अंदेशों के खरीदार हैं। आए इस सहूलियत का फायदा उठाएं, चिंता मुक्त और निश्चिंत हो जाएं।
2: एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
0: दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक के डिजिटल सफर को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब गुज़िश्ता दिनों बैंक को फिनकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज बैंक को डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के जुमरे में दिया गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मबनी एक नया निज़ाम है। ये अवार्ड मुंबई में मुनक्दा एक शानदार तकरीब में जेके बैंक के MD व CEO अमिताभ चैटर्जी ने हासिल किया, जिस दौरान बैंक के जनरल मैनेजर स्ट्रेटजी एंड IT मोहम्मद मुजफ्फरवानी भी मौजूद थे। वाजह रहे कि इस बार इन अवार्ड्स के लिए मुल्क भर से 500 से भी ज्यादा नॉमिनेशंस मौसूल हुई थी और जेके बैंक को ऐसे कॉम्पिटिशन में गोल्ड अवार्ड मिलना निहायत ही फख्र और खुशी की बात है। इस हवाले से तबसरा करते हुए MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने कहा कि बैंक ने अपनी डिजिटल जर्नी में कई अहम फैसले लिए और अपने प्रोसेसेस को बेहतर तौर पर डिजिटाइज करने के अमल को बड़ी सूरत से अमलाया, जिसके नतीजे में बैंक के कामकाज और कस्टमर एक्सपीरियंस में इनकलाब अंगेज तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड इस बात का सबूत है कि बैंक डिजिटली प्रॉम्प्ट और फ्यूचर रेडी मंसूबों पर गामजन होकर मुस्बत तब्दीलियों का जरिया बन गया है और नए दौर के नए तकाजों पर पूरा उतर रहा है। ये अवार्ड बैंक को एक ऐसे वक्त में मिला है जब पिछले माली साल में बैंक ने तारीखी मुनाफा कमाया है, जिसमें बैंक के टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का एक कलीदी रोल रहा है। बैंक ने रिवायती बैंकिंग के तरीकों को बतदरीज डिजिटाइज करके तमाम तरह के कस्टमर्स के लिए आसान, तेज और महफूज बैंकिंग ऑल्टरनेटिव्स फराहम किए हैं, जबकि इस वक्त बैंक की कुल ट्रांजैक्शंस का 95% से भी ज्यादा हिस्सा डिजिटली अंजाम पा रहा है। बैंक की रिटेल और कॉर्पोरेट लोन जर्नीज डिजिटाइज हो चुकी हैं, जबकि बैंक इन द पॉकेट की रियल फील के साथ बैंक का मोबाइल

0: ऐप एमपे डिलाइट प्लस एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर कस्टमर्स की पहली पसंद बन चुका है।
1: कितनी बार कहा है अपने बच्चों को समझाएं, वरना मकान बदल ले।
2: अपने बच्चों के मासूम बचपन को खिलने और खेलने का भरपूर एहसास दिलाएं। जीके बैंक हाउसिंग लोन स्टार्टिंग एट इंटरेस्ट रेट ऑफ जस्ट 7.35%। स्पेशल ऑफर 22 मई से 6 जुलाई तक। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
3: दोस्तों, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत काम कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुज़श्ता महीने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम राइज की। इस हवाले से जेके बैंक ने भी अब डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं। क्या है ये ECLGS 5.0? इससे किन को फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं जेके बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्रेडिट शमीम अहमद से। शमीम साहब, जेके बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: शमीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 क्या है और इसे राइज करने के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे?
4: जावेद साहब, ये स्कीम जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये हुकूमत हिंद की तरफ से एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से,
3: डीएफएस से।
4: इसका जो मकसद था, वो जो अभी हमारा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो भी हालात आलमी सतह पे जो बने हुए हैं, उनकी वजह से जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारा कारोबार है, वो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी मुतासिर हुए हैं। तो उन बिजनेसों को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत हिंद ने एक स्पेशल स्कीम राइज की है,
3: जिसे हम
4: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के नाम से जानते हैं।
3: अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से कौन फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, तो उसके बारे हवाले से आप क्या कहेंगे?
4: देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि इससे जो भी बिजनेसमैन हैं, जिनके हमारे पास वर्किंग कैपिटल लिमिट, जिसको हम CC कहते हैं, उन सारे बिजनेसमैन को ये स्कीम हम दे सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, क्या फायदा दे सकते?
4: फायदा ये है कि जो भी उनका लिमिट है, CC का एक लिमिट होता है,
3: बिल्कुल,
4: जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का,
3: माने पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में,
4: जो भी उनकी पीक यूटिलाइजेशन रही है। अच्छा। जितना भी उन्होंने यूटिलाइज किया है,
3: जो यूटिलाइज किया है
4: उसका 20% हम फराहम करेंगे उनको विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी,
3: एज एडिशनल क्रेडिट लाइन
4: हम देंगे।
3: इस स्कीम के तहत जो पैसा आप देंगे, ये किस सूरत में दिया जाएगा और ये कितनी देर में फिर वाजिब अदा होगा?
4: ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की
3: WCTL
4: जिसको हम बोलते हैं, उसके उसमें क्या है कि पहले साल में खाली उनको इसका इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद 4 साल में इसको वापस करना पड़ेगा।
3: माने अगर कोई आज लेगा जून में या जुलाई में लेगा, तो उसको ये वापस करना है फिर जुलाई 2031 तक।
4: हाँ।
3: पहले साल सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, उसके 4 साल में जो इसकी इंस्टॉलमेंट होंगी वो भरना होगी।
4: जी जी।
3: अच्छा, और ये स्कीम कब तक राइज रहेगी?
4: ये तो जब तक ये गारंटी फी जो हुकूमत हिंद ने दिया है, ये 2,55,000 करोड़, जब तक ये खत्म हो जाएगा या 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
3: तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको जल्द से जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए।
4: सही फरमा रहे हैं आप, जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको चाहिए कि जल्द से जल्द ये हमारी ब्रांच के साथ राबता करें और इस स्कीम का फायदा उठाए।
3: अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि गुज़श्ता कई दफ़े ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी गारंटी स्कीम लाई है बैंक ने या हुकूमत ने, तो उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से ब्रांचेस को एक बाज़ाबता एक लिस्ट जाता था एलिजिबल बोरोवर्स का, क्या इसमें भी वही तरीक़ेकार होगा या हर कोई एलिजिबल है इसके लिए?
4: मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहता हूं कि ये स्कीम उनको मिलेगी जिनका अकाउंट SMA 2 में नहीं रहा है। SMA 0 और 1
3: एलिजिबल
4: है, लेकिन जो SMA 2 में रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सही फरमा रहे हैं, इस बार भी हमने ब्रांचों को ये जो
3: एलिजिबल
4: बोरोवर्स हैं उनका लिस्ट उनके पास है और उनको पता है, ये एक्सरसाइज पहले से हुई है कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है।
3: अच्छा, अब क्या आपकी तरफ से अहकाम सादर किए गए हैं कि ब्रांच रीच आउट करेगा कस्टमर्स को, या कस्टमर्स भी आकर के ब्रांच से अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं?
4: हमारे बैंक ने

0: बहुत से जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनको मैसेज ऑलरेडी गई हुई है
1: ओके
0: हमारे ब्रांच की तरफ से। वो जो ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन है वो भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं।
1: नहीं है।
0: तो जो एलिजिबल है उनको मैसेज भी गई है, काफी सारी बोरोज को मैसेज ब्रांच से चली गई है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के। मैं थोड़ी सी और इसमें वजाहत करना चाहता
1: जी
0: हूँ कि इसमें जो अप्लाई करना है बोरोज को वो जन समर्थ पोर्टल पे, ये सारा उनको ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं है, वो
1: अच्छा,
0: घर से
1: ऑनलाइन
0: ऑनलाइन
1: प्रोसेस।
0: प्रोसेस में जन समर्थ पोर्टल पे, और वहां भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत
1: इजी है।
0: सिंपल है, सादा है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी डिटेल दे के। ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारी जो ब्रांच है उन तक पहुंच जाती है,
1: पहुंचाए,
0: तो इसमें उनको मैनुअल एप्लीकेशन देने की जरूरत
1: कोई
0: भी नहीं
1: जरूरत नहीं
0: है,
1: है, ब्रांच विजिट्स भी नहीं है।
0: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है, वो घर में बैठ के इस जनसमर्थ पोर्टल पर लॉग इन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो उनकी ये दरख्वास्त है वो हमारी ब्रांच या हमारे बैंक
1: रूट
0: तक
1: होगी।
0: रूट हो सकती है। और जो हमारे बैंक ने इसमें इंटरेस्ट रेट रखी है वो काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द इसमें अप्लाई करके इस स्कीम से फायदा उठाए।
1: शमीम साहब, ECLGS 5.0 के हवाले से ये कारामत गुफ्तगू के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो
0: शुक्रिया
1: मच।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
2: हर इंसान का एक ख्वाब होता है अपना घर जिसमें अपने पन का एहसास हो, हर अपना अपने पास हो। इस ईद J&K बैंक के साथ ख्वाबों को मिले उनका पता। J&K बैंक हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट जस्ट 7.35%। 22 मई से 6 जुलाई तक पूरा कीजिए अपने घर का ख्वाब हमारे साथ। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
3: दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंस्टीट्यूशनल टाई अप्स को मजीद मजबूत बनाते हुए JK बैंक ने गुज़िश्ता दिनों श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ककरियाल जम्मू के साथ एक MOU पर दस्तखत किए, जिसके तहत यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को JK बैंक के कॉरपोरेट सैलरी पैकेज से वाबस्ता कई सारे बेनिफिट्स और प्रेफर्ड क्लाइंट का दर्जा दिया जाएगा, जिनका मकसद इन मुलाजमीन को बेहतर बैंकिंग सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उनकी माली जरूरियात को किफायती इंटरेस्ट रेट्स पर पूरा करना है। इस MOU पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजय कुमार शर्मा और JK बैंक के जोनल हेड उधमपुर ललित प्रकाश ने दस्तखत किए, जिस दौरान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रगति कुमार, फाइनेंस ऑफिसर काजल जसरोटिया और JK बैंक के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए बैंक के जोनल हेड उधमपुर ललित प्रकाश ने कहा कि ये MOU दोनों इदारों के देरीना तालुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की जानिब एक और कदम है, और ये कि ये MOU दोनों इदारों के लिए सूदमंद साबित होगा।
4: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं कि वो JK बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मुयस्सर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
3: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे PMJJBY और PMSBY के प्रीमियम डिडक्शन का लास्ट डेट पूछा था।
1: इस सवाल का सही जवाब था 1 जून।
3: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं।
1: कश्मीर डिवीजन से श्रीनगर के बासिल अहमद, जम्मू डिवीजन से सुंदरबनी रजौरी के संजय कुमार और लद्दाख से कारगिल की फातिमा बीबी।
3: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
3: दोस्तों, आपको बताना होगा कि हालिया दिनों JK बैंक को किस जुमरे में और कौन सा गोल्ड अवार्ड हासिल हुआ।
1: आपके जवाबात हमें 13 जून शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर मौसूल हो जाने चाहिए, और याद रहे कि अपने मेल में अपना नाम, पता, फोन नंबर और 16 डिजिट का JK बैंक अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें।
3: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर

0: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jkb.bank.in।
1: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर,
1: रेडियो साथी। सामिन किराम आदाब, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर का हफ्तवार प्रोग्राम रेडियो साथी। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज हम एक नहायत अहम समाजी मसले पर गुफ्तगू करेंगे।
0: समिन किराम, मैं हूं रिफत आरा। आज की नौजवान नस्ल, जिसे हम जनरेशन जी या जेन जी कहते हैं, एक ऐसी दुनिया में परवान चढ़ी है जहां मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मसनूई जहानत और इंटरनेट जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं।
1: यह नस्ल मालूमात में बहुत आगे है, खुद एतमाद है, अपने फैसले खुद करना चाहती है, लेकिन इसी के साथ एक खामोश फासला भी बढ़ रहा है, वालिदैन और बुजुर्गों के साथ ताल्लुक का फासला।
0: आज का नौजवान अक्सर ये महसूस करता है कि वो अपनी दुनिया खुद बना सकता है। उसे लगता है कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वर्चुअल दुनिया ही उसके असल उस्ताद हैं।
1: वो ये भूल जाता है कि जिंदगी के असल सबक किसी ऐप में नहीं, बल्कि वालिदैन की दुआओं, बुजुर्गों के तजुर्बात और खानदानी रवायतों में पोशीदा होते हैं।
0: समिन, माजी में खानदान सिर्फ एक रिहायशगाह नहीं होता था, बल्कि एक तरबियती दरसगाह हुआ करता था। दादा दादी की कहानियां, माँ की नसीहतें, वालिद की रहनुमाई, खानदान की मुश्तरका महफिलें, ये सब बच्चों की शख्सियत साजी का हिस्सा थे।
1: लेकिन आज सूरत हाल बदल रही है रिफत। घर के हर फर्द के हाथ में मोबाइल है, मगर दिलों के दरमियान राबिता कमजोर पड़ता जा रहा है। एक ही कमरे में बैठे लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय स्क्रीनों में गुम रहते हैं।
0: जनरेशन जी आजादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती है। वो अपने फैसलों में मुदाखलत पसंद ही नहीं करती। बाज नौजवान वालिदैन के मशवरों को पुराना ख्याल कहकर रद्द कर देते हैं।
1: ये रवैया सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती दूरी में तब्दील हो रहा है, और यही दूरी खानदानी अकदार और तहजीबी विरासत के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है।
0: सोशल मीडिया ने नौजवानों को एक नई शनाख्त दी है। अब नौजवान अपनी असल जिंदगी से ज्यादा अपनी ऑनलाइन शख्सियत को अहमियत देने लगे हैं।
1: बिल्कुल रिफत, वो दूसरों की जिंदगियों से अपना मुवाजना करते हैं। किसी की कामयाबी, किसी का फैशन, किसी की शोहरत, सब कुछ चंद सेकंड में सामने आ जाता है।
0: नतीजा ये निकलता है कि नौजवान हकीकी दुनिया से बेजार और मसनूई दुनिया से वाबस्ता हो जाते हैं। वो घर वालों के साथ वक्त गुजारने के बजाय वर्चुअल ताल्लुकात को तरजीह देते हैं।
1: एक वक्त था जब शाम के वक्त खानदान एक साथ बैठकर चाय पीता था, गुफ्तगू होती थी, मसाइल बांटे जाते थे। आज हर शख्स अपनी अलग डिजिटल दुनिया में मसरूफ है।
0: रशीद, ये तब्दीली सिर्फ आदतों की नहीं, बल्कि माशरती ढांचे की तब्दीली है।
1: सामिन किराम, वालिदैन और नौजवानों के दरमियान बढ़ती गलतफहमियों की एक बड़ी वजह मकालमे की कमी भी है। वालिदैन अक्सर ये शिकायत करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, और नौजवान ये महसूस करते हैं कि वालिदैन उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते।
0: असल मसला ये है कि दोनों नस्लें अलग अलग जमानों की नुमाइंदगी करती हैं। वालिदैन तजुर्बे की जुबान बोलते हैं, जबकि नौजवान रफ्तार की जुबान समझते हैं।
2: बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूँ जब तक बुढ़ापा नहीं आता, थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: अगर वालदैन सिर्फ डांट और पाबंदियों के जरिए बात करेंगे तो नौजवान मजीद दूर हो जाएंगे, और अगर नौजवान हर नसीहत को फरसुदा समझेंगे तो ताल्लुकात में तलखी पैदा होगी।
0: जरूरत इस बात की है कि दोनों मसले एक दूसरे की बात सुने, समझें और एहतराम करें।
2: रिफत, हमारी तहजीबी विरासत सिर्फ तारीखी इमारतों या रिवायती लिबास का नाम नहीं, यह हमारी जबान, हमारे रस्म रवाज, बुजुर्गों का एहतराम, खानदानी ताल्लुकात और अखलाकी अकदार का मजमुआ है। जब नौजवान अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं तो उनकी शिनाख्त कमजोर होने लगती है, वो अपनी मादरी जबान बोलने में झिझक महसूस करते हैं, उन्हें अपनी रवायात पुरानी और गैर जरूरी लगने लगती हैं।
0: खास तौर पर कश्मीर जैसे खित्ते में जहाँ सकाफत, शायरी, सूफी रवायत और खानदानी निजाम हमारी पहचान है, वहाँ नई नस्ल का अपनी तहजीब से दूर होना एक फिक्री मसला बनता जा रहा है।
2: सही बात है रिफत, हमें सोचना होगा कि अगर आने वाली नस्लें अपनी जबान, अपनी तारीख और अपने बुजुर्गों से ताल्लुक खो देंगी तो हमारी शिनाख्त कैसे बाकी रहेगी।
0: देखिए, टेक्नोलॉजी यकीनन

0: एक नेमत है। इसने दुनिया को करीब किया, तालीम आसान बनाई, मालूमात तक रसाई दी, लेकिन हर सहूलत के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
1: अगर मोबाइल फोन रिश्तों को कमजोर करने लगे, अगर सोशल मीडिया खानदानी गुफ्तगू की जगह ले ले, अगर बच्चे वालिदैन के साथ बैठने के बजाय स्क्रीनों के साथ वक्त गुजारें, तो हमें रुक कर सोचना होगा।
0: हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और खानदानी जिंदगी के दरमियान तवाजुन कायम करना होगा। घर में डिजिटल फ्री टाइम मुकर्रर किया जा सकता है, जहां सब अफराद एक साथ बैठें, बात करें, हंसें और एक दूसरे को सुनें।
1: वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ तनकीद न करें, बल्कि नौजवानों की दुनिया को समझने की कोशिश करें। आज के नौजवान ज़हीन हैं, हसास हैं और बहुत से दबाव का शिकार भी हैं। तालीम, मुकाबला, बेरोजगारी, सोशल मीडिया का दबाव, ये सब उनकी ज़हनी कैफियत को मुतासिर करते हैं।
0: अगर वालदैन सिर्फ हुक्म देंगे और जज्बाती तावुन नहीं देंगे, तो नौजवान खुद को तन्हा महसूस करेंगे। इसी तरह नौजवानों को भी ये समझना होगा कि वालदैन की नसीहत दुश्मनी नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार होती है। बुजुर्गों का तजुर्बा जिंदगी की वो दौलत है जो किसी सर्च इंजन से हासिल नहीं की जा सकती।
1: सामेने किराम, हमारी समाजी जिंदगी में इज्तिमाईयत हमेशा एक अहम कदर रही है। खानदान मिलकर फैसले करता है, खुशियां बांटी जाती थीं, दुखों में साथ दिया जाता था, लेकिन जदीद तर्ज जिंदगी ने इंसान को इनफरादी बना दिया है। हर शख्स अपनी जात में महदूद होता जा रहा है।
0: इस इनफरादियत ने आजादी तो दी, मगर ताल्लुकात की गर्मी कम कर दी। हमें अपनी नई नस्ल को ये एहसास दिलाना होगा कि तरक्की अपनी जड़ों को छोड़ने का नाम नहीं। असल कामयाबी वही है जो जदीदियत और रवायत दोनों को साथ लेकर चले।
1: तालीमी इदारों, मीडिया और समाजी तंजीमों की भी अहम जिम्मेदारी है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो नस्लों के दरमियान मकालमे को फरोग दें, बच्चों को अपनी जबान, तारीख और सकाफत से रोशनास करा जाए, बुजुर्गों के तजुर्बात को कहानियों, महफिलों और खानदानी नशस्तों के जरिए नई नस्ल तक पहुँचाया जाए।
0: रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया अगर मस्बत अंदाज में इस्तेमाल हों तो ये नस्लों को करीब ला सकते हैं। हमें सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि हल तलाश करना होगा।
1: सामीन अजीज, नस्लों के दरमियान इख्तलाफ हमेशा रहा है, लेकिन फासले नहीं होने चाहिए। अगर नौजवान जदीद दुनिया की अलामत हैं, तो बुजुर्ग तजर्बे और हिकमत की पहचान है।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: सामीन, हम अक्सर ये सुनते हैं कि आज के बच्चे बदल गए हैं, लेकिन शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि जमाना भी तो बदल गया है। आज का नौजवान एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ रहा है जहां मुकाबला बहुत सख्त है। उसे हर वक्त कामयाबी, शोहरत और दूसरों से आगे निकलने का

0: दबाव रहता है।
1: बिल्कुल दुरुस्त, और सोशल मीडिया ने इस दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। नौजवान अपनी असल जिंदगी के बजाय दूसरों की नुमाइशी जिंदगी देखते हैं। उन्हें लगता है कि हर शख्स उनसे ज्यादा खुशहाल, कामयाब और खूबसूरत है।
0: ये एहसास बाज़ोकात मायूसी, इज़्तिराब और ज़हनी दबाव पैदा करता है। ऐसे वक्त में खानदान का ताऊन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर घर का माहौल मोहब्बत भरा हो तो नौजवान बैरूनी दबाव का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं।
1: रशीद कश्मीर की तहजीब हमेशा से मोहब्बत, अदब और रूहानियत की अलमबरदार रही है। यहाँ बुजुर्गों का एहतराम सिर्फ एक रवायत नहीं बल्कि इखलाकी फरीजा समझा जाता था। बच्चे अपने बड़ों के साथ बैठकर जिंदगी के आदाब सीखते थे।
0: जी हाँ रिफत, हमारी कश्मीरी सकाफत में खानदान एक मजबूत स्तून की हैसियत रखता है। लेकिन अगर नई नस्ल अपनी जबान, अपने लोक गीत, अपनी रवायात और अपने खानदानी अकदार से दूर होती गई तो ये हमारी तहजीबी कमजोरी बन जाएगी।
1: हमें नौजवानों को ये एहसास दिलाना होगा कि जदीद तालीम हासिल करना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना और तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी शनाख्त को बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी है। तरक्की वही खूबसूरत होती है जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे।
0: सामईन इकराम, आज की गुफ्तगू का मकसद किसी एक नस्ल को कसूरवार ठहराना नहीं बल्कि दोनों नस्लों के दरमियान समझ बूझ पैदा करना है।
1: जी बिल्कुल, नौजवान अगर तवानाई और नए ख्यालात की अलामत हैं तो बुजुर्ग तजुर्बे, सब्र और दानाई की पहचान हैं। जब ये दोनों नस्लें एक दूसरे का हाथ थाम लें तो खानदान मजबूत होते हैं, माशरा बेहतर बनता है और तहजीब महफूज रहती है।
0: आइए हम अपने घरों में मोहब्बत, मकालमे और एहतराम की रवायत को दोबारा जिंदा करें। अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बुजुर्गों की बात सुने और अपनी तहजीबी विरासत को आइंदा नस्लों तक पहुंचाएं।
1: इसी खूबसूरत पैगाम के साथ अपने मेजबानों रशीद निजामी और रिफत आरा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी श्रीनगर का हफ्तावार प्रोग्राम
2: रेडियो साथी, दिल से दिल तक।
1: रेडियो साथी,
3: दिल से दिल तक, रोशनी और सच्चाई के सफर में
1: आपका हम सफर।

आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम सुपांसर रेडियो साथी। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।

0: ये कहानी आपने बारहा सुनी होगी, है ना, बार बार सुनी है ना ये कहानी, लेकिन इस पे अमल बहुत कम किया जाता है। कहानी बार बार हम सुनते हैं लेकिन इसमें जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा है, बहुत बड़ी एक सीख है। इस उम्मीद के साथ कि आप जब भी ये कहानी सुनेंगे रिमाइंड करेंगे आप हमेशा इस सीख को, ताकि जो आप सीखते हैं उसे अपनी जिंदगी में अमलाना भी बहुत जरूरी होता है। आप जितना जो सीखें उसको, उसका इस्तेमाल करें, उसे अपनी जिंदगी में अमलाएं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: मेरा नाम जाकिर है, मैं पांचवी जमात का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके सामने ये नाज़म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है तस्वीरे कश्मीर। औलिया आरिफों की सरजमीन, आलिमों और आबिदों की सरजमीन, ये अदीबों शायरों की सरजमीन, मंदिरों और मस्जिदों की सरजमीन, हाँ इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका जन्नत कश्मीर है। दिल फरेबी बाग शालीमार की और निशात बाग की वो दिलकशी, आबशारों की वो बजती बंसरी, मंजिल कुदरत की वो जादूगरी, हाँ इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशद कश्मीर है। देखे गुलमर्ग की क्या शान है, चश्मे गुर्दू देखकर हैरान है, वादी कश्मीर की वो जान है, एक सरापा हुस्न वो मैदान है, हाँ इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका जन्नत गुलशन कश्मीर है। हाँ चिनारों की वो शान दिलरुबा और वो सरो सनबर की फिजा, झील डाल के कमल है खुशनुमा, किश्तियों का भी नज़ारा है जुदा, हाँ इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन कश्मीर है।
0: तो चलिए अब आपको एक नगमा सुनवाते हैं।

0: आप आ जाए। आप
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों
0: जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
1: सईद हुज्जत अली।
0: सईद
1: हुज्जत अली।
0: हुज्जत अली जी, क्या सुनाएंगी आप?
1: अपने बारे में कुछ जुमले।
0: अपने बारे में कुछ जुमले सुनाइए, हमें भी तो पता चले आपकी शख्सियत के बारे में।
1: मेरा नाम सईद हुज्जत अली है, मेरी माँ का कौसर अली है, मेरे बाप का नाम सईद तोई मोहम्मद रजा रजवी है, मेरी 8 साल का हूँ। बाकी शुक्रिया।
0: अच्छा, बस इतना ही आपके बारे में। अच्छा मुझे बताएं, आपके क्या शौक हैं?
1: मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ।
0: प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? प्रेसिडेंट किसके बनना चाहते हैं?
1: इंडिया।
0: इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप पढ़ेंगे लिखेंगे उस काबिल होंगे और इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। हमें भूल तो नहीं जाएंगे तब, ठीक है? तब भी हमारे प्रोग्राम में आइएगा जरूर। देखिए बच्चों, अभी सैयद हुज्जत अली ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है? तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। अभी अगर आप फर्स्ट में हैं तो आप ये सोचें कि मैं सेकंड में कितने नंबरात हासिल करूंगा, मैं कौन कौन सी अच्छी किताब पढ़ूंगा। फिर आप फिफ्थ में होंगे तो आप उसके बारे में सोचें। हाँ, जब आप अपने लाइफ के छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे तब आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। लेकिन हमेशा जब भी सोचो तो बड़ा सोचो। तो चले कुछ ऐसी ही बातें, आपको अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हमारे दोस्तों के बहुत काम आएंगी। प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज भी कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है बच्चों के लिए इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल। प्यारे बच्चों, आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम इसके जरिए तालीम हासिल करते हैं, मालूमात तलाश करते हैं और दोस्तों से राबिते में रहते हैं। लेकिन जिस तरह सड़क पर चलते वक्त एहतियात जरूरी होती है, इसी तरह इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त भी कुछ हिफाजती उसूलों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी जाती मालूमात जैसे घर का पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम या पासवर्ड किसी नामालूम शख्स के साथ हरगिज शेयर ना करें। याद रखें, इंटरनेट पर हर शख्स वैसा नहीं होता जैसे वो खुद को जाहिर करता है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर कोई नामुनासिब पैगाम, तस्वीर या वीडियो नजर आए तो फौरन अपने वालिदैन, असातिज़ा या किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं। ऐसी चीजों को छुपाने के बजाय उनके बारे में बात करना ज्यादा बेहतर है। प्यारे बच्चों, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें और इन्हें किसी के साथ शेयर ना करें। इसी तरह सिर्फ मोतबर और महफूज वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर कोई लिंक मशकूक लगे तो इस पर क्लिक ना करें। इंटरनेट पर वक्त का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, ज्यादा देर तक मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करने से आंखों और सेहत पर असर पड़ सकता है, इसीलिए तालीम, खेल और आराम के दरमियान तवाजुन बरकरार रखें। इंटरनेट इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन इसका फायदा उसी वक्त हासिल किया जा सकता है जब हम उसे समझदारी, एहतियात और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम से हमें ये सबक मिला कि अपनी मालूमात को महफूज रखना, बड़ों की रहनुमाई लेना और जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट इस्तेमाल करना एक महफूज और बेहतर डिजिटल जिंदगी की बुनियाद है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, तब तक खुश रहे, महफूज रहे, खूब पढ़े और सीखते रहे। अल्लाह हाफिज। क्या नाम है आपका?

0: मत।
1: क्या सुनाएंगे?
0: चिड़िया बोली चूं चूं चूं।
1: सुनाइए।
0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिड़िया बोली चूं चूं चूं, मुर्गा बोला कुकड़ू कूं, रेल का इंजन बोला शू शू शू। मन्ना जब शरारत है तो अम्मी कहती है हूँ हूँ हूँ। बाकी वसलम।
1: बस हूँ कहती है। मुन्ना जब शरारत करता है तो किस किस को पड़ती है बताइए? अम्मी से किस किस को पड़ती है मार? पड़ती है। अच्छा देखें, वक्ती तौर तो हमें लगता है कि माँ बाप ने बहुत बुरा किया हमें मार के, लेकिन जो सियाने लोग हैं ना वो कहते हैं कि माँ बाप की मार बच्चे के लिए इस तरह है जिस तरह की जमीन में खाद। माँ बाप की डांट, माँ बाप का समझाना, बच्चों को लगता है ना कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हमेशा अपने माँ बाप की बात पे ध्यान रखा करो, ठीक है? अगली बार मैं आपसे पूछूंगी कि किस किस ने अपने मामा पापा की बात मानी। देखिए, जब आप अपने माँ बाप की बात पे ध्यान रखेंगे तो हमेशा तरक्की करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में सिर्फ माँ बाप की जात ऐसी जात है जो कि आपको अपने से बेहतर देखना चाहती है, अपने से आगे देखना चाहती है। तो अपने माँ बाप का दिल जो है वो कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनका हर काम मानना चाहिए, और माँ बाप की तरफ देख के जो हंसे वो भी सदका है, ठीक है? तो अब देखें कितना जरूरी है आप अपने माँ बाप की बात माने। मुझे लगता है बच्चों क्यों ना एक सॉन्ग सुना जाए,
0: जी
1: ठीक है?

0: इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक तआला आपको उम्र नू और शान ज़ुल्कर्नैन अता फरमाए। हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ जाता है। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए
1: खुदा हाफिज़।
2: ननी मुन्नी बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। होनहार, पेशकश समीना शाह। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव पर।

ये जय आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेबसाइट पेश जो सजाद सलोनी सुंद युकमत कौशल ड्रामा जोलान।

मगर ये तो गव गलत है। म्योनियत वनाख जजीरस मंस तन्हा रोजुन ये तो गव क्रोट हुई। तन्हाई चोमराहे भी में। ये तन्हाई, मगर ये तन्हाई मस हितन, हितन इम काव जावन, इम बदलत बुत फिर काव ती चन काम वोक, वोन त्रावन ने टोक सूर करित। यत जजीरस यत सर से जजीरा शु अंदिन आब यार म्योन वजूद यत आबस नक अख रूद कंत्र वुई न तो वुन शाप बई येत सुत्रस मंस बुचोस कोचान शा शा खालनस चुंबी ओ इतनहई कोचान Abat nakch, panen cai tu, tu swat kanan, panen, mager, ha, mager, kya senacu, abas maziran, kasi slash, ha, a lash, bakarin ye, kabar, bulimah sesakas.

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: कशिर छे नुंदरिश्त ललदिन हिन जबान बचे हिशने वो कशिर बोलून तो समझून کاشر چه سطح میر زبان

0: 12 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन रिले होगा।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक

0: की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that the joint commission between India and Indonesia is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. The External Affairs Minister made these opening remarks

जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में आपने शकील आजमी के अशआर सुने। ये आवाज है लता मंगेशकर की। जानिसार अख्तर के अशआर हैं ये।

फिल्मी गजलें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। आखिर में आपने जानिसार अख्तर के अशआर सुने लता मंगेशकर की आवाज में।

0: 12:30 होने वाले हैं और पेश है यहाँ से खबरें, पहले उर्दू में उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मैयत पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौम इस अजीम सपूत के फर्ज मनसबी की अदायगी के दौरान दी गई आला तरीन कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। उन्होंने शहीद के अहलखाना से यकजहती का इजहार करते हुए हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराई। वाज़ह रहे कि लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी ने राजौरी में जारी ऑपरेशन शेरोवाली के दौरान दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाई में अपनी जान निछावर कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जमीनी सतह पर वनशात के खिलाफ उठ रही आवाज़ को तकवीत बख्शने नीज नार्को टेररिज्म का खात्मा करने के अजम को दोहराया है। कल किश्तवाड़ में वनशात मुखारे पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 56 दिनों के दौरान 19 जिलों में पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत करके इस नासूर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।
2: छप्पन दिनों में लगातार एक मिशन के साथ एक प्रयास हुआ है कि जम्मू कश्मीर की धरती से हरेक तस्कर और आतंकवादी का सफाया हो जाए।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव स्पेक्ट।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: समय पेश किया कशरी गजल आगाज़।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव के अलावा FM 2103.5 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने वाला है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में

भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आप समाप्त कर रहे थे मगरबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो, पेश कर रहे थे मुख्तियार मलिक और सबरीन मुश्ताक। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव पर।

0: 1:50 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी में बारी बारी खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे कलीदी साझेदारी और वाहनी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीके खास मौजूआत हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाक्वामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन और अमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखने पर जोर दिया है। CBSE के 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जाँच के लिए आज आधी रात तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगी ओनो मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग 4 साल के वक्फे के बाद हो रही है और इस बात का एतराफ करना जरूरी है कि इस अरसे के दौरान बाहमी ताल्लुकात में काफी पेश

तो इससे बोजन कशिर मौसे की आकाशवाणी श्रीनगर पेट आखिर पेट पुजू तो वही जिलानी सिंह खूबसूरत आवाज मंज कलामी शहनाज रशीद।

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव पर। पेशे प्रोग्राम नई मंजिलें।
1: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश नई मंजिलें, जम्मू कश्मीर में जारी मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों से मुतलिक रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम नई मंजिलें।
2: प्रोग्राम नई मंजिलें का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। समीन मरकज में नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली एनडीए हुकूमत ने अपने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन 12 बरसों के दौरान मरकजी सरकार ने मुतअद्दिद ऐसी स्कीमों और प्रोग्रामों को वजूद बख्शा जिनके आम इंसान की जिंदगी पर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। तालीम से लेकर समाजी बहबूद तक और खवातीन की बाइख्तियारी से लेकर सेहत आमा तक तरह तरह के फलाही प्रोग्राम तरतीब दिए गए और इन प्रोग्रामों ने आम इंसान, खासतौर से गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की जिंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली लाई। इन्हीं फलाही प्रोग्रामों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत मुल्क के हर एक शहरी को एक गोल्डन कार्ड फराहम किया गया और बीमार होने की सूरत में उस गोल्डन कार्ड के तवस्सुत से उसकी 5 लाख रुपए तक की इलाज मुआलजा की सहूलियत फराहम की जाती हैं। डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर ने इस फलाही स्कीम के आम लोगों पर पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक एक तफसीली इंटरव्यू में वादी के एक मारूफ माहिर इक्तिसादियात एजाज अयूब के साथ बात की। आइए समाप्त करते हैं।
3: आफ्टर कवरेज, हाउ डू यू सी की जो इसका बेनिफिट है ग्राउंड पे, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारा जो लोग हैं काम करने वाले डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस में काम कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, उससे कितना आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन में, किस तरह से आप उसको देखते हैं?
4: मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा। आजकल हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट बहुत आम सी चीज हो चुकी है, उसमें जो स्टेंट आता है, स्टेंट डालते हैं हार्ट, वो भी गोल्डन कार्ड में कवर होता है। पेसमेकर वो भी

0: गोल्डन कार्ड में कवर होता है, आपकी आंखों की कैटरेक्ट की सर्जरी जो बहुत आम है एल्डरली लोगों में, वो भी इसमें कवर होती है। इन चीजों के लिए पहले ये चीजें फ्री नहीं थी, इसमें अपोर्ट पार्ट ऑफ इट वाज सपोज्ड टू बी पेड बाय द पेशेंट। हालांकि आई एम वेरी इस चीज को लेके कि जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ले ले या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले ले, बाकी चीजें स्पीड जो ग्रोथ की थी वो बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। पॉवर्टी भी देखें, 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है एज पर प्रीवियस सेंसस, कंपेयर टू मेनलैंड इंडिया 22% थे। तो यहाँ पे हेल्थ केयर ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी थी वो फ्री थी, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का भी एक अच्छा खासा नेटवर्क था, सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी। लेकिन कुछ बीमारियां जो अब आई, जैसे मैंने स्टंट डालते हैं हार्ट में या कैटरेक्ट की सर्जरी, या मैंने आपको अभी बोला पेसमेकर, ये पहले जरूरत नहीं पड़ती थी ज्यादा
1: जी,
0: अभी ये चीजें जरूरत है। अभी वाले सिस्टम में अगर पुराना जेएनके का सिनारियो होता तो ये चीजें लोगों को आउट ऑफ पॉकेट देनी पड़ती, अभी ये चीजें आउट ऑफ पॉकेट नहीं देनी पड़ती। हूसोएवर हैज द गोल्डन कार्ड एंड लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द गोल्डन कार्ड, वो लोगों को इससे बहुत आसाइश होती है। और रही बात छोटी छोटी एक्सीडेंटल वगैरह बाकी सब चीजें, वो सारी कवर होती है, और हमारे मेजर हॉस्पिटल सारे कवर्ड है इसमें, और इवन प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल जहां पे ऑफ लेट इन्वेस्टमेंट काफी हुई है प्राइवेट हेल्थ केयर में, वहां पे भी गोल्डन कार्ड्स को एक्सेप्टेंस अच्छी खासी लेवल पे हो। और सरकार की भी इम्प्लीमेंटेशन वो डीसी ऑफिसेज की लेवल पे हो या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स की लेवल पे हो, दे आर इंश्योरिंग कि ये चीज जो है जो
1: प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे हर जगह एक्सेप्टेबल,
0: करेक्ट, इवन प्राइवेट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी विद द गवर्नमेंट। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए वहां पे भी एक्सेप्टेंस लेवल इनकी बहुत अच्छी,
1: एक फैमिली है, फोर मेंबर फैमिली, फाइव मेंबर फैमिली। अब गोल्डन कार्ड हर एक के पास होता है,
0: गोल्डन कार्ड हर एक के पास हो सकता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो एक साल में आप 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते।
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक फैमिली में 5 मेंबर है, बच्चे है, फैमिली है, जो भी है, बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, जो एक एक इंडिविजुअल को गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड
0: एवरीबडी हैज टू हैव अ गोल्डन कार्ड, यस, हूएवर इज एन एडल्ट मेंबर उसको आप
1: ओनली एडल्ट। बच्चों के लिए क्या है इसमें?
0: बच्चों के लिए आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू कि बच्चों के लिए, एडल्ट मेंबर्स के लिए गोल्डन कार्ड इज अवेलेबल। और इसमें जो कवरेज है दैट इज कैशलेस कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, मीन्स खुदा ना खास्ता कभी एक फैमिली मेंबर बीमार हो गया, उसको लाख रुपए का खर्चा आ गया, अब अगर दूसरा मेंबर बीमार
1: हो मार्जिन,
0: यस, तो दूसरे मेंबर को भी आप यूज
1: अप टू 5 लाख इन अ ईयर,
0: इन अ ईयर, दूसरे साल जो ही मार्च आपका खत्म हो रहा है इसमें एलोकेशन फिर से होती है, आपका वो काइंड ऑफ रिचार्ज फिर से हो जाता है 5 लाख के लिए। इसमें कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कंसल्टेशन भी है, मेडिसिन भी है, डायग्नोस्टिक्स भी है, मीन्स आपको टेस्ट भी इसमें कवर हो जाते हैं, सर्जरी भी, इम्प्लांट्स जैसे मैंने बात की स्टेंट वगैरह लगता है, एकोमोडेशन एंड फूड भी। इमेजिन ये कितनी कॉम्प्रहेंसिव है कि अस्पताल में आपको बैठना पड़ा, वहां पे खाना पीना या रहना पड़ा, तो उसके लिए भी गोल्डन कार्ड की आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन देता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन कवर होते हैं इसमें। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग ड्यू टू द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट किया उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो गई फर्दर, वो भी इसमें कवर होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती है, तो ये नहीं है कि आपने गोल्डन कार्ड बनाया उसके बाद अगर आप बीमार हुए, बट गोल्डन कार्ड आपने आज बनाया, somebody suffering from diabetes from last 10 years, he is also eligible.
1: Okay.
0: इसमें फैमिली साइज की लिमिटेशन नहीं है, जैसे 4 हम बोलते हैं, इट इज समबडी हैज अ फैमिली ऑफ 10, ही इज आल्सो एलिजिबल। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन जेंडर, ऑब्वियसली नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी है, बेनिफिट्स अवेलेबल ऑल अक्रॉस, अप्रोक्सीमेटली 2000 के करीब मेडिकल प्रोसीजर्स जो है यह कवर करता है। सो ये बहुत ही मेटिकुलस स्कीम है। जो आपने किड्स की बात की, बच्चों की, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर कवर्ड और नॉट, बट आई थिंक इसमें एज का, अपर एज का कोई बार नहीं है, लोअर एज का मुझे नहीं पता, मुझे आई विल हैव टू सी।
1: क्या बाहर भी है, वहां पे भी एलिजिबिलिटी है हर जगह?
0: अक्रॉस, यू आर अ गोल्डन कार्ड होल्डर, इट हैज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अक्रॉस द कंट्री।
1: ओके,
0: आपने मे बी आपने अपने लोकली बनाया होगा डीसी ऑफिस से या जो भी हेल्थ केयर
1: जहां से भी बना,
0: हाँ, लेकिन अगर आप गॉड
1: फॉरबिड
0: somebody is in Goa, he faces an accident, so he can go to a local hospital in Goa and get
1: his... so they will accept that card.
0: Yes, of course.
1: तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे यहाँ लोकली होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बल्कि अच्छा, जो फैसिलिटीज वहाँ पे होंगे ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे जो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो तो जाहिर है ज्यादा भी हो सकता है।
0: 5 लाख आपकी अपर कैप है, उसमें जो भी आप ले सकते हैं, 5 लाख, अगर किसी का 6 लाख हो गया, he will have to pay the additional expenses.
1: Okay.
0: ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सरकार का बजट लिमिटेड है,
1: हर चीज कवर नहीं हो सकती,
0: हर चीज कवर नहीं हो सकती।
1: लेकिन बट स्कीम जो है आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट एंड एज वी एज यू नो द पीपल इन द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, तो हम क्या ये समझ सकते हैं या क्या हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही

0: प्रो पीपल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
1: एब्सोल्युटली, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट पहले से, 1947 से ही. पहले अगर देखिए तो इंडिया का जो मॉडल था फेबियन सोशलिज्म का था, सबसे ज्यादा सर्विसेज सरकार ही देती थी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फिर ऑब्वियसली जो ग्लोबल इकोनॉमी ओपन अप हुई, डिमांड्स रियलिटीज चेंज हुई, तो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला. लेकिन जो रोल सरकार का है, दैट इज टू कीप एब्रिस्ट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोशली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन दो ऐसी चीजें आती है विच इज बिसाइड्स रोटी कपड़ा एंड मकान. इन तीन चीजों के अलावा दो बड़ी चीजें हैं जिन पे खर्चा होता है एक फैमिली का, हेल्थ केयर एंड योर एजुकेशन. ये दोनों चीजों को लेके कोई भी सरकार हो, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, वो कांग्रेस की हो, एनडीए, यूपीए, इन्होंने कंसिस्टेंटली इन पे स्कीम्स जो है कंसिस्टेंटली बनाई, बजटरी एलोकेशंस बनाई है. हमने रिसेंटली आपके साथ आई थिंक एमजी नरेगा को, जिसको जी राम जी स्कीम बनाया गया, उस पर भी हमने डिस्कशन
0: किया.
1: करेक्ट, वो जॉब के लिए है. इसी तरह से एजुकेशन के लिए विद्यालक्ष्मी स्कीम है, बहुत सारी, यू हैव एंडलेस स्कीम्स. तो इंडिया एज अ कंट्री हैज ऑलवेज बीन प्रो पुअर. ऑब्वियसली लाइक आई सेड, 90s के बाद एक कैपिटलिस्टिक जो है रिजीम कंसिस्टेंटली बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. लेकिन अभी भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे डोंट स्टे अवे फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड विद स्कीम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर इट्स पीपल.
2: समीन, 21वीं सदी को मस्नूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी कहा जाता है. हालिया बरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी के हर शोबे पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अब हमारी जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिस पर मस्नूई जहानत ने अपने असरात मुरतब न किए हों. मस्नूई जहानत क्या है और जम्मू कश्मीर में मस्नूई जहानत को अपनाने और इससे पड़ने वाले असरात के ताल्लुक से शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर ने मुल्क के एक मारूफ एआई माहिर और विजन डिजिटल इंडिया नामी एआई कंपनी के सरबरा डॉक्टर हरिकृष्ण मारम से एक इंटरव्यू में बात की तो उन्होंने कहा,
3: डॉक्टर हरिकृष्ण मारम जी, यू टॉक्ड अबाउट द यू नो द आर्टिफिशियल एआई टूल्स यूटिलिटी ऑफ और द इंपॉर्टेंस ऑफ इन द कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग नाउ. नाउ कमिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव गुड एक्सपीरियंस टू बी हियर. हाउ डू यू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ वी कुड यू नो वी वुड बी एबल टू यूटिलाइज, वी विल बी एबल टू टेक एडवांटेजेस इन अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, in a comprehensive system. So how do you see the future of artificial intelligence in Jammu and Kashmir, and not only future, what has to be done by the government, by the stakeholders, by all the stakeholders, how we should take it forward?
4: I think Jammu Kashmir geographically, when you look at population, it is a very small state with less than 2 crore population. And when we look about the statistics of Jammu Kashmir, you know, the male and female ratio, out of every 1,000 people, 700 people are female, unlike any other states in this country. The other thing is the literacy rate. Jammu Kashmir got almost 70% literacy rate. In that, again, there is a vast difference between the male and female literacy rate. And the major economy in Jammu Kashmir, the contribution to the Indian economy is very low, but even though, the potential is very high. We jada resources hai, jada income hai Jammu Kashmir mein through tourism, through agriculture. These are the two major sectors. So usme artificial intelligence ka usage we can do in a large scale. The reason is today tourism attract all the global people across the world. There is no limit for a tourism. So aajkal you know, the thing is the travel is restricted because of this war and because of the airlines severe kind of cancellation of so many routes. So today Indian tourism is majorly focused. And Jammu Kashmir is definitely a beautiful destination. So where we can promote this tourism using AI tools, creating a lot of content like videos using AI tools, because you don't require a lot of technology, lot of things what was happening earlier. Aajkal abhi AI use karke we can able to create lot of videos, lot of beautiful promotional things which can be promoted across the world. So that can attract large number of tourists to Jammu Kashmir, and that definitely create a lot of income. And sabse badhiya hai Jammu Kashmir ka product, agricultural products. Today I take example of even apple, which is quite popular, then saffron. These all quite innovative products, even gems. So these all not available anywhere in this

0: वेरी रेयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट्स हम एआई यूज करके वी कैन एबल टू प्रमोट, एंड नॉट ओनली दैट, इवन इन एडुकेशन सिस्टम. सो व्हाट एवर लिमिटेड यूनिवर्सिटीज, लिमिटेड कॉलेजेस एंड स्कूल्स विच वी हैव इन जम्मू काश्मीर, देर इज अ नीड ऑफ मोर अवेयरनेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड ऑल्सो द अदर एडवांटेज इज टूडे वेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, सिंस द फीमेल पॉपुलेशन इज मोर इन जम्मू काश्मीर एंड द लिटरेसी रेट्स आर low with a female thing. So the AI can able to help giving basic knowledge on AI, basic how they can work using AI tools. So this can able to help very large state like Jammu Kashmir. Our organization Vision Digital India working towards that. I visited multiple times to Jammu Kashmir. I met large number of educational leaders from this Jammu Kashmir leader, Ladakh region, trying to establish a lot of new things in Jammu Kashmir, where we are part of doing a lot of training programs, collaborating with university, central university, collaborating with some of the top colleges and the schools. And we also recruited a lot of people from your region, the Jammu Kashmir region, where we see a lot of potential, where they can able to influence, educate, and also take advantage of native thing. And already they are on work. They are touring to different parts of Jammu Kashmir, trying to educate people on artificial intelligence.
1: You talked about agriculture and allied sectors and also the tourism. So we have also, largest variety of handicrafts, handloom items across Jammu and Kashmir. Would artificial intelligence, help in all these sectors also?
0: Definitely, because any sector, if you look at today, AI is playing a very important role. You rightly mentioned some of these handicrafts, some of these things is globally reputed, like Kashmir handicraft products are internationally today available, and people are aware of them. So reaching this, and also there are a lot of fake products are available in the world telling about, the product is from Srinagar, product is Kashmir, but maybe they are not sourcing from there. So using artificial intelligence, we can able to create a lot of security features into your product, and this product distribution system, availability, sales can be improved using artificial intelligence. So हमारा यूथ को हम एडुकेट करके इसका बारे में, इफ दे कैन एबल टू वर्क ऑन बिकम एंटरप्रेनर, स्टार्ट समथिंग लाइक अ ई कॉमर्स थिंग्स, एक्सपेशली selling these handicrafts and selling the products, very kind of innovative products from Kashmir, they can able to reach across the globe, and revenue can be generated, a large number of employability can be created.
2: समीन, हाल ही में बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम हलीमा सादिया ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जिस दौरान शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर ने उनके साथ एक खसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उन्होंने हलीमा सादिया के साथ बातचीत के दौरान नौजवान नस्ल या फिर बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों पर मस्नूई जहानत के असरात से मुतल्लिक बात की, जिसके जवाब में हलीमा सादिया ने कहा,
1: जैसे आपने इनोवेशन की बात की है, हमारा जो भी टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो भी इनोवेशंस होती हैं, साइंटिफिक इनोवेशंस, उसको हम किस तरह से हम अहंग करेंगे?
3: जी देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी इंसान नई नई चीजें बना रहा है
1: जी,
3: वो इंसान के इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। इसीलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता है
1: जी,
3: क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस रियल है और वो आर्टिफिशियल है
1: जी।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज ए टूल लेना है, लेकिन अपना दिमाग उसमें लगाना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे स्कूल के तलबा तालबात हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इससे, कि वो अपना दिमाग लगाते नहीं है, क्वेश्चन टाइप किया, उससे आंसर ले लिया, उसको कॉपी कर लिया, कुछ क्रिएटिव अगर टीचर ने करने को दिया है तो वो भी वहां से लिया, इससे कॉपी कर लिया, वहां से राइटअप कॉपी कर लिया, तो इससे क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, उनके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। और एक और बात बता दूं, सोचने की सलाहियत जो हमारे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स है उससे भी बहुत हो रही है, कि जो हमारे नौजवान जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, रील पे रील्स देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो दिमाग को चाहिए एक पुरसुकून आबोहवा,
1: कंसंट्रेशन।
3: आप बहुत लकी हैं कि आप श्रीनगर जैसे आबोहवा में हैं यहाँ पे,
1: लेकिन बहुत खराब हो रहा है। अच्छा, हमारी वजह से खराब हो रहा है
3: बिल्कुल। लेकिन
1: जैसे आपने सर शरीफ हजरत बल में आपने डल लेक को देखा, वहां के हालात, इसी तरह बहुत सारी वाटर बॉडीज जिनको हम खराब कर रहे हैं, हमारा जहलिम जो है वो सुकड़ रहा है, सूख रहा है।
3: नौजवान नस्ल है उनको हमें बताने,
1: जैसे हमने गूगल किया, किसी और जगह किया।

0: किसी भी इसमें डाल दिया तो कुछ भी आता है, तो दैट इज टू बी वेरीफाइड एंड क्रॉस चेक्ड.
1: यस यस. एंड इसी तरह से वहां पे टीचर का रोल फिर आता है कि एक टीचर की जो हमेशा एक अहमियत होती है, एक फोकियत होती है, इसी बिना पे होती है कि टीचर बच्चों को ये सिखाता है कि एनालाइज करना सिखाता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना.
0: आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिस लेवल के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किस तरह का एक क्या मैकेनिज्म रखना चाहिए जिसमें हम पोल्यूशन को बाहर रखें, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करें या डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनाएं. क्या हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में भी, हमारे स्कूल में भी, आगे पीछे इर्द गिर्द भी, बल्कि अंदर हमारी कई, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हम वहां पढ़ते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, इतना हम देखते हैं सिगरेट के खाली पैक्स, चिप्स के वो कागज या जो भी होता है पॉलिथीन होते हैं. हमारे जम्मू कश्मीर में अब ड्रग्स का भी बहुत एक परेशानी ऐसी आ गई है कि अभी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने एक 100 डेज की एक कैंपेन शुरू की है. लेकिन ये सारे मसाइल जो हैं, बहुत सारे, किस तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए इस चीज को इन्हें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए?
1: सबसे पहले तो हमारे जो असातिज़े कराम हैं, माफ कीजिएगा मैं वहां से शुरुआत करूंगी
0: जी,
1: कि वो ये सोचते हैं कि वो हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, डेटा साइंस, बायोलॉजी ये पढ़ाने जाते हैं
0: या रिसर्च में जा रहे हैं.
1: तो सबसे पहले तो उनको वहीं से चेंज करना है अपना माइंडसेट कि वो सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं, बल्कि द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन इज बीइंग बिल्ट इन द क्लासरूम. तो अब जब से हमने टीचर्स ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी, देखिए पहले का टीचर क्या था, अगर उसे पता चला कि किसी बच्चे ने कहीं पे स्पिट कर दिया है तो उसे अकेले में बुला के उसको समझाते थे, उसको टाइम देते थे. यहाँ तक कि जो बच्चा अगर पांव घिस करके चलता था, मुझे अभी तक याद है, तो प्रिंसिपल उन्हें अकेले में बुला करके समझाते थे कि देखो तुम ऐसे चल रहे हो, शूज घिस करके, ऐसे नहीं चलना है, आपको कैसे उठा के चलना है पैर को और क्या सही तरीका है. तरबियत पे तवज्जो थी. जहां इस तरबियत को निकाल दिया है तालीम से, वही प्रॉब्लम आ गई है. असातिज़ा क्या सोचते हैं, हमें सिलेबस कवर करना है, बाय द एंड ऑफ द ईयर सिलेबस कवर करके, रिसर्च पूरी करके, एक रिपोर्ट बना करके सबमिट कर देना है, मेरा काम खत्म. तो इस बच्चे की जो किरदार साजी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप के पास तो टाइम नहीं है, आजकल दोनों वर्किंग होने लगे हैं. अगर वर्किंग नहीं भी है, मान लिया कि फादर वर्किंग है, मदर वर्किंग नहीं है, तो फिर उनके पास भी और बहुत सी मसरूफियात आ गई हैं. सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया आ गया है, इसकी बना पे घर पे वो तरबियत ही, नानी दादी अब घरों में नहीं रही, खाला खालू वगैरह जो पहले टोका करते थे वो नहीं घरों में रहे. एक सोशल सिस्टम था, पहले दुकान पे बच्चे जाते थे, रास्ते में कोई भी मिला बड़ा बुजुर्ग, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हारे अबू को बता देंगे. सोशलाइजेशन में तो नहीं है ना, बच्चा तो हर चीज ऑनलाइन में मंगा ले रहा है. तो हमें सबसे पहले अपने स्कूल कॉलेजेस में असातिज़ा को ये भी बताने की जरूरत है कि बच्चे की तरबियत भी आपकी ही जिम्मेदारी है, नंबर वन. और इसके लिए उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उनके जॉब प्रोफाइल होती है, उसमें भी डालने की जरूरत है. नंबर टू, जो रेगुलेटरी की बात है, आखिर सिगरेट बच्चों के हाथ में आता कहाँ से है, कैंपस के कितने एरिया में,
0: कितने बाहर से रख सकते हैं, नो स्मोकिंग जोन या इस तरह के.
1: फिर ये कि सडन चेकिंग भी होना चाहिए, सरप्राइज चेकिंग बच्चों के होना चाहिए. बच्चों के दिल में एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फियर होना जरूरी है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे कि मालदीव्स में भी था तो वहाँ वेपिंग का काफी रिवाज है, तो हम सरप्राइज चेकिंग्स हम लोग अपने स्कूल में क्या करते थे, उस पर जो पनिशमेंट पहले से अनाउंस हो कि अगर किसी बच्चे के बैग में ये मान लिया कि नो स्मोकिंग जोन है, इस कॉलेज के अंदर स्मोकिंग अलाउड ही नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: तो अगर किसी के अंदर निकला तो उसको जो भी पनिशमेंट है उसे देना चाहिए, कि ताकि एक फियर लोगों के दिल में ये रहे, लोगों के दिल में. और फिर बार बार उनके लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएं जिसमें उनको नशे की बीमारी क्या होती है, स्मोकिंग से क्या नुकसानात होते हैं, किस तरह से एक इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है. और जब हम उनके सामने कोई चीज प्रेजेंट करें ना, तो उनके अपनी मिसालों के जरिए करें, उन्हीं के अंदर से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है. जैसे मेरे नॉलेज में आया कि अभी यहां से काफी लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हैबिट. ये सब चीजें इंसान बाहर सीखता है, ये तो आप जानते होंगे, कोई इंसान माँ बाप नहीं घर में बिठा के बच्चों को कहते
0: हैं बाहर के माहौल में ही सीखता
1: है. एक इंसान बाहर कब जाता है, हम अपने घर के खिड़कियां दरवाजे कब खोलते हैं, जब अंदर सफोकेशन फील होता है
0: जी.
1: तो जब हमारे घर का माहौल ऐसा होता है जिसमें बच्चे को लगता है कि यहाँ पे एक सफोकेशन है, यहाँ पे उतनी उसकी नर्चरिंग नहीं हो रही है, इतनी उसको जो वालेहाना मोहब्बत चाहिए, जो टाइम चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो घर से बाहर वो चीज तलाश करने की कोशिश करता है. तो हमारे घर के माहौल को भी बदलने की जरूरत है जिसमें माँ बाप बच्चों के साथ बैठें. अब जमाना ये नहीं रह गया है कि हमें एक गैप मेंटेन करके उनसे इस टॉपिक पे कैसे बात करेंगे, उस पे कैसे बात करेंगे, हर टॉपिक पे बात करने की जरूरत है.
0: एग्जैक्टली.
1: क्योंकि अगर हम
0: चाहे लड़का है या लड़की है
1: जी, अगर हम नहीं बात करेंगे तो मीडिया उससे बात करेगा, उसके दोस्त उससे बात करेंगे, और वो जो बात करेंगे वो गलत तरीके से
0: उछाला जाएगा बाहर और ये पब्लिक बन जाएगा.
1: बिल्कुल. हम बात करेंगे तो हम सही उनको गाइडेंस देंगे, तो इसकी बहुत जरूरत है कि वो

0: देन बच्चों के दिल में झांके, उनसे बातें करें, उनके दिमाग को समझने की कोशिश करें।
1: डॉक्टर मैम, ऐसा है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी आ गई, जैसे आपने बात की एजुकेशन, बहरहाल सरकार ही मैनेजमेंट है, सरकारी मैनेजमेंट है और सरकार के पास भी काम है इसी गवर्नेंस में, लेकिन बट जहां एजुकेशन की बात है दैट इज अ प्राइम कोर कंसर्न, या दैट शुड बी द प्राइम कोर कंसर्न। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने यहाँ कश्मीर दौरे के दौरान हमारे लिए वक्त निकाला, और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह जब भी आप वापस यहाँ दोबारा तशरीफ लाएंगे, हम दोबारा आपके साथ बात करेंगे, आपकी एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुँचाए इस जरिए से, आकाशवाणी के इस जरिए से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम
0: जी। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने आप दावत दी, हमें यहाँ बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा, और शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
2: समिन, किसी भी मुल्क कौम की तामीर तरक्की में इंजीनियरिंग और इंजीनियरों का रोल इंतहाई अहम है। बुनियादी ढांचे की तामीर से रेगुलेशन तक और नई नई ईजादात से लेकर इन ईजादात के रखरखाव तक हमारे इंजीनियर आम लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे इंजीनियर लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने के ताल्लुक से क्या रोल अदा कर रहे हैं, यही सवाल डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर ने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर के सदर इंजीनियर फिरदौस अहमद से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा, तो उन्होंने जवाब में कहा।
1: इंजीनियर फिरदौस अहमद भट्ट साहब, क्या है रोल ऑफ इंजीनियर कम्युनिटी पब्लिक वेलफेयर में, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें सर?
3: जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो इंजीनियर्स का रोल है वो यूनिफाइड है, यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर आप इंडिया की, भारत की बात करेंगे, यहाँ का रोल डिफरेंट था बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री एट। तो उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ आप फोकस करेंगे, जहाँ का हम, इस रीजन में इंजीनियर्स का भी डिफरेंट रोल है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट इज ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ इज क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ इज वेदर। तो स्पेशली कश्मीर रीजन में तो इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट, जैसे आपने छुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
1: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैंने बात,
3: हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंजीनियर्स का रोल चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, हाउसिंग हो, अर्बन प्लानिंग हो, देयर इज नो एस्पेक्ट इन द लाइफ जहां पे इंजीनियर्स का रोल। लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, उतने रोड ब्रॉडर चाहिए, उतने फ्लाईओवर्स चाहिए, उतनी बिल्डिंग्स चाहिए, उतने हॉस्पिटल चाहिए, उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए, उतनी उनकी वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विद द पॉपुलेशन इज डिमांडिंग, एंड ड्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियर्स का रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर हो गया तो वो कौम बहुत पीछे रह सकते।
1: रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात है, माउंटेनियस एरियाज में टेरेन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, हम देखते हैं इसको, आप कैसे देखते हैं? और जो स्मार्ट अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग है, इन दो निकात पे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: पहला जो आपने छुआ कि जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसे टेरेन पे रहती है, पहाड़ों पे रहती है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इंजीनियर्स ने इतना अच्छा रोल अदा किया कि नंबर वन दे वर इन प्रोग्रेस एंड गिविंग द कनेक्टिविटी टू द पीपल। उन्होंने लोगों को कनेक्टिविटी में किया, चाहे वो आप किश्तवाड़ देखो, डोडा देखो, राजौरी देखो, कुपवाड़ा देखो, हंदवाड़ा देखो, फार फ्लंग एरियाज जो जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उसमें इंजीनियर्स का बहुत रोल रहा एज पर द रोड कनेक्टिविटी,
1: स्मार्ट अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग।
3: देखिए सर तारिक साहब, जम्मू कश्मीर एक ब्यूटीफुल एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे टूरिस्ट की डिमांड भी फुलफिल करनी पड़ती है
1: जी।
3: उसके मतलब इंजीनियर्स का रोल, चाहे वो रोड हो, वाटर हो, केबल कार हो, बाकी चीजें हो, कनेक्टिविटी हो, उनको पूरा अट्रैक्ट करने के लिए इंजीनियर्स का भी रोल बन, लेकिन एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द डिप्लीटिंग द सोर्स व्हिच आर ऑलरेडी वी हैव। सो उनको मद्देनजर रखे हुए इंजीनियर्स का स्मार्ट सिटी अर्बन प्लानिंग में इतना बड़ा रोल कहीं नहीं है जितना टूरिस्ट स्पॉट, जैसे जम्मू कश्मीर एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द इंडिया है, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, इनका भी यहाँ पे रोल बनता है
1: जी। रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो लिए जाते हैं हाथ में, या इसी तरह हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इसमें किस तरह का मतलब आप देखते हैं? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट, पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और हॉस्टल और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने में किस तरह का इनपुट रहता है ओवरऑल इंजीनियर्स का? डिफरेंट विंग्स, डिफरेंट जो आपके डिफरेंट विंग्स हैं, इसको गवर्नमेंट किस तरह से लेती है, और आप एज एन एक्सपर्ट, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है?
3: एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, कि जहां पे इंजीनियर्स का रोल है जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल कनेक्टिविटी में, इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप, यहां लोगों की डिमांड जब आती है थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव में आती है, तो लेजिस्लेटिव को खाब जो है वो कन्वर्ट करता है इंजीनियरिंग अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी में। सपोज ماحول جہاں پہ ہاسپٹل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس ٹرین میں ہم بنا رہے ہیں, وہاں ارتھ کوئک کا کتنا خیال رکھنا ہے اور فلڈ کا کتنا خیال رکھنا ہے انفراسٹرکچر میں, تو اس میں انجینئر ایک ڈی پی آر بناتا ہے, ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ.
1: جی,
3: تو ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ جب ایک پروسیس کی طرح تھرو جاتا ہے, ایویلویٹ ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی کہ یہ ویلڈ ہے, اس میں یہ فیزبل ہے آپٹیمل ڈیزائن میں ایویلویشن کے بعد, تو اسی کو چوز کر کے اسی ڈی پی آر کے باضابطہ پیپر بنتے ہیں

0: और ऑनलाइन आज टेंडरिंग है। ऑनलाइन टेंडर के बाद उसी ख्वाब को जो लोगों ने बेसिकली बुना है और लेजिस्लेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ, इंजीनियर इसको कन्वर्ट करता है ऑन द ग्राउंड इन अ टेक्नोलॉजी।
1: इंजीनियर फिरदौस साहब, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट R&B के हैं, जल शक्ति है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग जैसे हैं, ये तो बिल्कुल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज पे हेविली डिपेंडेंट हैं। ये कैसे कोप अप किया जाता है, इतना बड़ा काम है और कितना इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, या किस तरह की आज के इस मॉडर्न टाइम्स में एज ऑन डेट जो हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा कंसेप्ट है जो लाजमी, यानी जो बहुत इंडिस्पेंसिबल बन गया है, कि भाई नहीं हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स एट ग्लोबल लेवल, क्लाइमेट चेंज है, बाकी चीजें हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं या आप जहां पे काम जिस तरह से भी हो रहा है, इसको आप पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे इसको एंश्योर किया जाता है?
0: एग्जैक्टली, यहाँ के जो इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत ओल्ड हैं, दे हैव अ लेगेसी। यहाँ पे बड़े टाइकूनस निकले हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बाज़ाब्ता बना है, एक PWD मैनुअल बना है जिसके तहत काम हो रहा है, उसमें JEE एस्टिमेशन कर रहा है, प्रॉपरली साइट पे जा रहा है, उसके बाद टेक्निकल सेक्शन उसका एवेल्युएट कर रहा है, उसके बाद टेंडरिंग हो रही है, उसके बाद टेंडरिंग के बाद एग्जीक्यूशन में पूरा सुपरवाइज मॉनिटर हो रहा है। इसमें फार फ्लंग एरियाज को भी जाना पड़ता है फ्रॉम योर ऑफिस इंजीनियर्स, वो एग्जर्ट करके 24/7 इन दिनों वो ये नहीं डिसाइड करते हैं कि 10-4 ड्यूटी है, ताकि जो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपरली ये जो ये इनका टेक्निक रोड मैप इन्होंने बनाया फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो कोशिश करते हैं वेदर विद सम प्रोजेक्ट सक्सीड, देयर आर सम लैक्यूनास आल्सो रिमेनिंग, लेकिन मेजॉरिटी में चाहे वो पावर सेक्टर हो, जैसे आपने मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग, जब कोविड आया तो मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ऑक्सीजन प्लांटों की इतनी बेहतर की जम्मू कश्मीर में कि इट वॉज द ओनली ड्यूटी वेयर देयर नॉट अ डेथ हैपेंड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन।
1: ओके,
0: इट वॉज रियली अप्रिशिएबल।
2: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम नई मंजिलें। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेशे फौजीबाइयों के लिए फिल्मी संगीत का प्रोग्राम।

फौजी भैया, आपने फिल्म राजा से नगमा सुना? अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

नलिन देव और अलका याग्निक की आवाजों में नगमा पेश है। फिल्म का नाम है प्रेम। ये नगमा लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फौजी भाई, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा हमारी आवाज़ अब तक FM 2 103.4

फौजी भाई, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा हमारी आवाज़ अब तक FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी पहुंच रही है।

तुम सा नहीं देखा, फौजी भाई ये फिल्म का नाम है। आवाज है श्रिया घोषाल की।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

कभी खुशी कभी गम, फौजी भाई ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म से नगमा पेश है, ये आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

फौजी भाई, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से संवाद कर रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा हमारी आवाज़ आप तक FM 103.5 MHz पर भी पहुंच रही है।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव केला वाई FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 3:50 होने वाले हैं। अब पेश है यहाँ से उर्दू में खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। बैन अक्वामी सरहदों के मुतसिल माली लेन देन, इमारतों की तामीर और असासों की खरीदो फरोख पर करीबी नजर रखने के लिए मरकजी वजीर दाखिला का जोर। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सरगर्मी के साथ जारी, किश्तवाड़ में भी पदयात्रा का इनेकाद। गजाई सलामती के आलमी दिन के मौके पर जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद और जालसाजी और धोखाधही के एक मामले में मुलविस दो अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अक्वामी सरहदों के मुतसिल होने वाले माली लेन देन, इमारतों की तामीर और असासों की खरीदो फरोख्त पर करीबी नजर रखने पर जोर दिया है। बीएसएफ के त्रिपुरा सरहदी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए अमित शाह ने साथ ही पिछले 5 वर्ष के जमीन के रिकॉर्ड का जायजा लेने की भी हिदायत दी। उन्होंने मुनशियात और असलाह की स्मगलिंग के खिलाफ वक्तन फवक्तन जरूरी कार्रवाइयां अंजाम देने की जरूरत उजागर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जमीनी सतह पर मुनशियात के खिलाफ उठ रही आवाज को तकवीत बख्शने नीज नार्को टेररिज्म का खात्मा करने के आजम को दोहराया है। किश्तवाड़ में मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 56 दिनों के दौरान 19 जिलों में पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत करके इस नासूर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एलजी मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू से की थी और उन्होंने तमाम अजला में मुनशियात मुखालिफ पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की कयादत की। अभियान की शुरुआत के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुनशियात के नेटवर्क को खत्म करने और इस धंधे में मुलविस लोगों के खिलाफ करार वाकई सजा दिलाने के आजम को दोहराया।

0: कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: समाजी सतह पर मनशियात का कलाकबा करने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक मदारिस सुखबीर सिंह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जो ये नशा है ये आज समाज में एक विद्युत बन गई जो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रही है। वक्त के साथ साथ ये पूरे परिवार को खराब कर रही है, पूरे माशरे को खराब कर रही है। जो बच्चे होते वो कौम का मुस्तकबल होते हैं। मेरी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी यही हदायत है कि अपने बच्चों को इस विद्युत से दूर रखें, क्योंकि ये ना कि उनका मुस्तकबल खराब कर देगी भले पूरे माशरे को खराब कर देगी।
1: मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में अजादारों के लिए फराहम की जा रही बुनियादी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। डिवीजनल कमिश्नर ने मुतलका महकमों को हिदायत दी कि वो मुहर्रम के पेश नज़र तमाम जरूरी इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल करें ताकि मजहबी इज्तिमात और आजादारी के जुलूस पुरअमन और एहसन तरीके से मुनक्किद हो सकें। दुनिया भर में आज फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन गजाई सलामती को हक और जिम्मेदारी के तौर पर उजागर करता है और साथ ही ये इज्तिमाई कार्रवाई के लिए एक मजबूत मौके की बुनियाद भी रखता है। इस साल इस दिन का मौजू है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, जो हर सतह पर महफूज गजा को यकीनी बनाने की अहमियत को उजागर करता है। इस हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने कहा,
3: हम हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। मुद्दा मकसद ये होता है कि लोगों तक फूड बॉर्न डिजीज के खतरात के बारे में जानकारी पहुंचाना और सेफ फूड को एंश्योर करना। इस साल की जो थीम है फूड सेफ्टी डे पे वो है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन। जो फूड बॉर्न डिजीज हैं, जो अनसेफ फूड की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बर्डन पड़ जाता है वो कितना ज्यादा होता है, उसके साथ साथ एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग सालाना कंटेमिनेटेड फूड की वजह से अजल बन जाते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगा हुआ है इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट में फूड अवेलेबल है तो आवर कंज्यूमर दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी होलसम।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेफ्टिनेंट बरीश्वर गोस्वामी को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मैयत पर फूल निशावर किए, जिन्होंने राजौरी में नासाजगार मौसम के बीच मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में जारी तलाशी कार्रवाई के दौरान अपनी जान कुर्बान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौम इस अजीम सपूत की खिदमत को हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने शहीद फौजी ऑफिसर के अहले खाना से यकजहती का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान फौज की व्हाइट नाइट कोर जीओसी और दीगर तमाम रैंकों के अफसरान ने भी लेफ्टिनेंट बरीश्वर गोस्वामी की शहादत पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। यह खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इक्तिसादी जराइम से मुतलिक विंग ने जालसाजी और धोखाधही के एक मामले में 2 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रेस नोट के मुताबिक रिक शिलवट सुंबल बांडीपुरा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद भट्ट और असदुल्ला भट्ट नाम के इन मुलजमान ने अपनी तालीमी काबिलियत छुपाकर और जाली सर्टिफिकेट के जरिए तारीख पैदाइश में रद्दबदल करके सरकारी मुलाजमों की मुद्दत में गैर कानूनी तौसी हासिल की, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को माली नुकसान पहुंचा। क्राइम ब्रांच ने अवाम से इक्तिसादी फ्रॉड के मामलात की इतला फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को देने की अपील की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहिन ने आज श्रीनगर में पार्टी के कौमी वर्किंग सदर संजय झा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी, समाजी और तरक्याती सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। जीएम शाही ने उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी सरगर्मियों और अवामी राबता प्रोग्रामों के बारे में भी बताया। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कयादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तिफादा करके तिबे निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर, अस्सलाम वालेकुम। आज दा पहाड़ी प्रोग्राम किनका है, मैं हूं सादा मेज़बान इम्तियाज़ अहमद मीर। सामिन उम्मीद कर दिया कि तुम सारे बखैर वाफियत दसो और हमेशा की तरह अपना एक पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और खोज नाल सुन रहे हो। सामिन अज अतारा की महफिल है, हला तो वाकत गीत संगीत की महफिल किनका है, असं तुसा की खिदमत पर हाजिर हाँ। सामिन प्रोग्राम के शुरू भी तुसा नाल इस गल का जिक्र करा कि अज मौसम काफ़ी बेहतरी नज़र आई दी है और महकमे मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक आइंदा आने वाले कुछ दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर खुशक रहने का इम्कान है, दिहाड़ी वेले गर्मी में वाधा हो सकता है। समय इस खुशगवार मौसम के बिचकार असं देखते हैं तो इस वादी कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर की अगर असं गल करा तो जाई जाई पर सियाह लोगों का तांता बंद है, हज़ारों की तादाद भी सियाह लोग वारद जम्मू कश्मीर हो रहे और इतना मुख्तलिफ जगह जुलका लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर मेज़बानी वास्ते मनी जाती है और असं उम्मीद करते हैं कि जितने भी सियाह लोग इतने आते हैं वह जुल के बाकी लोगों तो भी एक गल पुछा सन कि किस किस्म की मेज़बानी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों सुन की थी, किस किस्म के नज़ारे उन्होंने दिखे ताकि वह लोग भी इतना आकर इन्हों नज़ारों से लुत्फानंदोज होवन। तुसा को मैं दसता जुला कि सौ रोज़ा नशा मुक्त अभियान भी चल रहा, वह मुहिम भी बड़ी जोर शोर नाल अगे टुट रही है। जाए जाए असं देखते हैं तो लोगों में बेदारी फैलाई जुल रही है। जिला सतह पर पदयात्रा का इनकाद हो रहा जिथे कि जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आप झुलकर पदयात्रा भी शिरकत करते हैं और लोगों की खिताब भी करते हैं। कल असा देखा तो यह मुहिम 19वें जिले तो पहुंच गई, किश्तवाड़ मेगा पदयात्रा मनशियात की तजारत की हर कड़ी पैसेगी। सौ रोज़ा नशा मुक्त अभियान एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज, नशे के साए को यूटी में कदे कदम रखने की जगह ना मिल सकेगी। मनोज सिन्हा समय ना पहला प्रोग्राम के शुरू में तुसा वास्ते एक गीत पेश

मास्टर करतार चंद दा संगीत गीत पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि गीत तुसां को पसंद आया। उसी मगरबी एशिया दा बुहरान, नई दिल्ली विच वज़ीर आज़म इक्तसादी मशावरती कौंसल दी अहम मीटिंग, इक्तसादी तरक्की।

और कामयाबी सिर्फ असल किरदार थी मिलती है। सच्चाई, दयानतदारी, मेहनत और इखलास वो सफात हैं जड़े इंसान को बुलंद मकाम तो नहीं पहुँचाते हैं। समय नगे प्रोग्राम विच तुसां दी नज़र एक गीत करते हैं। आवाज़ है गुलाम हसन तबस्सम तो मुहम्मद यूनस लोलाबी दी। आओ सुनते हैं।

0: ये पूरे परिवार को खराब कर देती है, पूरे माशरे को खराब कर देती है। जो बच्चे होते हैं वो कौम का मुस्तकबल होते हैं। मेरी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी यही हदायत है कि अपने बच्चों को इस बिद्दत से दूर रखें, क्योंकि ये ना कि उनका मुस्तकबल खराब कर देगी भले पूरे माशरे को खराब कर देती।
1: महरूमुल हराम दे हवाले थी इंतजामा दा जायजा किनन वास्ते डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग दी सदारत बिच एक उच्ची सतह दी मीटिंग मनाकद हुई। मीटिंग बिच आजादारा वास्ते फराम कीतियां जुड़ रही बुनियादी सहूलतों दा तफसीली जायजा कहते गया। डिविजनल कमिश्नर सुन मुतलका महकमे को हिदायत दी जे महरूम दे पेश नज़र तमाम जरूरी इंतजाम वेले उत मुकम्मल किए जुलन ता जे मजहबी इजतमा और अजादारा दे जुलूस पुरअमन ते सोहने तरीके नाल मुनाकद हो सकन। पूरी दुनिया बिच अज फूड सेफ्टी दा आलमी त्याड़ा मनाया जुलदा है। ए त्याड़ा फूड सेफ्टी को हक और जिम्मेदारी दे तौर उत उजागर करदा है और नाल ही ए इजतमाई कार्रवाई वास्ते एक मजबूत मौके दी बुनियाद भी रखता है। इस साल इस त्याड़े दा मौजू है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर, जिड़ा हर सतह उत महफूज गिजा को यकीनी बनाने की अहमियत को उजागर करता है। इस हवाले थी लोगों बिच बेदारी पैदा करने वास्ते कई जाइया उत जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। आकाशवाणी न्यूज़ दे नाल गल करदे होया फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर दे असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर सुन आखिया।
2: हम हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। मुद्दा मकसद ये होता है कि लोगों तक फूड बॉर्न डिजीज के खतरात के बारे में जानकारी पहुंचाना और सेफ फूड को एंश्योर करना। इस साल की जो थीम है फूड सेफ्टी डे पे वो है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन। जो फूड बॉर्न डिजीज है, जो अनसेफ फूड की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बर्डन पड़ जाता है वो कितना ज्यादा होता है, उसके साथ साथ एक तकनीक के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग सालाना कंटेमिनेटेड फूड की वजह से अजल बन जाते हैं। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगा हुआ है इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट में फूड अवेलेबल है टू आवर कंज्यूमर दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी होलसम।
1: एक खबरां तुसी आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन ते सुन रहे हो। खबरां तुसी आकाशवाणी दी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज आन एआर और डीटीएच उता भी सुन सकते हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन लेफ्टिनेंट बरेश्वर गोस्वामी को खराज अकीदत पेश करदे होया उनकी मैयत उत फुल सटे, जिन्हें सुन राजौरी बिच खराब मौसम के दौरान जारी तलाशी कार्रवाई के दौरान अपनी जान कुर्बान की। एक सोशल मीडिया पोस्ट उत एल जी सुन आखे जे कौम इस अजीम सपूत की खिदमत को हमेशा याद रख सी। उन्होंने सुन शहीद फौजी आफिसर के घरा वाले नाल यकजहती का इजहार करदे होया हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा ली। इसी दौरान फौज की वाइट नाइट कॉर्पस के GCO ते दुए तमाम रैंकें दे अफसरान सुन भी बरेश्वर स्वामी की शहादत उत उन्होंने जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू व कश्मीर क्राइम ब्रांच दी इक्तसादी जराइम थी मुतलिक विंग सुन जालसाजी और धोखादेही दे एक मामले विच दो नफरां दे खिलाफ अदालत विच चार्जशीट दाखिल कीती है। प्रेस नोट दे मुताबिक रखे शेलवट सुंबुल बांडीपुरा दे रहने वाले गुलाम अहमद भट्ट ते असदुल्ला भट्ट नां दे इन्हां मुलाजमां सुन अपनी तालीमी काबिलियत छुपा के जाली सर्टिफिकेट के जरिए पैदाइश बिच रदो बदल करके सरकारी मुलाजमान की मुद्दत बिच गैर कानूनी तौसी हासिल की थी, जिसकी वजह थी सरकारी खजाने को माली नुकसान होया। क्राइम ब्रांच सुन लोगों थी इक्तसादी फराड के मामलों की इतला फौरी तौर उत मुतलका हकाम को देने की अपील की थी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू व कश्मीर के सदर GM शाहीन सुन अज श्रीनगर बिच पार्टी के कौमी वर्किंग सदर संजय झा नाल मुलाकात की थी, जिस दौरान उन्हें सुन जम्मू व कश्मीर बिच मौजूदा सियासी समाजी ते तरक्याती सूरतेहाल दे बारे बिच उन्हें को जानकारी दी। GM शाहीन सुन उन्हें को जम्मू कश्मीर दे अंदर पार्टी दी सरगर्मियां ते अवामी राबता प्रोग्रामा दे बारे बिच भी जानकारी दी। मरकज बिच NDA हुकूमत दे 12 साल मुकम्मल हो गए और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्याद बिच आम लोगों की फलाह बहबूद वास्ते कई स्कीम शुरू कीतियां गई हैं, जिन्हां बिच आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क बिच बड़े पैमाने उत लोग इस स्कीम से फायदा चाहकर तिबी निगहदाश्त की मियारी सहूलत हासिल कर रहे हैं। इस बारे बिच एक आम शहरी दे तासुरात।
3: मैं सोफी सजाद अश्मकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खसूसन जो हमारी UT है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक

0: इंसान को इस स्कीम से फायदा मिला है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है और उसको मेडिसिन भी इस पे फ्री मिल रहा है। हम दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मशकूर हैं।
1: डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस हुण जम्मू कश्मीर दे डिग्री कॉलेजां विच अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामां विच पहले राउंड दी अलाटमेंट लिस्ट दे तहत ऑनलाइन फीस दाखल कराने दी आखिरी तारीख 8 जून नमाशा को 5 बजे तोनी बता दीती है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू व कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर सुन फीस जमा कराने वाले उम्मीदवारों थी अखे है जे ओ दस्तावेजात दी वेरीफिकेशन वास्ते अपने अलाट किए गए कॉलेजों विच 8 जून थी 10 जून तोनी रिपोर्ट करन। इस दे नाल ही एक खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन थी अगला खबरनामा 5:50 मिनटों तक गोजरी जबान भी नशर किया गया सी। देव इजाजत, अल्लाह बेली।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। समय 4:30 हो चुके हैं। नश्र होता है पंजाबी प्रोग्राम।

प्रोग्राम सुन वाले साथियों नूं सचेता प्यार प्यार सत श्री अकाल। उम्मीद करदी हां तुसी बिल्कुल ठीक तरह होने हो ते खुश होने हो। आओ फिर प्रोग्राम दी शुरुआत करिए इस प्यारे जे गीत नाल।

साथियों, आज सारी दुनिया विच वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वारी सारी दुनिया विच 7 जून नू मनाया जाता है। इन मनान का मनोरथ खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत 2018 तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की सी। रोटी की खुशबू विच वसता है जीवन का सार, रोटी की खुशबू विच वसता है जीवन का सार, जे ठीक ना होवे भोजन

या फिर उस भोजन नूं किसी होर तरीके नाल तैयार किया गया है ते सोसाइटी समाज विच निकल के आपस विच सानूं मिल के इस ते काम करन दी लोड़ है। असी की करदे हां कि हर वारी गवर्नमेंट नूं सरकारां नूं असी कह दिंदे हां कि उन्हां नूं काम करना है, उन्हां नूं अपने काम करने ने, उन्हां नूं सख्ती लियानी है, लेकिन उदे तों पहले शुरुआत असी अपने घर तों करनी है, अपने परिवार तों करनी है। आओ साथियों सुन लैंदे हां गीत।

0: समीनियत है पंजाबी प्रोग्राम पेशकश समीन आशा, ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वे 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 5 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद नश्र होता है आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन ना थारा मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा का तरते तम सारा ना प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपनो मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन जावेगा। सामीन इकराम अज अतार है ते तम जाने कि अज के दिन थारे वास्ते SMS बेस्ड प्रोग्राम पेश कियो जाए। तमने दस्तो चलूं कि आज का प्रोग्राम वास्ते भी मारे कोल मुझ सारी SMS पहुंची हैं। आज तक जितनी भी SMS मारे कोल आई हैं ये सारी SMS आज का इस प्रोग्राम में शामिल करा का। इसके नाल नाल तमने भी दस्तो चलूं कि अगर तम भी इस प्रोग्राम में मारे संग जुड़नो चाहे ते तम आमना 9596012521 इस नंबर पर SMS या फिर व्हाट्सएप करके अपना फरमाइशी ना प्रोग्राम के बारे राय ते अपनी पसंद मारा तक पहुंचा सकें। आज का प्रोग्राम ना के बताता थारी आई वी SMS पढ़नी शुरू करा। शबनम अख्तर ते संगणा की आवाज़ में लोक गीत सुनो वास्ते आमना SMS करें गुजर बस्ती बनी मुलाते रुबीना जान और इनके नाल बाकी फरमाइशी ना है अब्दुल कयूम जागल अब्दुल अजीज़ चेची शकीला बेगम फैजान जागल रिजवान जागल ते रिफत कयूम बीरवा वरीहामा ते ताहिरा जान ते इनका बाकी संगी साथी हैदर मारी कलामाबाद ते फारूक आमन खान सकीना बेगम जुनैद फारूक मुदस्सर फारूक ते जाकिर फारूक सईद महल्ला बंगवाड़ बाला ते अमन SMS करें सईद शबीर शाह मौलवी मोहम्मद हुसैन शाह रेशमा बानो जाहिदा बानो जमीला अख्तर सईद रफाकत ते सैयद नजाकत गोश बुक पटन ते SMS करें गुलाम हसन यतू इनके नाल बाकी फरमाइशी नाए मोहम्मद अकबर यतू अली मोहम्मद यतू सद्दाम हुसैन यतू ते मोहम्मद रमजान यतू चिट्ठी बांडी छान पालते मोहम्मद अनवर खटाना नूर मोहम्मद खटाना फैजान खटाना एहसान खटाना मुसिब अहमद खटाना मोहसिन खटाना मरियम बानो गुलजारा बेगम ते शौकत अहमद खटाना त्राल शोजन ते जावैद अहमद पटिया जुम्मा पटिया नज़ीर अहमद पटिया मकसूद पटिया बशीर अहमद पटिया मोहम्मद इकबाल पटिया ते इरफान

रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार

SMS करें फैरोज अहमद खांडी, नज़ीर अहमद राथर, महामद अफसल कावा, काउपुरा गुलाबपुरा तीन के नाल, गुलाम रसूल वाजा, बशीर अहमद वानी, गुलाम अहमद सोफी ते जरीफा बानो और हाजरा बेगम। कुमार महल्ला तिरगाम ते इनके नाल SMS करें लतीफ़ अहमद कुमार, परवेज अहमद कुमार और गलस्तान सुंबल तीन के नाल SMS करें महामंद अब्दुल्ला निजार, सलीमा बेगम, ड्राइवर महामंद शफी, बशीर अहमद ते अली महामंद हजाम। काजीगुंड डिंगूवारी मजमू ते हमने SMS करें अल्ताफ अहमद जंजुआ और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए हादिया अल्ताफ, साकिब अल्ताफ, आसिया अल्ताफ, जाहिद बिलाल, अयान बिलाल, ओवेस अल्ताफ, इलियास आरिफ, फरहत बिलाल, इफत अल्ताफ, सैरान मुजफ्फर इनका बाकी संगी साथी। छिगाम टोक लून आला बेला ते हमने SMS करें महामंद सादिक बिजरान, जैनब बी महामंद मुख्तार, शायदा बेगम, अली महामंद, ताहिरा बेगम, नसरीना अख्तर, इमरान ताहिर, महामंद इरफान बिजरान, मुश्ताक अहमद बिजरान ते महामंद गुलजार बिजरान। नारा ना कंगन ते जावेद अहमद मोटा, महामंद जाकिर मोटा, कबीर अहमद मोटा, शमीमा बेगम, महनाजा अख्तर, तोयबा कोसर, नसीबा बानो ते आजान अहमद मोटा। सब कुरहामा लुलाब ते यास्मीना जान, नूरदीन चाड़, परवीना बेगम, रेशमा बानो, महमद इकबाल चाड़, महमद शबीर चाड़, महमद जावेद चाड़, महमद यासर चाड़, सलीमा बेगम, हाफिज यावर, महमद आरफ चाड़, महमद वसीम चाड़, जाफर चाड़, हाफिज जाकिर इनका बाकी संगीत साथी। बनीमुला कुलगाम तेजी मेमा जान, चौधरी इशफाक जागड़, महमद अब्बास जागड़, रुबीना बेगम ते साइमा जान। बारामूला ब्रंदोब ते हमने SMS करें शबनम रशीद, इनके नाल बाकी फरमाशी नाए अब्दुल रशीद चौहान, सलीमा बेगम, परवीना, तस्लीमा, जुबैर रशीद, हमाद ते हफसा जान। सलर पहलगाम ते पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन ते कैसर दीन। तम सारन दोस्तों की पसंद पर मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज़ में आमने गीत ला के रखे हुए आओ सुन लिया।

अग्गे जी महामंद हुसैन मिरासी की आवाज़ में लोक गीत सुन वास्ते आमण SMS करें ऐश मुकाम हंगल पावा ते अब्दुल मजीद तुर्क, इनके नाल बाकी फरमाशी नाए मोहम्मद इकबाल तुर्क, आमिर तुर्क, नवाज़ खान ते राबित और फातिमा जान। त्राल ब्रंद पत्री ते मास्टर अब्दुल कयूम ते इनका बाकी संगी साथी, सुरफराव ते रियाज अहमद बजाड़, नज़ीर अहमद बजाड़ ते इनका बाकी संगी साथी, सुंबल बाला गुंड ते अपना SMS करें महामंद कासम बोकड़ा और इनके नाल बाकी फरमाशी नाएं जरीना बेगम, महामंद इकबाल बोकड़ा ते अजरा बेगम और इनका बाकी संगी साथी। लद्दू पापर ते हाजी अली जान बोकड़ा, महामंद अनवर बोकड़ा, उमर अली बोकड़ा, मिराज अहमद बोकड़ा, इमरान बोकड़ा, आमना जान ते रुकैया बेगम। आलूसा बांडीपुरा ते अपना SMS करें नसरीना जान और इनके नाल बाकी फरमाइशी नाएं अलादीन चेची, नज़ीरा बेगम, जरीना

अंदर देख सीने तेरे

जी हाँ सामीन, यह थी हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। इसके नाल ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, तो अपना मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा ना। अगली मुलाकात थोड़ी दी इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

0: मिलिटेंट मुखालफ ऑपरेशन में जारी तलाशी कार्रवाई के दौरान अपनी जान कुर्बान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौम इस अजीम सपूत की खिदमत में हमेशा याद रखेगी। उन्होंने शहीद फौजी अफसर का कारालन यकजहती को जाहिर करते हुए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान फौज की व्हाइट नाइट कोर का जी ओ सी तय दूजा तमाम रैंकों का अफसर ने भी लेफ्टिनेंट बरेश्वर गोस्वामी की शहादत पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जरूरी खिदमत लद्या त्रै ट्रक जम्मू उधमपुर ते डोडा जिले की अवाम वास्ते वक्फ कियो। नायब वज़ीर आला ने कहा जे सरकार ने इस पहल वास्ते 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। उन्होंने कहा जे ये जदीद नवीयत का ट्रक दूर दराज ते औखा इलाकों में अवामी खिदमत की वेला पर फराहमी ते बुनियादी ढांचा बारे जरूरियात न पूरा करने में मददगार साबित होगा। दुनिया भर में आज फूड सेफ्टी को आलमी त्याड़ो मनाया जा रहा है। यह त्याड़ो गजाई सलामती ना हक और जिम्मेदारी के तौर उजागर करे ते नाल यो इज्तमाई कार्रवाई वास्ते एक मजबूत मौका की बुनियाद भी रखे। इस साल इस दिन को मौजू है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर जड़ो हर सतह पर महफूज गजा न यकीनी बनाने की अहमियत न उजागर करे। इस हवाला अवाम बेदारी पैदा करने वास्ते कई मुकामों पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर में गल करता हूँ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का असिस्टेंट कमिश्नर हलाल अहमद मीर ने क्यों।
1: हम हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। मुद्दा मकसद ये होता है कि लोगों तक फूड बॉर्न डिजीज के खतरात के बारे में जानकारी पहुंचाना और सेफ फूड को एंश्योर करना। इस साल की जो थीम है फूड सेफ्टी डे पे वो है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन। जो फूड बॉर्न डिजीज है जो अनसेफ फूड की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बर्डन पड़ जाता है वो कितना ज्यादा होता है। उसके साथ साथ एक तकनीक के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग सालाना कंटेमिनेटेड फूड की वजह से अजल बन जाते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगा हुआ है इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट में फूड अवेलेबल है टू आवर कंज्यूमर दैट शुड बी सेफ दैट शुड बी होलसम।
0: भारत में घरेलू सार्फीन ने जिस कीमत पर खान पकान की गैस मिल रही है वह आलमी सतह पर सब तो घट कीमतों में शामिल है। एक बयान में पेट्रोलियम ते कुदरती गैस महकमा की वजारत ने कहा जे भारत में गैस सिलेंडर किसी भी गुमांडी मुल्क के मुकाबला सस्तों ते नाल ही इसकी कीमत अमेरिका आस्ट्रेलिया और कनेडा जैसी जदीद माशतियां वाला मुल्कों में LPG सिलेंडर की कीमतों बहुत ज्यादा घट है। नौजवानों का अमूर ते खेडां का महकमा का वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है जे साइकिलिंग नाल कुरे अर साफ सुथरो रे ते इस नाल ट्रैफिक जाम का बड़ा मसला को हल भी निकले। वजीर मौसूफ ने आज इस वेले नवी दिल्ली में साइकिल वर फिट इंडिया संडे की सदारत करते हुए नौजवानों ने कहा जे वे इस पहल में शामिल होवें ते फिट इंडिया को नजरियो अपनावें।
2: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: मुहर्रमुल हराम का हवाला नाल इंतजामों को जायजो लेने वास्ते डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गुर्ग की सदारत में एक आला सती मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में आजादारों वास्ते फराहम की जा रही बुनियादी सहूलियात को तफसीली जायजो लियो गयो। बुलंद पाए वली कामल हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्ला को सालाना उर्स आज अकीदत और एहतराम के नाल मनाया जा रहा है। आज कुरान खानी शब बेदारी दुरूद अज़कार ते खत्मात उल मौज़मात की मजलसों को सिलसिलो जारी है। जबकि उर्स की तकरीब कल सवेले दरगाह बाबा नगरी का सजादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद की दुआ के बाद मुक जाएगी। इस उर्स में जम्मू कश्मीर के नाल नाल मुल्क का दूजा हिस्सा तो भी अकीदतमंद हाजिरी देने वास्ते आवे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ते नायब सदर ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उर्स का मौका पर अवाम ने मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इक्तसादी जराइम विंग ने जालसाजी ते धोखाधड़ी का एक मामला में 2 बंदों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रेस नोट के

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे

0: उनका खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod.
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर शाम 6:05 पेश प्रोग्राम गनी भाई हिंदी खतरे।

모이란 온도 마시와르 시세타장 아트 뱃갈 아말가스 아프나만

0: Ni Srinagar. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम पुंछ पहुंची, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पद यात्रा की क्यादत की। बफलियाज मेन मार्केट में आग की वारदात, दर्जन भर दुकानें खाकिस्तर। रामबन जिले में गूल फेस्टिवल का इनेकाद, मकामी आबादी का इजहार इत्मीनान। और डोडा जिले में हालिया मौसमी मार के बाद बेशतर सहूलियात अभी भी ठप। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ, वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। अरे नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा? सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है। अच्छा भाभी, और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
8: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
9: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
0: शेरबीन आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में पिछले 12 बरस के दौरान भारत खुद एतमादी और जिद्दत तराजी पर मबनी कौम के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि 2014 में चंद सौ स्टार्टअप से बढ़कर आज मुल्क में 2.3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कायम हो चुके हैं, जिन्होंने तकरीबन 25 लाख रोजगार के मौके पैदा किए हैं। भारत की खराई मईशत, जिसकी मौजूदा मालियत तकरीबन 9 अरब डॉलर है, आइंदा 7 से 8 बरस में 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्कु है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि सेल्फ एटेस्टेशन, सरकारी मुलाजमतों में मुतादी जुमरों के इंटरव्यूज का खात्मा, शफाफियत और टेक्नोलॉजी के फरोग जैसे इकदाम ने नौजवानों में एतमाद पैदा किया है और मेरिट पर मबनी निजाम को मजबूत किया है। उन्होंने मजीद कहा कि खलाई और जौहरी शोबों को निजी सरमायाकारी के लिए खोलने से जिद्दत तराजी, रोजगार और कारोबारी मौके में इजाफा हुआ है, जबकि फलाही स्कीमों के फवायद बिला इम्तियाज मुस्तहकीन तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज तारीखी मुगल रोड के बफलियाज कस्बे के मेन मार्केट में सुबह के वक्त आग की एक वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में एक दर्जन से ज्यादा दुकानें और स्टोर खाकिस्तर हुए। मकामी आबादी ने अगर सिर्फ फायर टेंडर के आने से पहले आग बुझाने की बड़ी कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत ऐसी थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल साबित हुआ। एक रिपोर्ट के साथ

0: पूंछ से केडी मैनी।
1: आज सुबह 5 बजे के करीब बफलियात कस्बे के मेन चौक में, जहां से एक तरफ डेरा गली और दूसरी तरफ पीर गली की तरफ रास्ता जाता है, मुजफ्फर खान वल्देदीता खान की दुकान से आग की लिपटे रूनमा हुई और देखते ही देखते आग ने दरियाए सोनकोट की तरफ बाकिया दुकानों की सारी लाइन को लपेट में ले लिया और बाजार का एक हिस्सा जलकर राख हो गया। अगरचे मकामी लोग मौका पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गए थे, लेकिन आग की लिपटें फैलती चली गईं और काबू न पाया जा सका। इसी दौरान 7 बजे के करीब स्वर्णकोट से आग बुझाने वाली गाड़ी बफलियात पहुंची और फिर दराबा से आर्मी की एक गाड़ी भी मदद पर आ गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सकता, 8 दुकानें और 5 स्टोर खाकस्तर हो गए। शहरदीन को बताया गया कि आग की इस वारदात में अनायत खान, आतिफ खान और लाल खान की 3 दुकानें जिनमें करियाने का सामान था, जबकि तारक हुसैन, मुजफ्फर खान, राजा मलक और खान मोहम्मद के 4 होटल नजर आतिश हो गए। इसके अलावा वसीम खान की दवाइयों की दुकान भी जलकर राख हो गई। उधर इन दुकानों के साथ वाकया 5 स्टोर भी आग की नजर हो गए। आग की वारदात के कुछ ही अर्से बाद नायब तहसीलदार अनवार अहमद अमला के साथ मौका पर पहुंचे और मकामी पुलिस भी आ गई। चनाचे जरूरी कागजात मुकम्मल करने का अमल जारी है ताकि मुतासरीन के हक में माली मामनत का ऐलान किया जा सके।
0: बफलियाज मेन मार्केट में आग की वारदात, 13 दुकानें और स्टोर खाकिस्तर। केडी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पुंछ में जम्मू कश्मीर के दिगर इलाकों की तरह नशा मुक्त मुहिम को शिद्दत से आगे बढ़ाया जाएगा। आज पुंछ में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में मुनक्कद पद यात्रा में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर होने वाली तकरीब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मनशियात और नार्को दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए अगले 43 दिन इंतहाई अहम है। याद रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस साल 11 अप्रैल को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज किया था। एलजी मौसूफ ने आज पुंछ में अपने खिताब के दौरान कहा कि बेशक 100 दिनों के अंदर मनशियात के कारोबार का पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद करना मुमकिन नहीं है, ताहम जिस एतबार से लोग इस मुहिम से जुड़ गए हैं, कभी उम्मीद बन गई है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर नशे की वबा से पाको साफ होगा।
2: ये मेरी समस्या तो है नहीं, फिर मैं क्यों जमानता हूँ। यही वो सोच है जो ऐसी समस्याओं को बढ़ाने में मदद करती है। नशे के कारोबारी और नशे के तस्कर इसी का लाभ उठाते हैं, विचारते हैं कि समाज में लोग चुप रहे और अपनी समस्याओं में दर्ज के प्रति उदासीन है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक नशा मुक्त मेरी अपील है आपसे। सभी सरकारी धार्मिक सामाजिक संगठन हमारे युवा पीढ़ी के अवसर हमारे युवाओं को अधिक से अधिक मिले, इसका हमें प्रयास करना। मेरा मानना है कि जब एक युवा अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता तब नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार वही बनता। हमें यूथ क्लब के जरिए युवाओं के कैसी मजबूत और तैयार करनी है पुंछ में, जो अपने अपने इलाके से और प्रशासन और पुलिस को सपोर्ट दे सके। हमें ऐसी माताओं बहनों की आवश्यकता है, ऐसे नारी शक्ति के हाथ में हमें कमान सौंपनी है ताकि हमारी माताएं बहने मिलकर हर गांव को नशा चला रहा है। कार्यक्रम बताए 3 चरण के कार्यक्रम हो गए और 3 चरणों के कार्यक्रम में देश में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है और जो देश का सबसे पसंदीदा है वो पुंछ के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन कर। अगर वंदे मातरम में पुंछ नंबर 1 है तो नशा मुक्ति में भी पुंछ को नंबर 1 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, बनाएंगे नंबर 1 तो हाथ उठाकर कहिए कि जरूर बनाएंगे।
0: ये थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिन्होंने आज पुंछ में मुनक्कद नशा मुक्त मुहिम के सिलसिले में पदयात्रा में शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। उधर महू रियासी के गांव मलाईकोट में कल रात शादी की एक तकरीब के

0: दौरान कच्चा मकान अचानक मुनहदिम होने की वजह से कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा रात तकरीबन 9:30 बजे मोहम्मद इसहाक वाले जलालुद्दीन के घर में पेश आया, जहां शादी की तकरीब जारी थी। तकरीब में बड़ी तादाद में रिश्तेदार और दीगर मेहमान मौजूद थे कि इसी अस्ना में यह कच्चा मकान लोगों के हजूम का वजन बर्दाश्त न करके जमीन बोस हो गया। जख्मी अफराद में से अभी भी 7 जेर इलाज हैं, जबकि इस हादसे में 2 मवेशी भी हलाक हो गए हैं। सेमिनार जिले रामबन के गूल इलाके में गूल मेले का एहतमाम किया गया। मेले का बुनियादी मकसद गूल के सियाती एतबार से तरक्की अता करना और इसके तुफैल मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना है। जहां एक तरफ लोगों ने गूल मेले के इनेकाद का खैर मकदम किया है, वहीं अपना यह मुतालबा भी सरकार के सामने रखा है कि गूल के आसपास पाए जाने वाले दीगर खूबसूरत मकामात को सियाती नक्शे पर लाए जाने के लिए संजीदा काविशें की जाएं और इस सिलसिले में सरदस्त इन इलाकों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। फिलहाल गूल मेले के ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन।
1: महकमा सियाहत और जिला इंतजामिया रामबन के इश्तराक से सब डिवीजन गूल के खूबसूरत मुकाम नरसिंगा में मुनक्कदा गूल मेला कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और इस मेले में हजारों की तादाद में मुकामी और गैर मुकामी लोगों ने शिरकत की, जबकि यहां पेश किए गए सकाफती प्रोग्रामों, लोक मौसीकी, खेलों के मुकाबलों, दस्तकारी और मुकामी मसनूआत के स्टॉल ने शिरका की भरपूर तवज्जो हासिल की। मेले का रस्मी इब्तदा मेंबर असेंबली बानहाल सजाद शाहीन, मेंबर असेंबली गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद अहमद, डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान, डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू डॉक्टर विकास गुप्ता, एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने मिश्र का तौर पर किया, जबकि इस मौके पर एडिशनल डीसी वरुणजीत सिंह चारक, ज्वाइंट डायरेक्टर सियाहत एजाज कैसर, एसडीएम गूल इम्तियाज अहमद, सबका डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान और पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार मौजूद थे, जबकि गूल के मुकामी रजाकारों, नौजवानों और अवाम के ताउन से मुनक्किदा इस प्रोग्राम को इलाके में सियाहत के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया है। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने गूल की कुदरती खूबसूरती, सकाफती विरसे और सियाहती इम्कानात को उजागर करते हुए कहा कि यह इलाका जम्मू कश्मीर के खूबसूरत तरीन खितों में शुमार होता है और यहाँ के सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात, बुलंद चरागाहें, खुशगवार मौसम और कुदरती मनाजिर गूल को एक मुनफरद शिनाख्त फराहम करते हैं। अगरचे गूल मेला मुकामी सकाफती और सियाहती फरोग के हवाले से बहुत कामयाब रहा है, ताहम मुकामी लोगों ने इस मौके पर हुकूमत और महकमा सियाहत की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है कि बेशुमार कुदरती मकामात आज भी बुनियादी सियाहती सहूलियात से महरूम है। मुकामी लोगों का कहना है कि गूल और इसके गिर्द नवा में बेशुमार कुदरती और सियाती मकामात मौजूद हैं, जो अपनी दिलकश खूबसूरती और कुदरती मनाजिर की वजह से सयाहों के लिए गैर मामूली कशिश रखते हैं, जिनमें नरसिंगा, गोरा गली, डगन टाप, रामाकुंडा, नाइद मर्ग, मरगोटी, मतगला, मंजिम कोंड, जब्बर, ततापाणी, गुलाबगढ़ और मोहर के मुतद्दिद सरसब्ज इलाके शामिल हैं। पीर पंजाल के दामन में वाका गूल की सरसब्ज चरागाहें, फजा को मोतर करने वाले रंग बिरंगे जंगली फूलों और जड़ी बूटियों की महक, घने जंगलात, चश्मे और दिलकश पहाड़ी मनाजिर सयाहों की आमद के मुंतजिर हैं। मुकामी दानिश्वरों, सियासी और समाजी कारकुन ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि गूल में सियाती सरगर्मियां फिलहाल मौसमी मेलों और चंद तकरीबात तक महदूद हैं, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर सयाहों को मुतवजा करने के लिए बुनियादी ढांचे की अशद जरूरत है और इससे सियाहत के फरोग में बड़ी मदद मिल सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि संगलदान तक रेल आने के बाद गूल, गुलाबगढ़, कश्मीर और पीर पंजाल के दीगर खूबसूरत मकामात को एक जामा सियाहती सर्कट में शामिल किया जाना नागुजीर बन गया है, जिससे न सिर्फ सयाहों की आमद में इजाफा होगा बल्कि मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत संजीदगी से इस खिते की सियाहती तरक्की पर तवज्जो दे तो गूल मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के अहम सियाहती मराकज में शामिल होगा और कुदरती हुसन से मालामाल ये इलाके तरक्की, रोजगार और माशी खुशहाली की नई राहों पर गामजन हो सकता है। इस मौके पर मेंबर असेंबली बानहाल गूल सजाद शाहीन ने जराई अबला के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि वो इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद से खुश हैं और इसके लिए महकमा सियाहत और इंतजामिया मुबारकबादी की मुस्तैक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिला रामबन के खूबसूरत इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए वादा बंद है और इसके लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जहरी कयादत हुकूमत खूबसूरत सियाहती मकामात की तरक्की और तरवीज के लिए कोशा है और आने वाले वक्त में जिला रामबन के खूबसूरत और सेहत अफजा मकामात सियाहती नक्शे पर होंगे।
0: नरसिंगा गूल में गूल मेले का इनेकाद, मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी का सालाना उर्स पाक बाबा नगरी वांगत में अकीदतुल इहतराम से मनाया जा रहा है। वाजिर है कि उर्स के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात के साथ साथ बैरूनी इलाकों से भी अकीदतमंदों की आमद कई रोज से जारी है। इसी बीच आज जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने बाबा नगरी में आस्थाना आलिया पर हाजिरी दी और इस मौके पर अमन अमान के लिए दुआ की। उसके सिलसिले में कल के शहरबीन में एक मुफसल रिपोर्ट नशर होगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर जम्मू कश्मीर के आवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि हजरत निजामुद्दीन साहब ने अपनी तालीमात के जरिए लोगों के वसी हलके को मुतासिर किया। समन डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता दिनों बादल फटने के नतीजे में निजी और अवामी इमलाक को जो नुकसान पहुंचा उसका तखमीना लगाया जाना बाकी है, चूंकि अभी तक इंतजामिया के किसी भी सीनियर अफसर ने मुतासर इलाकों का दौरा नहीं किया। इससे खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा कब तक अदा किया जा सकता है। बताया जाता है कि अभी भी बेशतर मुतासर इलाकों में पानी की फराहमी मुअल्लक है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
3: गुज़श्ता दिनों की ज्यादाबारी और फाजल फटने के बाद जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर रोजमर्रा मामलों जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। लोगों को तरह तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जिला डोडा के इन मकामात में ठाठरी, कास्तीगढ़, गुंदो बलेस, काहरा, कल्याण, अनचक्री, बिखरियान, डुलयोग और हाँच मलना के इलाकाजात ज्यादा मुतासर हैं। ठाठरी से मुख्तलिफ लोगों ने फोन पर बात करते हुए शहरबीन को बताया कि यहाँ बादल फटने के बाद अभी तक पीने के पानी की सप्लाई मुनकता हुई है, इसलिए कि पीएचई की सप्लाई लाइनें टूट फूट का शिकार हैं। सैलाबी रेलों का पानी जिन रायशी घरों में दाखिल हुआ था वहाँ मट्टी, पानी, मलबा और छोटे बड़े पत्थरों के ढेर घरों के अंदर बाहर मौजूद हैं, मगर अभी तक वहाँ की इंतजामिया ने इन पत्थरों व मलबा को हटाने में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। अलबत्ता यहाँ के मकमीन आज खुद मलबा, पत्थर और ये पसियां साफ कर रहे हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि अगर पीएमजीएसवाई एजेंसी ने ठाठरी के बालाई हिस्से में मजबूत पायदार हिफाजती दीवार तामीर की होती तो सैलाब का पानी घरों के अंदर दाखिल नहीं होता और न ही रायशी मकानों को तबाही होती। इनका मजीद इल्जाम है कि आज चार रोज के बाद भी पानी सप्लाई करने वाली पाइपों को अभी तक जोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई मुनकता है और यहाँ के लोगों को नदी नालों का गदला और नासा पानी पीना पड़ता है। ठाठरी के बाद सबसे ज्यादा मस्त इलाका जात में बगला भरत, डोडा, बगला भगवत, ढोरू, हाँच मलना, धमसी, बिखड़ियान, पठबगी, उद्यानपुर, छिलतरन, कल्याण, अनचक्री, दुलयोग, हाँच मलना शामिल है, जहाँ न सिर्फ खड़ी फसलों, मेवा बागात, धान की पनीरी व अखरोट के दख्तों का नुकसान हुआ है, बल्कि कल्याण में बादल फटने के नतीजे में सैलाबी रेलों का पानी नदी नालों से पुर होकर लोगों की अराजी और राबता सड़कों पर बहने से अराजी का कटाव व इन सड़कों पर जगह जगह पशुओं की सूरत इख्तियार कर गया है। जबकि उद्यानपुर, डुलयोग, हाँच मलना सड़क, कल्याण अनचक्री सड़क पर जगह जगह पसियां और आरजी दंगाजात और हिफाजती दीवारें खिसक कर लोगों की मिल्कियती अराजी में बड़े बड़े पत्थर और पसियां गिर आई है और लोगों की जमीनों पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर और पसियां गिराने की वजह से लोगों की मिल्कियती अराजी नाकाबले काश्त हो चुकी है। सरकर्दा समाजी कारकुन मुबशर मांडी ने शहरबीन को बताया कि बगला भरत, कल्याण, डुलयोग व उद्यान

0: किया जाए।
1: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर राजौरी से आरिफ कुरैशी की इतला है कि आज राजौरी के खा गांव में एक एलपीजी सिलेंडर फटने के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। बताया जाता है कि 3 अफराद को पहले जीएमसी अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया, ताहम शदीद तौर पर जख्मी होने के नतीजे में उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल करना पड़ा। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शब्बीर अहमद रैना के जमासाल फरजंद तहसीन शब्बीर रैना की मौत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए शब्बीर अहमद रैना और जुमला खानदान से ताजियत की है और मरहूम के इसाले स्वाब के लिए दुआ की है। वाजिर है कि एडीसी सोपोर शब्बीर अहमद रैना के फरजंद तहसीन शब्बीर रैना, जो कि शेर कश्मीर जिला यूनिवर्सिटी के शुहामा कैंपस में जेर तालीम थे, कल अचानक इंतकाल कर गए। शब्बीर अहमद रैना कानीरा चाड़ूर के रिहायशी हैं। इधर त्राल से शब्बीर भट्ट की इतला है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से टाउन हॉल त्राल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के रियासती सदर रफीक अहमद मलिक, नायब सदर आशिक अहमद और जिले सदर पुलवामा मुजफ्फर नायक के अलावा वर्करों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कई लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वादी के कई एक जिलों से असातिज़ा की शिकायत है कि गुज़श्ते साल उनका तबादला हार्ड जोन में किया गया, इस यकीन दहानी पर कि एक साल के बाद उन्हें वापस सॉफ्ट जोन के स्कूलों में तैनात किया जाएगा। ताहम एक साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद उनका ट्रांसफर ऑर्डर इजरा किया जाना बाकी है। नतीजा ये कि मजकूरा असातिज़ा के अहले खाना उनकी अदम मौजूदगी में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करते रहते हैं, जबकि असातिज़ा खुद भी हार्ड जोन की मुश्किलात से आजिज आ चुके हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद।
2: जिले कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में 87 के करीब ऐसे असातिज़ा परेशान हाल हैं, जिन्हें गुज़श्ता साल इस हुक्म के साथ यहाँ के हार्ड जोन में तैनात किया गया कि एक साल के बाद उन्हें यहाँ से तब्दील किया जाएगा। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक 24/4/2023 में एक सरकारी ट्रांसफर पॉलिसी ऑर्डर जेरे नंबर 103-JK Education 2023 जारी किया गया, जिसमें ये वाजिया किया गया कि जिस भी उस्ताद को हार्ड जोन में तैनात किया जाएगा उसे एक साल इस जोन में ड्यूटी देनी लाजमी है। गुज़श्ते साल 24 मई को चीफ एजुकेशन ऑफिस कुपवाड़ा के एक हुक्मनामे जेरे नंबर 183-CEO कुपवाड़ा बतारीखे 24/5/2025 में 300 असातिज़ा को ट्रांसफर किया गया, जिनमें ऐसे 87 असातिज़ा भी शामिल थे जिन्हें जिले के केरन, करना, मच्छल, बुडनमल और जुमगंग तब्दील किया गया। याद रहे ये तमाम इलाके ट्रांसफर पॉलिसी ऑर्डर में हार्ड जोन या मुश्किल तरीन इलाके दर्ज करार दिए गए हैं। अब जबकि इन असातिज़ा का एक साल का अरसा इन इलाकों में मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी तक इन असातिज़ा को यहाँ से तब्दील करने का हुकाम को ख्याल तक नहीं आया। बुढ़नमल के एक दूर दराज इलाके में तैनात एक उस्ताद ने शहरबीन को बताया कि घर से 50 किलोमीटर दूर अब एक ही उम्मीद बची है कि शहरबीन के जरिए हमारी आवाज हुकाम बाला तक पहुँचेगी। करना के एक दूर दराज इलाके में तैनात एक उस्ताद ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर शहरबीन को बताया कि अब जबकि मेरी नौकरी के चंद साल ही बचे हैं, काश कोई हमारी तरफ भी तवज्जो देता। मच्छल में तैनात एक उस्ताद ने बताया कि बुजुर्ग माँ बाप की तबीयत याद करके बेचैन हो जाता हूँ। शहरबीन ने जब इन असातिज़ा की बात चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा मंजूर अहमद के सामने रखी तो दरजवाब उन्होंने इन असातिज़ा की हार्ड जोन में तब्दीली की मांग को सही करार देते हुए कहा कि उन्होंने खुद उनकी बात डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तक पहुंचाई है। उन्होंने शहरबीन के जरिए इन असातिज़ा को यकीन दिलाया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें हार्ड जोन से तब्दील करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे।
1: कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू पुंछ शहरा पर मुसाफिर गाड़ियों की तेज रफ्तारी मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन चुकी है। बताया जाता है कि इन गाड़ियों के ड्राइवर जम्मू से पुंछ तक की तंग सड़कों पर गाड़ियां चलाने के दौरान हद रफ्तार का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखते और यूं मुसाफिर पूरे सफर के दौरान इज़्तिराब का शिकार रहते हैं। तफसीलात के साथ आरिफ कुरैशी।
0: जम्मू पुंछ कौमी शाह

0: यहाँ पर मुसाफिर गाड़ियों की हद से ज्यादा तेज रफ्तारी मुसाफिरों के लिए तशवीश का बायस बन गया है। गाड़ियों की तेज रफ्तारी ने मुसाफिरों की जानों को शदीद खतरे में डाल दिया है। रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले मुसाफिरों, शहरियों, तुलबा, मुलाजमों और मकामी मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि ड्राइवर एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जिसके बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने का खदशा बना रहता है। मुसाफिरों का कहना है कि कौमी शाहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में खसूसन नुशहरा से रजौरी, नुशहरा से सुंदरबनी, रजौरी से मंजाकोट, सुनकोट से पुंछ और सुनकोट से बिम्बर गली तक ड्राइवर गैर जिम्मेदाराना अंदाज में गाड़ियां चलाते हैं और ओवरटेकिंग के दौरान न सिर्फ रफ्तार हद से तजावज कर जाती है बल्कि मोड़ों, गहरे खड्डों और तंग मुकामात पर भी एहतियात नहीं बरती जाती है, जिससे गाड़ियों में सवार खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों में शदीद खौफ व हरास फैल जाता है। एक मुसाफिर ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि सफर के दौरान बारहा ऐसे लम्हात आए हैं कि जब उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल महसूस हुआ है। मुसाफिरों के मुताबिक सूरत हाल की संगीनी के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मुअस्सर निगरानी का फुकदान है। शाहरा पर खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जगह जगह गाड़ियों की रफ्तारी की चेकिंग न होना और ट्रैफिक पुलिस की महदूद मौजूदगी ड्राइवरों को खुली छूट दे रखी है, जिसके बायस हर दूसरे दिन जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर कोई न कोई हादसा होता रहता है, जिसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। मुसाफिरों का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम न उठाए गए तो हादसा में इजाफा नागजेर हो जाएगा। तुलबा जो रोजाना तालीमी अदारों तक इसी शाहरा के जरिए सफर करते हैं, खास तौर पर परेशान दिखाई देते हैं। तुलबा का कहना है कि सुबह व शाम के औकात में गाड़ियों की तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के बायस इनकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक रहता है। मुसाफिरों, मुकामी लोगों और तुलबा ने जिला इंतजामिया रजौरी और जिला इंतजामिया पुंछ, मुतल्लिका महकमा, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस से पुरजोर अपील की है कि फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लिया जाए।
1: आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की। तहसील बोनियार के गांव प्रिंगल की आबादी पिछले तीन रोज से मुसलसल पीने के पानी की फराहमी से महरूम है। गौरतलब है कि प्रिंगल में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद नहीं है और लोगों को मकामी नाले का पानी फराहम किया जाता है, अब वो भी तीन रोज से नहीं मिल पा रहा है। प्रिंगल बोनियार की आबादी पीएचई महकमे के आला हुकाम से मुतालबा करती है कि गांव में पीने के पानी की फराहमी फिलफौर बहाल की जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार, अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान, रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
5: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक, BS वॉइस स्टेबलाइजर्स, पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
12: आदाब, इंशा आकाशवाणी श्रीनगर

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: लाया जाना चाहिए।
1: स्कूल में इंजेक्शन टेप मीन्स एक कैंप लगाया जाता था हर स्कूल में, आजकल के स्कूलों में तो वो सब है ही नहीं। मैं चाहता हूँ वो भी होना चाहिए, और ऐसा जो आप कह रहे हो कि एक टेस्ट कैंप लगना चाहिए, हर एक स्कूल में लगना चाहिए, हर एक मोहल्ले में लगना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी तजवीज भी और बहुत अच्छी, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा किधर जा रहा है, ड्रग मत ले रहा है, तो ये तो बहुत अच्छे इकदाम है। ये हम LG सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं ये चीज की, ये मैंडेटरी होना चाहिए, फ्री लाजमी होना चाहिए हर 3 महीने के बाद हर स्कूल में हर मोहल्ले में।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग और सोपोर में 4 मनुष्यों स्मगलरों को धर लिया है। बिजवाड़ा पुलिस ने तारबलगुरी के मकाम पर एक नाके के दौरान जाहिद अली डार नामी शख्स से चर्स बरामद किया, जबकि सोपोर में पुलिस ने मॉडल टाउन ब्राक लिंक रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान अरसलान नबी जरगर, वसीम नबी वानी और जहूर अहमद शेख नामी 3 अशखाज को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से नशीले अद्वियात बरामद की गई। बारामूला पुलिस की एक टीम ने मकामी लोगों से इश्तराक से पटवारी बाबा मोहल्ला, गोशा ऋषिपुरा, हांजीवीरा और तापर इलाके में खुदरो बंग तबाह की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी इलाके हमारा पहला नजारा है और वो भारत की हकीकी शनाख्त है। पुंछ के नानगली गांव के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सरहदी इलाके भी शहरों जैसी तरक्की और खुशहाली के मुस्तहिक हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इक्तिसादी जराइम से मुतलिक विंग ने जालसाजी और धोखाधड़ी के एक मामले में 2 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रेस नोट के मुताबिक रिग शिल्वर सुंबल बांडीपुरा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद भट्ट और असदुल्ला भट्ट नाम के इन मुलजिमान ने अपनी तालीम में काबिलियत छुपाकर और जाली सर्टिफिकेट के जरिए तारीख पैदाइश में रद्दबदल करके सरकारी मुलाजमों की मुद्दत में गैर कानूनी तौसी हासिल की, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को माली नुकसान पहुंचा। क्राइम ब्रांच ने आवाम से इक्तिसादी फ्रॉड के मामलों की इतला फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को देने की अपील की है। खुराक परसदात और खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार सरहदी इलाकों में रहाइश पजीर लोगों की फलाह व बहबूद की वादाबंद है। आज खोर के तारीखी रॉयल पैलेस में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में एक शफाफ सरकार फराहम करने के साथ साथ रोजगार के मौके पैदा करने और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर काम कर रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी लीडर और समाजी कारकुन तालिब हुसैन चौधरी की हिरासत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पुरमन एहतजाज के बीच उन्हें गिरफ्तार करना गुजर और बकरवाल बरादरी में एक मनफी सोच पैदा कर सकती है जो हमेशा कौम परस्त रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द जल्द रिहा किया जाए। दुनिया भर में आज फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन गजाई सलामती को हक और जिम्मेदारी के तौर पर उजागर करता है और साथ ही ये इज्तिमाई कार्रवाई के लिए एक मजबूत मौके की बुनियाद भी रखता है। इस साल इस दिन का मौजू है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर, जो हर सतह पर महफूज गजा को यकीनी बनाने की अहमियत को उजागर करता है। इस हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने कहा,
2: हम हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। मुद्दा मकसद ये होता है कि लोगों तक फूड बॉर्न डिजीज के खतरात के बारे में जानकारी पहुंचाना और सेफ फूड को एंश्योर करना। इस साल की जो थीम है फूड सेफ्टी डे पे वो है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन। जो फूड बॉर्न डिजीज है, जो अनसेफ फूड की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बर्डन पड़ जाता है वो कितना ज्यादा होता है, उसके साथ साथ एक तकनीक के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग सालाना कंटेमिनेटेड फूड की वजह से मुयाजल बन जाते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दिन रात लगा हुआ है इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट में फूड अवेलेबल है टू आवर कंज्यूमर, दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी होलसम।
0: डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस ने जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों में पहले राउंड की अलाटमेंट लिस्ट के तहत ऑनलाइन फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने फीस जमा करने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि वो दस्तावेजात की वेरिफिकेशन के लिए अपने अलाट किए गए कॉलेजों में 8 जून से 10 जून तक रिपोर्ट करें। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: ہمیں بہت سارے ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈینٹس کی ایکسٹینشن کے لیے، فی لنک کو اوپن رکھنے کے لیے، تو اس سلسلے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ یہ لنک ہم اوپن رکھیں گے، منڈے شام کو 5 بجے تک کھلی رہے گی، ابھی اور 2 دن کا ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے، ان کو منڈے ٹیوزڈے ہم نے ان کو رکھا ہے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن، وینسڈے تک وہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں اپنے کالج

0: में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में नासाजगार मौसम के बीच एक मिल्टन मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले फौजी जवान लेफ्टिनेंट ब्रीश्वर गोस्वामी को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौम इस अजीम सपूत की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। उन्होंने शहीद फौजी अफसर के अहले खाना से यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी और दीगर तमाम रैंकों के अफसरान ने भी लेफ्टिनेंट ब्रीश्वर गोस्वामी की शहादत पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। यह खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस दो पहिए चलाने वालों की तरफ से हो रही खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि टू व्हीलर पर दो ही सवारियां सफर कर सकती हैं और दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: बाइक या मोटरसाइकिल्स जो है उसमें दो ही लोग राइड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर थ्री। पिनियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है, दैट अमाउंट अबाउट 1000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान बट नोबडी स्पेयर्ड। हमारा मसला ये है कि इस वक्त लोग काफी वायोलेशन कर रहे हैं, बट देन आहिस्ता आहिस्ता पिनियंस पे भी फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं कि कम से कम राइडर जो है वो हेलमेट पहन ले, बट देन अल्टीमेटली दोनों को ये हेलमेट जो पहनना है, पिलियन हो या राइडर हो दोनों को।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने वादी के कई अजला में हालिया शदीद झालाबारी से मेवा बागात और दीगर फसलों को हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिर किसानों और बाग मालकान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि वह मुतासिर किसानों को माकूल और मुनासिब इमदाद फराहम करने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। पीडीपी पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन और साबिक वजीर उब्दुर रहमान वेरी ने अनंतनाग ईस्ट हलके के शांगस इलाके के कई देहात में शदीद जालाबारी से मेवा बागात और फसलों को पहुंचे नुकसान पर शदीद रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने और नुकसान का तखमीना लगाने के लिए पर वक्त इकदाम करने का मुतालबा किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक मजहबी यात्रा है बल्कि ये सदियों पुरानी वादी कश्मीर की सकाफती आपसी भाईचारे और मेहमान नवाजी की अलामत है। उन्होंने कहा कि हर कोई कश्मीरी यात्रियों की मदद एयानत के लिए तैयार है। दरअसल जीएम शाही ने आज श्रीनगर में पार्टी के कौमी वर्किंग सदर संजय झा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी समाजी और तरक्याती सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। बुलंदपाया वली कामिल हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज कुरान खानी, शब बेदारी, दुरूद अज़कार और खत्मातुल मौजूमात की मजालिस का सिलसिला जारी है, जबकि उर्स की तकरीब कल सुबह दरगाह बाबा नगरी के सजाद नशीन मियां अल्ताफ अहमद की दुआ के बाद इख्तिताम को पहुंचेगी। इस उर्स में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से भी अकीदतमंद हाजिरी देने के लिए आते हैं। हमारे गांधरबल के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस वक्त आसानिया आलिया पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उर्स के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। इधर नवाटा श्रीनगर में 12वीं माही जिलहिजा की नस्बत से हजरत मीर सईद अहमद शाह किरमानी रहमतुल्लाह की जियारतगाह पर एक रूह परवर मजलिस का इनकाद हुआ। कुरान खानी, दुरूद अज़कार और नातु मनकबत की मजालिस के अलावा उलमा ने हजरत शाह किरमानी रहमतुल्लाह की सीरत और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। इधर बुका आलिया हजरत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाह सोनवार में भी गुज़श्ता शब जुमा को एक ऐसी ही मजलिस मुनाकिद हुई। खीर भवानी मेले और श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांधरबल जिले में कई जगहों पर ऑपरेशनल तैयारियों, इमरजेंसी रिस्पांस और बैन एजेंसी इश्तराक के सिलसिले में एक मॉक ड्रिल का इनकाद किया। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आम लोगों के फलाह बहबूद के लिए मुतद्दद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासरात।
3: मैं सोफी सजाद अश्मकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खुसूसन जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक इंसान को इस स्कीम से फायदा

0: सुविधा मिला है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है।
1: बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि मरकज में नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 खसूसी किताबचे जारी किए जाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन किताबचों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सरकार की हुसूलियाबियों और तारीखी पॉलिसी फैसलों और तरक्याती पहलुओं को उजागर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईद रक्षांद्राबी ने 7 वर्ष की जम्मू कश्मीर की छोटी बच्ची स्मैरा शर्मा को नेशनल यूथ मुईथाई चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि राजपोरा जम्मू के एक मकामी हायर सेकेंडरी स्कूल में जैर तालीम दूसरी जमात के इस तलबा की गैर मामूली कारकर्दगी ने जम्मू कश्मीर का सर फख्र से ऊंचा किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजी 2026 नीट के दोबारा इम्तिहान के लिए सवाल पर्चों के मुबैना लीक होने, पेशगी रसाई या फरोख्त के हवाले से सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफार्मों पर गर्दिश करने वाले दावों की तरदीद की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि इस तरह का मुआद मुनज्जम धोखादही के रैकेट का काम है जो तलबा और उनके अहले खाना की परेशानियों का बायस बनता है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलोया आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:41 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शब्बीरुज़्ज़मा। ज़रई शोबा किसी भी मुआशरे की माशी तरक्की और गजाई तहफ़ुज़ की बुनियाद होता है। जम्मू कश्मीर जहां आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत और बागबानी से वाबस्ता है, यहां ज़रई ज़मीनों का तहफ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इसी पस मंज़र में मुल्क गिर खेत बचाओ मुहिम नहायत अहमियत की हामिल है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान शहरी आबादी में इजाफा, बेहंगम तामीरात और ज़रई ज़मीनों के गैर ज़रई इस्तेमाल ने खेतों के रकबे को मुतासिर किया है। इस रुझान के बाइस न सिर्फ ज़रई पैदावार में कमी का खदशा पैदा हुआ है बल्कि गजाई खुद कफालत भी चैलेंज बन सकती है। खेत बचाओ मुहिम का बुनियादी मकसद ज़रई अराजी को महफूज बनाना, किसानों में बेदारी पैदा करना और ज़मीन के पायदार इस्तेमाल को फ़रोग देना है। जम्मू कश्मीर में धान, गंदम, मकई, ज़ाफ़रान, सेब और दीगर ने मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ज़रई ज़मीनें मुसलसल सुकड़ती रहीं तो न सिर्फ किसानों की आमदनी मुतासिर होगी बल्कि रोजगार के मौके भी महदूद हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ज़रई अराजी को गैर जरूरी तामीरात और दीगर इस्तेमाल से महफूज रखा जाए। हुकूमत की जानिब से जदीद ज़रई तकनीकों, बेहतर आबपाशी के निजाम और किसान दोस्त स्कीमों के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम इन इकदामात की कामयाबी अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। किसानों, पंचायती इदारों, समाजी तंजीमों और नौजवानों को इस मुहिम का फाल हिस्सा बनना होगा। ये भी जरूरी है कि नई नस्ल को ज़राअत की अहमियत से रोशनास कराया जाए ताकि वो इस शोबे को महज रिवायती पेशा नहीं बल्कि तरक्की और खुद इन्हिसारी का जरिया समझें। ज़रई ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि खेत बचाओ मुहिम सिर्फ ज़मीन बचाने की तहरीक नहीं बल्कि गजाई सलामती, देही मईशत और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का एक एक जामे अज़्म है। अगर हम आज अपने खेतों को महफूज बनाएंगे तो

0: कल एक खुशहाल खुद कफील और मजबूत जम्मू कश्मीर की बुनियाद रख सकेंगे। तब सिरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम में।

वादी की आवाज। इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाख कोशिशों के बावजूद शिद्दत पसंदी थम नहीं रही और जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में भी कैफियत वैसी है। वहां भी गड़बड़ जारी है और सूरत हाल अच्छी नहीं है। क्वेटा से रेल का एक ही रास्ता है जो बाकी पाकिस्तान से मिलता है। मुश्किल पहाड़ी और जमीनी रास्ते से उस रेल की गुजरगाह है और शायद यही वजह है कि उसकी हिफाजत उतनी आसान नहीं। एक बड़ा वाका तो वो हुआ जब गुज़श्ते बरस ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया और अब ये दूसरा बड़ा वाका हुआ कि धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी ने एक ट्रेन को निशाना बनाया जिससे भारी जानी नुकसान हुआ। बात सिर्फ इस रेल की नहीं पूरे सूबे की है जो कब से शोरी ज़दा चला रहा है। बड़ी तस्वीर तो वाजिया है कि सूबे के हालात अच्छे नहीं है। दोनों महाजों पर शुमाल और जनूब तवातुर से कार्रवाइयां जारी हैं। जवान क्या और अफसर क्या वहां मारे जा रहे हैं। जहां रियासत पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी काविशों में मसरूफ है वहां यह अमर भी जरूरी दिखाई देता है कि दाखिली महाज पर भी कुछ नजर जमाई जाए। कोई साधु या महात्मा ऐसा नहीं कि फौरन से बता सके कि इन दाखिली मसाइल का हल क्या है। कोई फहरिस्त नहीं है जो जल्द से पड़ी जाए और नारा लगे कि ये है फार्मूला पाकिस्तान की नजात के लिए। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी नाम से एक तंजीम थी और मजीद ब्रिगेड का भी सुनने में आया था, लेकिन ट्रेन पर हमले या देर किस्म की मुनज्जम कार्रवाइयां उनका तो इतना जिक्र नहीं होता था। हाफिजे पर जोर दिया जाए तो पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें खासी कम थी, इंडस्ट्री चल रही थी और जरी शोबे की हालत खास अच्छी थी। कहना सिर्फ इतना है कि वहां कोई इनकलाबी रूस नहीं आ गया था, किसी चीनी इनकलाब का लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, लेकिन तमाम कमजोरियों के बावजूद कौमी सतह पर इतना इज़्तिराब नहीं पाया जाता था। ये नहीं कि लोग उठाए नहीं जाते थे या हुकूमती ज्यादती नहीं होती थी, लेकिन अदालतों में कुछ दमखम था और जहां हुकूमती ज्यादती होती वहां अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता था। तमाम तर कमजोरियों के बावजूद एक माहौल कायम था और चल रहा था। आज तक ये तहकीक मुकम्मल नहीं हो सकी कि क्या मुसीबत पड़ी थी कि रिजीम चेंज के घोड़ों को दौड़ में लगा दिया गया। बहरहाल मवाजना तो किया जा सकता है कि शोश के लिहाज से हालात पहले क्या थे और आज क्या है। सलम प्रोग्राम में और भी कुछ आ चाहता है, आप हमारे साथ बने रहिए और ये गजल सुनिए।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। सेमिन आर्मी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का मौजूदा माशी तरक्की का मॉडल गुरबत में कमी करने में माविन नहीं है, जिसके 22 आमदन में इजाफा रुक गया है, जबकि गुरबत 2026 में 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुतवस्त तबका बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है, जैसे कि महफूज निकासी आब, साफ पीने का पानी, सस्ती तवानाई, जो पाकिस्तान में कमजोर अवामी खिदमात की फराहमी की निशानदेही करता है। एक तश्वीशनाक हकीकत यह है कि पाकिस्तान के 15 से 24

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मेजबान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

समीन अपने फिल्म नाइट इन लंदन से मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा सुना। अब आइए साहिर के लिखे बोल सुनते हैं। खयाम की मौसीकी में यह फिल्म है त्रिशूल, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की आवाजों में।

0: سمین یہ نغمہ پورا نہیں سن پائے ہم، معذرت خواہ آپ سے وعدہ، کبھی آپ کو یہ پورا نغمہ ضرور سنوائیں گے۔ آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر 8:45 ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر کیا جائے گا، ذرا سا انتظار فرمائیں۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग

0: योग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष

0: 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़

0: मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपेई सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331481। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये जो आकाशवाणी श्रीनगर समीन روز سنز 9 بجے ولیو کشر موسیقی بوزو یہ جو کلام انجان کشمیری یہ کرن پیش اعجاز راہ

0: आज नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकत दारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और अवाम से अवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की तौसीख की। डॉक्टर जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और ये ज़रूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रूनमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल का जश्न मनाया था। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को अक़्वामे मुत्तहिदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह एजाज मेजर बराक की मिसाली खिदमात और अक़्वामे मुत्तहिदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ़ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों, बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बराक फिलवक्त लेबनान में अक़्वामे मुत्तहिदा के क़याम अमन के मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क में मुनक़िदा एक तकरीब में अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस एजाज से नवाजा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मौाक़े, इख्तराआत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात, तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नज़रिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत, जिसकी कदर फिलवक्त तकरीबन 9 अरब अमरीकी डॉलर है, तवक्को है कि अगले 7 से 8 बरस में बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर हो जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि रियासती हुकूमत बारिश की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सभी ज़रूरी इकदाम कर रही है। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा कि इस साल मामूल के मुताबिक 92% बारिश की पेशगोई के बावजूद मराठवाड़ा के कुछ अजला, मगरबी विदर्भ, शुमाली महाराष्ट्र और दीगर मकामात में एल नीनो के असरात की वजह से खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों में बारिश कम होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों को मौसम के बदलती हुई सूरत हाल से निमटने में मदद के लिए वक्तन फवक्तन एडवाइजरी जारी कर रही है। कौमी अवार्ड से सरफराज मलयालम फिल्मों के अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 बरस के थे। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में अदाकारी की। अपने मुनफरिद अंदाज में मजाहिया किरदारों को निभाते हुए सलीम कुमार ने मिजाह को एक इम्तियाजी जहत अता की। उन्हें 2010 में बेहतरीन अदाकार के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और स्टेट फिल्म अवार्ड मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ अदाकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस अदाकार ने अपने उम्दा करियर में मुख्तलिफ जमानों में अलग अलग किस्म के किरदार निभाकर अपनी गुनागों और यादगार अदाकारी की तारीख रकम की है। मगरबी बंगाल की खवातीन और बच्चों

की नशोनुमा और समाजी बहबूद की वजीर अग्निमित्रा पॉल ने सिलीगुड़ी में आज आला सतह की इंतजामिया जायजा कमेटी की मीटिंग की सदारत की। अपना ओहदा संभालने के बाद मोहतरमा पॉल का यह शुमाली बंगाल के खित्ते का पहला सरकारी दौरा है। तबादले ख्याल में बल्दियाती उमूर, खवातीन और बच्चों की नशोनुमा, समाजी बहबूद, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त, सफाई सुथराई, नालियों की सफाई, कूड़े का बंदोबस्त, ट्रैफिक से मुतअल्लिक जवाबित और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों पर अमल आवरी जेरे बहस आए। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा पॉल ने कहा कि जल्द ही दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियांग, कालीपोंग और सिलीगुड़ी को 5 हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने इन कस्बों की तामीर के लिए तआवुन देने की बात कही है, जिससे सियाहत, तिजारत, सनत और इलाकाई मईशत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मोहतरमा पॉल ने कहा कि शहरी बुनियाद

सड़क में बंदोबस्त, सफाई सुथराई, नालियों की सफाई, कूड़े का बंदोबस्त, ट्रैफिक से मुतअल्लिक जवाबित और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों पर अमल आवरी जेरे बहस आए। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा पॉल ने कहा कि जल्द ही दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियांग, कालीपोंग और सिलीगुड़ी को 5 हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने इन कस्बों की तामीर के लिए तआवुन देने की बात कही है, जिससे सियाहत, तिजारत, सनत और इलाकाई मईशत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मोहतरमा पॉल ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे और सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगले माह की पहली तारीख से सिर्फ नामजद मकामात पर ही पार्किंग की इजाजत होगी और गैर कानूनी पार्किंग की सूरत में जुर्माना अदा करना होगा। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY पर अमलावरी करने वाली 36वीं रियासत बनने के लिए तैयार है। ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम है। सेहत से मुतालिक कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार रियासत में ABPMJAY पर अमलावरी के सिलसिले में कल एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इस मुफाहमतनामे पर नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मसावी और काबिल रसाई हिफ्जान सेहत की हसूलियाबी की जानिब सफर में ये मुफाहमतनामा एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए नतायज के बाद की खिदमात के ताल्लुक से जारी पोर्टल पर मुशाहदे में आए मामलात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरखास्त देने का आज आखिरी दिन है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोर्टल आज आधी रात तक खुला रहेगा। उसने तालिब इल्मों से कहा है कि वह वक्त खत्म होने से पहले पहले अपनी दरखास्तें मुकम्मल करके सबमिट कर दें। अमरीका की ओहायो रियासत के टोलेडो में जारी मशहूर कम्युनिटी फेस्टिवल के आसपास हुई गोलियां चलने के एक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये गोलीबारी ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के करीब हुई। ये 2 रोज तक जारी रहने वाला सालाना फेस्टिवल है, जो मौसीकी के प्रोग्रामों और तारीखी मकामात की सैर के लिए जाना जाता है। टोलेडो के डिप्टी पुलिस चीफ जो हेफरमैन ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि 2 अफराद ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तलाश शुरू कर दी है। ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने इस वाक़े पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि हुक्काम सूरतेहाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरिकी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरबी मानसून शुमाली मगरबी बंगाल के कुछ और हिस्सों, पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। उसने कल साहिली कर्नाटक, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दराज मकामात पर तेज और इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश हुई। इस बारिश से शहर के बाशिंदों को गर्मी और हब्स से कुछ राहत मिली। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश आज रत्नागिरी जिले तक पहुंच गई है। जिले के राजापुर तालुका में आज सपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारत की खवातीन फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। भारत ने गोवा के मडगांव में कल हुए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त दी और छठी मरतबा ये खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों ने गैर मामूली कारकर्दगी, जोश जज्बा और टीम वर्क का मुजाहरा किया।
نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے

डिस्कशन टाइम में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम मुनीर है। एक ऐसा ज़माना था जब खबर को हम तक पहुंचने में ज़रा सा वक्त लगता था, लेकिन जब वो खबर हम तक पहुंचती थी उसका एक असर होता था, वो मुस्तनद मानी जाती थी। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी है जो आज का ज़माना है, जब खबर बन ही रही होती है और वो हम तक पहुँचती है। ऐसे में खबरों का असर धीरे धीरे वो कम होने लगा, लेकिन हाँ, इन खबरों का असर ज़बरदस्ती करवाने के लिए हम तक खबरें पहुंचाने वाले लोगों ने

0: टॉपिक चुना है क्योंकि मैं एक लीडिंग डेली के साथ काम करता
1: जी
0: हूँ। एज अ न्यूज़पेपर वी ऑलवेज इंश्योर कि हम जेन्युइन, फैक्टफुल, इम्पैक्टफुल मतलब कंटेंट जो है वो लोगों तक लाएं। वो क्यों है? क्योंकि मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है, मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ, मेरे जो चलाने वाले हैं इस अखबार को वो जर्नलिज्म से हैं, यहाँ मतलब सारे प्रोफेशनल्स हैं। बट क्योंकि आपने सोशल मीडिया की बात की,
1: जी
0: मुझे जो लगता है, जो मैं देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे बहुत बुरा हाल है। मैं कश्मीर की बात करूँगा, बाहर तो उससे बुरा हाल है शायद।
1: ये बुरा हाल किस नुक्ते निगाह से आप देखते हैं? यूजर्स के साइड से या फिर कंटेंट क्रिएट करने वालों के साइड
0: मुझे
1: से?
0: लगता है ये दोनों का फॉल्ट है। मतलब देखिए, कंटेंट क्रिएटर तो कुछ भी बना देता है, ठीक है। अफसोस इस बात पे होता है उसके कंज्यूमर्स भी हैं, जो बड़ा दुख होता है।
1: जी
0: ऐसा नहीं, अच्छे कंज्यूमर्स भी हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं मैंने इस पेज को अनफॉलो कर दिया, मैंने पूछा क्यों, कहा कि यार ये फजूल कंटेंट चढ़ाते हैं, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है या वो देखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें दोनों का फॉल्ट है। और अनफॉर्चुनेट जो इंसान आज कश्मीर में सिचुएशन देखता है, मतलब लोग कुछ भी देखते हैं, एनीथिंग, मतलब रबिश चीज़ें देखते हैं लोग। एक एग्जांपल यहाँ पे ये दूंगा कि मैं बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ कश्मीर की, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत
1: जी
0: अच्छा काम, मतलब सोशल मीडिया को लेकर
1: जी
0: बहुत अच्छे
1: जी
0: वीडियोज़ बनाते हैं।
1: जी
0: बट बदकिस्मती ये है कि मैं देखता हूँ उनके 2,000 व्यूज़ होते हैं, 3,000 व्यूज़ होते हैं। उसके बगैर ऐसे फेसबुक पेज हैं सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल यूजलेस कंटेंट चढ़ाते हैं, बट उनके मतलब 10-10 लाख व्यूज़ होते हैं, 20-20 लाख व्यूज़ होते हैं, मतलब जो देखकर इंसान को बड़ा अफसोस होता है। तो मुझे मतलब ये लगता है कि एटलीस्ट मतलब लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, या तो इस पे गवर्नमेंट कुछ सीरियसली होकर
1: जी
0: सोशल मीडिया पे कोई पॉलिसी बनाए। क्योंकि यहाँ पे ये हो गया कि आप पेज बना दें, कुछ भी चढ़ा दें, ये पेज बना दें, कुछ भी चढ़ा दें, मतलब कोई चेक नहीं है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है।
1: जी
0: मतलब कोई पूछने वाला नहीं है।
1: जी
0: जैसे मैं बताऊंगा, न्यूज़पेपर आप रजिस्टर करते हैं, न्यूज़पेपर आपका एक RNA मिलता है उसका, ठीक है। अगर आप कुछ गलत कंटेंट चढ़ाएंगे तो नेक्स्ट डे यू विल बी आस्क कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे हुआ।
1: देयर इज अ प्रॉपर चेक.
0: जो शायद सोशल मीडिया में नहीं है। सोशल मीडिया में मतलब ये चीज़ भी है, अगर आप चढ़ा भी देंगे तो कुछ मिनट्स के बाद आप डाउन भी कर सकते
1: खुली
0: हैं।
1: छूट.
0: मैं वही कह रहा हूँ, मतलब
1: जी
0: कोई चेक नहीं है। एटलीस्ट आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग ऑन दिस।
1: चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओपनिंग रिमार्क्स के लिए. अब आपने व्यूज़ की बात की, तो व्यूज़ के लिए मेरे बगल में बैठे हैं हिस्टोरियल्स फिरदौस साहब बैठे हैं. ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, न्यूज़ का नहीं होता है, रिसर्च बेस्ड का होता है आपका कंटेंट. फिरदौस साहब, जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आपको कब अंदाज़ा हुआ कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है?
2: शुक्रिया मुनीर साहब। सोशल मीडिया असल में, जैसे कि उवैस साहब ने कहा कि ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, हमें लगता है कि हम शायद इससे अलग है, जबकि ये एक पब्लिक स्पेस है। और इसको आप इस तरीके से इमेजिन करें कि आप एक स्टेज के ऊपर हैं और आपके सामने 200-300 लोग बैठे हैं, तो उस टाइम आप किस तरीके से एक्ट करोगे, आप किस तरीके से बातें करोगे। लेकिन जब हमारे फॉलोअर होते हैं 2,000, 3,000, 500, 600, हम इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। हमें लगता है कि दूसरी तरफ शायद कोई है ही नहीं, हम इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो उससे ये इल्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट होता है कि हम उस चीज़ की जो वेटेज है उसका सही सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से डिसएग्री करते हो तो आपको उसको काउंटर करना है रेस्पेक्टफुली। आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि एक इंसान है और इसकी अपनी एक इज्जत और डिग्निटी है। लेकिन अब आप मान लीजिए कि जो लोग आजकल जो रोस्टिंग का कल्चर चला है, फिर रोस्टिंग के चक्कर में जो है हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम दूसरे इंसान की जो है इज्जत को उछाल देते हैं, उसकी इज्जत का हम ख्याल नहीं रखते, हम ये नहीं सोचते कि एक इंसान है। इस तरीके से आप इसको सोचिए कि अगर एक स्टेज होगा और आपके सामने 2,000 लोग बैठे हैं, क्या आप उस इंसान के साथ वैसी बदतमीजी करोगे? क्या आप उसकी बॉडी शेमिंग करोगे? क्या आप उसके रिलीजन या एथनिसिटी या उसके रीजन के बेसिस पे उस बंदे का जो है उसको अटैक करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे खुद पर्सनली इस चीज़ का एहसास तब हुआ, चूँकि शुरू शुरू में जब कंटेंट क्रिएशन पे मैं आया तो जो एक्सपर्टीज़ थे, जो इस फील्ड के, जैसे लैंग्वेज के लिंग्विस्ट्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, जब उन लोगों से बात हुई तो मुझे सही से अंदाज़ा हुआ कि इस चीज़ में यानी कंटेंट क्रिएशन में आपको फैक्ट्स के फैक्चुअल बातें करनी होती है और सोर्सेज के साथ बात करनी होती है। एक तो होता है कि आपको कोई सोर्स पता है लेकिन आपने उसमें वीडियो के अंदर या पॉडकास्ट के अंदर या किसी चीज़ आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप उसको मेंशन करते हो तो आपकी अपनी इज्जत बच जाती है।

0: आप पे कोई जो है अटैक नहीं करता, आप जो है अपना साइड बचा लेते हो, लेकिन जब आप इन चीज़ों को जो है दरकिनार करते हो, इग्नोर करते हो और आप अपने हिसाब से बातें करते हो इन चीज़ों की, तो पहले अटैक आप ही पे होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड से है। अब देख लीजिए, जो भी आपका एल्गोरिथम है, आपकी जो आप जो इंस्टा पे जो भी आप कंज्यूम करते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो भी है, वो क्या है, वो मिलियंस ऑफ यूजर्स का एक जो है ना एल्गोरिथम है, वो डेटा है, तो आप भी उसी में शामिल हो। अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो जाहिर सी बात है लोग भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे, और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो जाहिर सी बात है लोग बुरा कंटेंट देखना छोड़ देंगे।
1: सही, जब आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो लोग उस अच्छे कंटेंट को देखेंगे। वैसा इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप किस तरह से देखते हैं, जो हम देखने वालों के सर लाएं इस चीज़ को, या फिर बनाने वालों के सर लाएं, जिस पे भी हम बात कर रहे हैं, भी जिम्मेदारी तभी आती है जब देखने वाला भी अपनी नवियत से देखे चीज़ों को और बनाने वाला भी देखे, और इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
2: एब्सोल्युटली
1: जी,
2: देखिए ये जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई, बख्तियार साहब ने भी कहा ना कि कॉन्टेंट किस तरह का बन रहा है
1: जी,
2: इस पॉइंट पे मैं जरा सी एक मुख्तलिफ राय रखता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी, वो ये है कि कंटेंट बनाने वाला वो वाला कंटेंट बनाएगा, उस तरह का कंटेंट बनाएगा, उस कैटेगरी का कंटेंट बनाएगा जो उसको पता है कि ये मार्केट में चलेगा, जो डिमांड में है। अब जैसा कि बख्तियार भाई ने कहा कि किस तरह का कंटेंट आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि कांगड़ियां सर पे फोड़ी जा रही हैं, ट्यूबलाइट्स खाए जा रहे हैं, इस तरह के कंटेंट को अगर हम देखें आमतौर पर उसको बेवकूफाना कंटेंट कहा जाएगा, मगर क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है कि लोग जो इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम क्यों करते हैं? हमारी जो पॉपुलेशन है, वी आर लिविंग अंडर PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, हमारे अंदर डिप्रेशन है, हमारे अंदर स्ट्रेस है, हमारे अंदर ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है ना, तो उस चीज़ से एस्केप करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द एस्केप मैकेनिज्म्स फॉर पीपल। मैं कॉमेडी क्यों देखता हूँ? बिकॉज प्रॉबेबली आई फील लो, मैं शायद थोड़ा सा मेरा जहन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, एंड देन आई वांट समथिंग टू लाफ एट, मुझे चाहिए कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, तो मैं ये चीज़ें देखूंगा। कोई शख्स बैठा होता है अपने रिश्तेदारों से तंग आके, अपने घर वालों से तंग आके, अपनी जॉब से तंग आके, और उसको लगता है कि एक एस्केप मैकेनिज्म है मेरे लिए, और तब जाके वो ऐसा कॉन्टेंट कंज्यूम करता है जो बस अपना वक्त जो है निकालना चाहता। तो ऐसी ऑडियंस भी है जिनके लिए ये वाला कॉन्टेंट जो है ना वो एक रिलीफ है, वो एक एस्केप मैकेनिज्म है। अब इस चीज़ को हम करेक्ट कैसे करें? यहाँ पे दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपने जो कहा था सेंसरशिप या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह, मेरा अपना ऐसा बिलीफ है कि एवरी लॉ पास्ड इज़ अनदर फ्रीडम लॉस्ट, ठीक है, हर एक चीज़ को इतना कंट्रोल करना, रेगुलराइज करना वगैरह, मुझे नहीं लगता एक ह्यूमनली पॉसिबल होगा। तो मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेंसर समथिंग, वी शुड ट्राई टू रेज अवेयरनेस की बात करनी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट आप क्यों कंज्यूम करते हैं। अगर मैं कंज्यूमर को अवेयर करने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि बख्तियार भाई आप ये वीडियोस क्यों देखते हैं, आप मुझसे कहेंगे कि मुझे भाई एस्केप चाहिए, तो मैं उस एस्केप के रीजन पे फोकस करूंगा ना, मैं रूट कॉज पे जाऊंगा। वंस आई गो टू द रूट कॉज, मुझे पता चलेगा कि बख्तियार साहब की कोई लेट से अल्लाह न करे जहनी परेशानी है, तो मैं इनका सपोर्ट करूंगा उस टाइम पे, ठीक है, लोगों को उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि लोग अपने वक्त की इंपॉर्टेंस को समझें, और उसके बाद ये समझे कि अगर मैं ये आधे घंटे की रील्स देख रहा हूँ, इस आधे घंटे में क्या मैं और कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ या नहीं। जब ये अवेयरनेस आ जाएगी तो तब जाके आपका कंजम्पशन बेटर हो जाएगा, और तब जाके आपका एल्गोरिथम बेटर होगा, क्योंकि एल्गोरिथम कैसे चलता है, वो मशीन है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो मशीन है, जीरोस और वन पे चलती है, वो वही देखता है जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट अच्छा कंज्यूम हो, तो पहले आपको जो वो स्टूपिड कंटेंट है उसके कंजम्पशन पे पहले आपको RCA करना पड़ेगा, रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये कंज्यूम क्यों हो रहा है, उसके बाद आप उसके मद्दे मुकाबले ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो बड़ा ही असरअंदाज हो और जो बड़ा मीनिंगफुल हो, पॉजिटिव हो, जिससे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आए, रादर देन जैसे मुनीर भाई ने अभी कहा था कि डूम स्क्रोलिंग हो रही है। सो डूम स्क्रोलिंग के बदले आप उनको कुछ ऐसा कंटेंट दे दीजिए जिससे उनको फायदा भी हो और जो उनको लगे कि ये इंटरेस्टिंग है। मैं चूंकि खुद एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर हूं, मतलब मैं ट्रेनिंग कंटेंट डेवलप करता हूं, तो मुझे हजार चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो मैं ये प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, इसमें ग्राफिक्स कितने होंगे, इसमें टेक्स्ट कितना होना चाहिए, टेक्स्ट टू ग्राफिक रेशियो कितना होना चाहिए, ब्लैंक टू वाइट स्पेस रेशियो कितना होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैसी होनी चाहिए। अगर मैं उस तरह से साइकोलॉजिकली एनेबल्ड और साइकोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड कोई कॉन्टेंट बनाता हूँ, दैट विल श्योरली हैव एन इम्पैक्ट। साइंस बेस्ड कॉन्टेंट बनाइए ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग के ट्रायल एंड एरर, चलो ये देखते हैं चलता है या वो देखते हैं चलता है। सो आई थिंक कंजम्पशन के रिगार्डिंग मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट।

0: इसके दिमाग में जो है डर बैठ जाए, दोबारा ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचे, चाहे वो बात सच्चाई पे आधारित क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, आप मुझसे डिसएग्री रेस्पेक्टफुली कर सकते हो, फिर भी हम बाई बाई रह सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे और मुझे आपका पता ही नहीं आप कौन हो कहाँ से हो, तो मैं आपके खिलाफ क्या एक्शन उठा सकता हूँ। ये बड़ी चीज़ है जो हम इंटरनेट में यूजर नेम के पीछे छुप जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। जो व्यूअर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दो दो तीन तीन अकाउंट्स होते हैं, बाकी अकाउंट्स उन्होंने इसलिए खोल के रखे होते हैं ताकि स्पेसिफिक लोगों को जो है टारगेट करके उनके खिलाफ एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। तो यहाँ पे जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। और इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जब हम कंटेंट बनाते हैं खासकर अपनी हिस्ट्री के रिलेटेड या फिर हेरिटेज के रिलेटेड या फिर हमारी लैंग्वेज के रिलेटेड, हमें सबसे पहले सोर्सेस हमेशा मेंशन करने चाहिए। और दूसरी बात, हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लोकल नॉलेज है, ठीक है, तो हमें उसको एज इट इज़ पेश करना चाहिए कि ये लोकल नॉलेज है, ये मेरी अपनी कोई ज़ाती राय नहीं है। जैसे हम फोकलोर की कोई कहानी बयान करते हैं, राठ से दिलियन, तो उसको उसी तरीके से बयान किया जाना चाहिए कि हमारा फोकलोर है, न कि सच्चाई है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो है विद इन सेकेंड जो है ट्रिगर हो जाते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: अब फॉर एग्जांपल जब आप इस मुद्दे पे बात करेंगे, मिथिकल क्रिएचर से बात करेंगे, तो अब आप इसको बोलेंगे कि फोकलोर है, ये माइथोलॉजी, इट इज़ नॉट हिस्ट्री, इट्स नॉट रियलिटी। तो जब आप ये चीज़ बोलोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे, वरना आप पे बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप स्यूडो साइंस प्रमोट कर रहे हो, जबकि स्यूडो साइंस अलग चीज़ है और फोकलोर अलग चीज़ है।
1: जी फिरोज साहब, इन्होंने प्राइवेसी की बात की, इन्होंने गैंग कमेंटिंग की बात की, तो अभी जो तबका हमें सुन रहा है इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, जो नए यूज़र्स हैं, मिडल एज्ड पर्सन्स जो हैं सोशल मीडिया पे जो नए नए आए हैं, उन्हें प्राइवेसी के हवाले से दो मामलात पेश आते हैं जिनके केसेस हमने रिपोर्ट होते हुए भी देखे। एक ये कि उनका फिनंशियल वो लॉस हो जाता है, दूसरा उनको ज़ाती ज़िंदगी में भी परेशानियाँ होती हैं, उनके फ़ोटोज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करके फिर उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता है। जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस चीज से बच सकते हैं, जो मिडल एज्ड लोग हैं और जो बच्चे हैं, दोनों कैटेगरीज के हवाले से बात करें।
2: देखिए, ये बड़ा ही अहम सवाल है। ये जो दो कैटेगरीज आपने बताई, एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और दूसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो हमें पता है कि मेरे पैसे की इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग बड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र किए हुए। सो मेरे नज़दीक जो आपका फोटोज़, जो आपके फ़ोटोज़ हैं, जो आपके फैमिली इवेंट्स वगैरह हैं, उनको महदूद रखें सोशल मीडिया पे शेयर करने से, ठीक है। आपके घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, इवेंट चल रहा है, उसको आप अपलोड ना करें, स्पेशली स्नैपचैट है आपका, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे लाइव आ गया एंड ऑल दैट, तो उसमें हमें ज़रा सा मोहतात रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ यू नो, कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे जो इसी फिराक में होते हैं, ताक में बैठे होते हैं कि कब मुनीर साहब जो है अपना एक वीडियो चढ़ाएं और मुझे पता चले ये कहाँ है। आपकी लोकेशन भी आपका एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी फोटोज़, अच्छा बच्चों के फोटोज़ हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, अपनी फीमेल्स वगैरह माओं बहनों की फ़ोटोज़ डाल देते हैं, उससे मुझे लगता है हमें इज्तनाब करना चाहिए ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। और एज़ फार एज़ आपका फाइनेंशियल वाला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट का, देखिए किसी के साथ अपना OTP, किसी ने आपको कोई लिंक भेज दी, कॉल कर लिया, आपका जी कोई रिलेटिव पकड़ा गया जी, उसको उसके साथ ड्रग्स पकड़े गए है ना, कोई किडनैप हो गया या मुझे पैसों की ज़रूरत है एंड ऑल, तो आप कोशिश करें वो सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करें, उस शख्स को पहले कॉल करें, देखें कि ये मसला सही है या नहीं, या किसी ने उनका फेक प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनकी फ़ोटो उठा के उनके प्रोफाइल से फ़ोटो कॉपी करके जो है एक नया प्रोफाइल बना दिया, उसी प्रोफाइल से वो बाकियों को मैसेज उनकी फैमिली को भेज देते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और इसी तरह से ये फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह जो होता है, इसमें हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहने की ज़रूरत है, और स्पेशली ये यूथ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने एल्डर्स को इसका सही इस्तेमाल करना सिखाएं।
1: जी थैंक यू भैया साहब, मौजू ऐसा है इस पर घंटों बात हो सकती है। इदरीस साहब, एज ए जर्नलिस्ट आप अपने व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 30 सेकेंड्स में आप इस चीज़ पर बात करें।
3: जैसे व्यूअर्स का आपने जिक्र किया, मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा उनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा कॉन्टेंट क्या है। ठीक है, जो जो बनाता है रिलेटेड भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा कॉन्टेंट बाहर भेजें, बट यहाँ रैंडम कोई भी कुछ बना देता है एंड इट गोज़ आउट। बट एटलीस्ट एज अ जर्नलिस्ट आई एक्सपेक्ट कि ऑडियंस अच्छा कॉन्टेंट देखे जो उनके लिए भी हेल्पफुल हो, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी हेल्पफुल हो, और जर्नल

0: के लिए भी हेल्पफुल।
1: थैंक यू। फिरदौस साहब, एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, आप अपने व्यूअर्स से क्या उम्मीद करते हैं? वो कैसे आपके कंटेंट को या दूसरों के कंटेंट को, जो रिसर्च बेस्ड होता है, एक मुस्तनद तरीके से बनाया जाता है, उसके हवाले से?
0: सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जब होगा तो मैं भी अपना कंटेंट जो है इम्प्रूव करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑडियंस है वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, हर तरीके से सपोर्ट करे जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। जो फालतू का कंटेंट बनाते हैं, जो कंट्रोवर्सीज करते हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट भी करना ज़रूरी है। यही मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस से।
1: फिरदौस साहब, इदरीस बख्तियार साहब, ओया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रिशम अज़ला फिर से मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। वो ये फरमाते हैं कि बैड मनी कीप्स अवे द गुड मनी फ्रॉम द मार्केट। तो अगर आप अच्छे कंटेंट को तरवीज दिलाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और एज ए व्यूअर आपको अच्छा कंटेंट को सराहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी सामने आ सकते हैं, तभी जाके हमारे बच्चे भी बुरे कंटेंट से, क्रिंज कंटेंट से दूर रह सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामीन भी इस बात को बखूबी जानते होंगे, समझ रहे होंगे कि इसका असर हमारे बच्चों पे पड़ता है, और बच्चे हमारे आने वाले मुस्तकबिल हैं। उनके अजहान को हम पॉजिटिव तरीके से डेवलप करें, साइकोलॉजिकली उनको अच्छे तरीके से हम फलने फूलने दें, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोशल मीडिया के आज के इस ज़माने में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि किसी और दिन किसी और मौजू पे आपके साथ फिर से हम गुफ्तगू करेंगे इस स्टूडियो में। तब तक के लिए आपका और हमारे सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।

0: समय नहीं था प्रोग्राम डिस्कशन टाइम। प्रोग्राम के मॉडरेटर थे मुनीर अहमद डार, शुरका थे फिरदौस अहमद लोन, इदरीस बख्तियार और शेख अवेस तारिक। पेशकश वसीम फारूक, माउनत आज़ाद अहमद वानी। आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, ठीक 10 बजे आप हमारे यहाँ से रात 11 बजे तक प्रोग्राम समाप्त करेंगे आपकी फरमाइश। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं जावेद अंद्राबी। प्रोग्राम से पहले एक मुख्तसर वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

बिकने। इनके साथ ये सभी सुनने वाले भी हैं, ये हैं हीमू जान, ताहिरा, रजिया जान, तन्नो रानी, ड्राइवर मोहम्मद शफी, खालिदा जान, बिलकिस जान, अशरफ डार, मंजूर डार, पीर अल्ताफ खान, तनवीर खान और अब्दुलहद खान। चंडीगढ़ से सतीश अनुजा और बिमला अनुजा। दामनी मनोरा से तुलसीराम ढेरे, मायावती ढेरे, संदेश ढेरे, आदेश ढेरे, किरण ढेरे, प्रज्वल ढेरे और अनुदित ढेरे। तो लीजिए पेश है फिल्म आशिकी से नगमा कुमार सानू की आवाज में। गीतकार हैं समीर और मौसीकार नदीम श्रवण।

आपने कुमार सानू की आवाज में नगमा सुना, फिल्म थी आशिकी। प्रोग्राम का अगला नगमा एक ऐसा नगमा है जो हमें जीने का सलीका सीखने का दर्ज देता है। इसे गाया है नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है खून भरी मांग। इस नगमे को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये दोस्त, ये हैं बामरादा खाक बिरू से गुलाम कादरवानी, शाहीना, अनीसा, समीना, फुरकान, रिजवान, जैना बेगम, आयशा और मकबूलवानी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पटेल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और मिस शीतल राजेश। दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ये मेल आया है ऊपर कोट मोहल्ला जो खुंती बुलंद शहर से। मेल भेजने वालों के नाम हैं निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदन अब्बासी, सोहान अब्बासी, अर्जुन अब्बासी, आबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के दूसरे साथी। तो दोस्तों, पेश है आप सबकी पसंद फिल्म खून भरी मांग का ये गीत। आवाजें नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। लीजिए, समाप्त कीजिए।

आपने नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में यह नगमा सुना। फिल्म थी खून भरी मांग। अब जो नगमा आप सुनेंगे उसे गाया है आशा भोंसले ने। फिल्म है किस्मत। फिल्म किस्मत सन 1969 ईस्वी में मंजरआम पे आई। इस नगमे के लिए हमें फरमाइशी मेल आया है चंडीगढ़ से। मेल भेजने वालों के नाम हैं सतीश अनीजा और बिमला अनीजा, रायपुर से नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, राजवनी जिला मोहया बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हैं उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, दिव्यांश बागेल और उनके घर वाले, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम। दोस्तों आपको इंतजार होगा अपना मनपसंद गीत सुनने का फिल्म किस्मत से। आशा भोसले की आवाज, गीतकार SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर। तो लीजिए समाप्त कीजिए।

0: रहने दो।
1: फिल्मी नगमे आप अपनी चहेती प्रोग्राम आपकी फरमाइश के तहत समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। दोस्तों 18 जून सन 1973 को राज खोसला की हिदायत के तहत फिल्म रिलीज हुई थी कच्चे धागे। इस फिल्म का संगीत तरतीब दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी फिल्म से हम एक नगमा आपके लिए पेश करने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। ये नगमा इन दोस्तों की पसंद है। ये हैं आसार शरीफ जनाब साहब आंचार से, साहिल डार, एजाज अहमद हमदानी, तारिक अहमद, फारूक अहमद मलिक, मोहम्मद आसिफ कोंदू, बसपोरा से गुलाम रसूल डार, अशफाक अहमद डार, अब्दुल हमीद डार, रियाज अहमद डार, मोहम्मद उस्मान डार और दानिया फलक। इसी नगमे को सुनने के लिए इन दोस्तों ने भी ईमेल भेजा है। ये है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकार, रतनमाला सुरलकार और आरती कुमारी। पेश है आप सब दोस्तों की फरमाइश पर कच्चे धागे फिल्म से नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

नगमा सुनवा रहे हैं। आवाज किशोर कुमार की है। इस गीत को पसंद फरमाया है निजाम आबाद तेलंगाना से शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। ये मेल आया है बानियारी से, लिखने वाले हैं जान मोहम्मद डार, मंजूर अहमद डार, मोमिन अहमद डार, रोजा जान, सकीना जान और नुसरत जान। दरीगाम बड़गाम से मलिक इम्तियाज, मोहम्मद इकबाल मलिक और अनस इम्तियाज। ये ईमेल आया है सलर पहलगाम से, लिखने वाले हैं पीरजादा मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और उनके दूसरे साथी। तेलंगाना बोंगिया से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और उनके दूसरे साथी। गांव दोराबंदा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। बरारा टाउन जिला अंबाला हरियाणा से ये है हमारे मुस्तकिल सामीन रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, प्रेयर ग्रोवर, गुरु कीरत और गुरशबद सिंह राहुल। दोस्तों आपकी पसंद का नगमा हाजिर है, लेकिन नगमा सुनवाने से पहले फिल्म याराना से मुतलक आपको बता दें कि ये फिल्म सन 1981 की म्यूजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी। अमिताभ बच्चन और अमजद खान इसके खास किरदार हैं। इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा है। एक से बढ़कर एक नगमे जिन्हें कंपोज किया है राजेश रोशन ने। इसी फिल्म से लीजिए सुनते हैं ये नगमा किशोर कुमार की आवाज।

आपने फिल्म याराना से नगमा सुना किशोर कुमार की आवाज में। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में दो गाना सुनते हैं फिल्म वारिस से। सुनना चाहते हैं संबलपुर कैंकर से फगु राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, सुरफाव कंगन से लतीफ अहमद रैना, खालिदा जान, अफरोजा जान, रऊफ शेख, साहिल तनवीर, बानियारी मोहम्मद अशरफ टार, जान मोहम्मद टार और मंजूर अहमद टार। पेश है आप सबकी पसंद पर फिल्म वारिस से नगमा लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। नगमा निगार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार उत्तम जगदीश। लीजिए समाप्त कीजिए।

दोस्तों 1964 ईस्वी में एक फिल्म आई थी राजकुमार, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। पृथ्वीराज कपूर, शमी कपूर, साधना और प्राण इस फिल्म में लीड रोल में हैं और इस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी है शंकर जयकिशन मौसीकार जोड़ी ने। इसी फिल्म से एक नगमा सुने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। नागसिंह रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इन सामीन ने इस नगमे को सुनना चाहा है। ये हैं अब्दुल गफ्फार दावर, अब्दुल हक दावर, जियाउल हक दावर, मोहम्मद उमर दावर और राजेंद्र कटारे। आदर्श नगर मलूद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नेवान शर्मा, मांडी शर्मा, सोरू शर्मा और शाइना शर्मा। तो आइए सुने आपकी पसंद का नगमा फिल्म राजकुमार से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जी हां, ये हैं गाने के बोल जिसे आप लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे। सुनना चाहते हैं कटहल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, ठाकुर केथल और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, हयात कॉलोनी आर्या बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान, फरहान, समीर आजम और गुड़िया। आइए सुनते हैं फिल्म मेरा साया से नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजा मेहती अली खान और संगीतकार मदन मोहन।

आपने प्रोग्राम के आखिर पे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म ब्रह्मचारी से नगमा सुना। दोस्तों, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।

आपसे विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर प्रोग्राम का पता बता देते हैं ताकि आपके फरमाइशी खतूत हम तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। तो दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सेहतमंद रहिए। शब्बा खैर।

0: سمین اپنے اپنے ریڈیو سیٹس پہ ٹون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سن رہے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر. رات کے 11 بج رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की. इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की. साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया. डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया. इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी. सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही. गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे. गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी. इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा. इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे.

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
2: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर

0: नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट

0: उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी।

डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबल

0: निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही है। तो एक आम व्यक्ति बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार

0: ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर, टीबी की जांच से लेकर, टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर, दवा से लेकर, जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड

0: 19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की
1: जी।
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है
1: जी।
0: और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार

0: लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में है उनसे हमें मुक्त रखता है और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन शब के 11:42 और 25 सेकंड हो चुके हैं। आज की नशरियात को बर्खास्त करने से पहले आपको जानकारी देते हैं कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। समीन रात 9:30 पर मोहम्मद यूसुफ शाहीन का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नष्ट होगा राह खुदा दीतो किस्सा। शब 10 बजे प्रोग्राम समाप्त करें नशरियात में हमारे साथी मेहमान है साबिक ब्रॉडकास्टर गुलाम नबी मीर

गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है 5 बजे शाम, 5 बज शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गमी बायन हिंदी खतर। हालात हजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचेगा शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज ब्रॉडकास्ट होता है 8 बजे। 8:30 पर खेल शाइकीन के लिए खेलों से मुतलिक प्रोग्राम पेश होगा स्पोर्ट्स टाइम, मेजबान एजाज नास्की। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे सुहेल निसार और रात 9 बजे चंद कश्मीरी गजलें पेश होंगी। तो समी नीति तफसील कल हमारे यहां से नश्र होने वाले प्रोग्रामों की। आपने अपने रेडियो सेट्स पे ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा हमारी नशरियात दस्तियाब है DTH और आकाशवाणी की लाइव ऐप मोबाइल ऐप पर। समय इस वक्त हमारी स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक शब के 11:47 हो चुके हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लिए कल सुबह 6:28 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शौकीन हिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, जय हिंद।

जी हाँ, ये आकाशवाणी है, आपकी अपनी वाणी है। 11:51 और 11 सेकंड हो चुके हैं, बस 9 मिनट बचे हैं और उसके बाद हो जाएगा 8 जून। 8 जून होते ही 90 सालों का हो जाएगा आपका अपना आकाशवाणी, और इस सफर में आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, इसकी शुभकामनाएं आपको भी और हमें भी। ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी गीतों का ये सफर, और आज आपके संग है अर्पना। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको भी इस 90 साल तक जो आपने हमारा साथ दिया। और इसी के साथ अगला गीत भी आपको बता दूं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, आरडी बर्मन का संगीत है, और आवाज जो होगी वो होगी एक बार फिर से किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है कटी पतंग। इस फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

यही प्यार दीवाना होता है आपका और हमारा, क्योंकि ये 90 सालों का सफर जो है यूं ही चलता रहेगा आगे भी। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपका आकाशवाणी अब हो गया है 90 साल का। 11:55 हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे लता जी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्म का नाम है लोफर। इसी गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPM

इसका शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल अताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण पश्चिम मानसून कल पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान, लू, डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। ऐसे समय में हमारे पारंपरिक ज्ञान और भारतीय जीवन शैली की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ और स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से हमारे घरों में बनने वाले पेय पदार्थ जैसे आम पन्ना, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, जौ का पेय और नींबू पानी न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि गर्मी से राहत देने और स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशिष्ट विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
3: नमस्ते, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: हमारे साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा। आप एक जानी मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। स्वागत, नमस्कार रीना जी, आपका भी।
4: नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
2: और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं मोनी दीपा तालुकदार। आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से पोषण और इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। आपका भी स्वागत, नमस्कार।
5: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: अपनी चर्चा शुरू करने से पहले क्यों ना हम सुन लें कि गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री ने

0: 31 मई के मन की बात के कार्यक्रम में क्या कहा।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम प्रकाश की। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौसम में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो समय समय पर गाइडलाइंस इशू करते हैं, उन्हें भी हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये बताइए, ये गाइडलाइंस क्या हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए?
2: बहुत सही कह रहे हैं आप, गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस समय जब गर्मी अत्यधिक है, जिसको चरम सीमा पे आप कहिए, इस समय गर्मी देश के विभिन्न भागों में है, और जैसा कि आगे आने वाला है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और पानी जो है बरसात भी कम होगी, तो हर विभाग जो है देश का उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा, एक डिजास्टर अलर्ट जो है वो मोबाइल पे भी किया गया चेक।
0: हाँ।
2: तो ये भी एक उस तरीके से है, और अभी 3-4 दिन पहले भी वो अलर्ट आया था जब गर्मी चरम सीमा पे थी। तो ये हर विभाग जो है सरकार का, इसको हर साल ही कुछ ना कुछ करते हैं, ये नई नई चीजें जो है ईजाद की जा रही है जिससे कि लोग इसमें ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, और हर सरकारी अस्पताल में लू की चपेट में आने वाले लोगों के लिए या जो गर्मी से त्रासदी होती है उसमें कोई भी जो व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसका हम लोग यूजुअली रिपोर्ट भी करते हैं, और उनको हम लोग देखते भी हैं कि कैसे इलाज करना है। तो ये सारे स्वास्थ्य विभागों में, सारे अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में गर्मी से जिन जिन लोगों को दिक्कतें होने की संभावना होती है या दिक्कतें होती हैं, उनके लिए कैसे उनका हमें मैनेज करना है, कैसे उनका उपचार करना है, ये सब दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और सबके लिए लागू है।
0: जी, ये तो आपने बताया कि जो आपके हॉस्पिटल्स में किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी हुई है गाइडलाइंस के तहत, लेकिन जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कैसे इस चीज को समझें कि कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें निकलें, या अगर लू लग जाए तो किस तरह से उसको सीरियसली लें, कब वो डॉक्टर के पास जाएं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है।
2: हाँ, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर राज्य में भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या क्या कैसे सावधानी बरतनी है और क्या क्या सावधानी

0: सावधानी बरतें, ये भी काफी जारी किया हुआ है। और इसमें जैसा आपने कहा, तो मैं श्रोताओं के लिए ये बताना चाहूंगा कि दोपहर में, भरी दोपहरी में नहीं जाएं, तो 12 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, जब धूप बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, सूर्य हमारे सर पे होता है, उस समय गर्मी से में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ अत्यधिक काम है, बहुत जरूरी काम है, तो आप या तो सवेरे के समय कर लें या शाम के समय कर लें, जब धूप इतनी तेज नहीं होती है। अगर बाहर निकलें तो छतरी लेके निकलें, या गमछा या फिर कपड़ा रख करके निकल सकते हैं, गीला कपड़ा करके अपने सर पे डाल करके निकल सकते हैं, या साथ में पानी भी जरूर लेके निकलें। ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें मन की बात में कहा था, और ये बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलें गर्मियों में, इस समय मई जून के महीने में कभी भी आप बाहर निकलें तो साथ में पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। तो ये कई चीजें हैं, और इस पे मेरे ख्याल से सब श्रोताओं को पता भी होना चाहिए। इसमें रहन सहन की भी बात है, तो अगर कई लोग जो है ना बड़े डार्क क्लोथ पहनते हैं, तो हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, टाइट नहीं पहने। तो जो पहले जैसे कुर्ता पजामा लोग पहनते थे गर्मियों में, आप कई बार देखेंगे, तो ये ऐसे कपड़े पहनकर जाना बाहर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें गर्मी शरीर में बचती भी है और थोड़ी हवा से रहता है तो जो पसीना आता है वेपोरेट हो जाता है, जिससे शरीर को खुद ब खुद जो है ठंडक महसूस होती है। तो ये कई चीजें हैं जो हम लोगों को ट्रेडिशनल जो हम लोग करते रहे हैं, और ये बार बार दिशा निर्देश जारी भी होते रहते हैं, और मेरा मानना है श्रोताओं के इसमें अमल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और हम कार्यक्रम भी इसीलिए समय समय पर करते रहते हैं कि लोगों को बताया जाए, कहीं कोई चूक ना हो और इस कारण से कोई हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा आपने पानी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो क्या जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल, डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी फेटल हो सकता है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, और आप जैसे कई लोग हैं जिनको उम्र दराज लोग होते हैं, उनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से उन्हें पसीना नहीं आता है, तो पसीना आएगा और ज्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हुए हो सकता है। और पसीने में और कई तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं पानी पिए और तरल पदार्थों के साथ वाला पानी पिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नींबू पानी पिए, तो नींबू की वजह से उसमें पोटेशियम सोडियम चीजें आती हैं, तो उससे तरल पदार्थ पानी में आपूर्ति होती है, सादे पानी से बेहतर माना जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको डिहाइड्रेशन, तो पानी और तरल पदार्थ से आप डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ वृद्ध लोग होते हैं जिनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं बीमारियों की वजह से, तो उनको पसीना नहीं आ पाता है, तो कई बार बिना पसीने के अभाव में भी आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन होगा तभी जो है गर्मी का दुष्प्रभाव होता है, गर्मी के दुष्प्रभाव बिना डिहाइड्रेशन के, स्वेटिंग जब नहीं होती है, पसीना नहीं आ रहा होता है, तब भी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत लगे, सर में भारीपन लगे, चक्कर लगे, बहुत ज्यादा पसीना आए, जो कि आपको लगे कि आप ठंडक में आ गए फिर भी पसीना आ रहा है, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आपको गर्मी का आहत हो रहे हैं। कई बार क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, कई बार आप धूप में जाते हैं आंखों में जलन होने लगती है, तो ये सब चीजें जो नॉर्मली आपको नहीं होती, और कोई भी नई चीज आपको गर्मी में लगती है तो आप ये मानिए ये गर्मी के या गर्म से ज्यादा तापमान के दुष्प्रभाव है।
1: जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, लेकिन हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में। तो आपने नींबू पानी का जिक्र किया, और प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे शीतल चीजों के बारे में हमें बताया इस कार्यक्रम में, मन की बात में जिक्र किया, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे, आपके पास भी फिर वापस आएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी रीना अरोड़ा जी, कि एक आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हर मौसम में, जब ऋतु चक्र की बात करते हैं, और जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है या कोई दूसरा काल आता है, तो हमारा जो रसोई है उसका मिजाज बदल जाता है, तो किस तरह से रसोई का लिंक जो है ये आयुर्वेद में ऋतुचर्या जिसको कहा गया है, वो कैसे जुड़ता है आपस में?
2: जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है शालिनी जी। अक्सर क्या होता है, जैसे ही ऋतु बदलती है हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी चीजें समझ नहीं आती हैं, फुल एसी ऑन करके वो गर्मी में भी सोचते हैं वही मौसम है, वही चाउमीन, वही जंक फूड्स और वही स्पाइसी फूड्स वो सब खाते रहते हैं, जबकि बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मौसम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर्स है तो हमारी डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें मार्केट में भी सत्तू दिखने लगता है इस मौसम में, नींबू पानी दिखता है, बेल का शरबत दिखता है, आम पन्ने की बात करते हैं लोग, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लूज कपड़े डालने चाहिए, आयुर्वेद में भी एडवाइस है कि आप लाइट कलर्स के

0: कपड़े डालिए, कॉटन डालिए, बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े मत डालिए ताकि उसमें से हवा पास हो सके, और सिर पे पानी डालिए, चंदन का यूज कीजिए इन दिनों पे। सर्दियों में अगरू का लेप बताते हैं तो समर्स में बिल्कुल चंदन का लेप आप बॉडी पे कीजिए, और सबको पता है चंदन बहुत ठंडा है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो ये सब चेंजेस, और डाइट में जैसे कुष्मांड है, बहुत आजकल सीजन में जो चीजें आ रही है, पंपकिन जिसको बोलते हैं, उसका सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, कूलिंग एजेंट है। घिया, तूरी, टंडे टाइप की परवल जो सब्जियां आ रही है, ये भी बहुत कूलिंग है, वाटर ज्यादा इनमें, तो बॉडी में वाटर कम नहीं होता है। खीरा है, एक्सेस में आ रहा है
1: जिन सब्जियों में या फलों में पानी का कंटेंट ज्यादा हो उसको।
0: और एक और चीज मैंने देखी है, भिंडी बहुत ज्यादा आ रही है। अब लोग कहेंगे कि ये वायुवादी करती है, ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, और होता क्या है, धीरे धीरे इतनी गर्मी से कफ बॉडी में कम होता जाता है। ये कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये कई अच्छी चीजों वाला कफ है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है, बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है, तो उनको बढ़ाने में ये

0: धीरे धीरे इतनी गर्मी से कफ बॉडी में कम होता जाता है। ये कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये कई अच्छी चीजों वाला कफ है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है, बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो उनको बढ़ाने में ये जो सीजनल वेजिटेबल्स आजकल जैसे भिंडी आ रही है, अरबी आ रही है, तो अगर किसी को सूट करती है तो उनको ये खाना चाहिए, ताकि आपकी वो इम्यूनिटी, आपका इनहेरेंट जो हेल्थ हमारी होती है ना, वो जिसको बोलते हैं, बोलते किसी को देख के हम कहते हैं बहुत ओजस्वी व्यक्ति है, तो वो आपका मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी वो बेसिक स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है तो आपको कोई हीट स्ट्रोक अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने देखा है आजकल बच्चे भी कहीं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, वो भी एक कारण है, खाली गर्मी कारण नहीं है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आप चल पड़े ऑफिस के लिए इतनी गर्मी में, तो खाली पानी से गुजारा नहीं होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्वेटिंग हो रही है आपको। तो ये बेसिक चीजें भी अगर हम मेंटेन करें तो काफी हद तक इस गर्मी से हम बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और बचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ये कार्यक्रम है उसमें कुछ और भी हम चीजें शामिल करते हैं, मनोरंजन को भी स्थान देते हैं। तो एक प्यारा सा गीत चाहूंगी कि श्रोताओं के नाम आप सुनाएं, हम सब बैठ के सुनेंगे, आनंद लेंगे। कौन सा गीत जहन में आ रहा है जो आप सुनना चाहेंगे इस समय?
0: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

0: दीपा जी आपसे कि पोषण की दृष्टि से इनका क्या महत्व है, अगर हम जानना चाहें कि उत्तर भारत का उन्होंने बात की है आम पना, पंजाब हरियाणा की लस्सी और गुजरात राजस्थान की छाछ, ये ड्रिंक्स हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में कैसे मदद करती है, ये बताइए
1: जी। प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन में कि पानी पीते रहिए और साथ में उन्होंने हमें 10-12 भारतीय पेय पदार्थों का एक सूची दी है जो हमें एक अंदाजा देती है कि हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को कैसे शामिल कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, ये कोई टोटका नहीं है या ये केवल एक अंदाजे की बात नहीं है, ये हमारी नानी दादी के नुस्खों में पारंपरिक रूप से लिखा हुआ है, प्रमाणित है और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। उत्तर भारत में क्योंकि लू बहुत अत्यधिक पड़ती है और आम का वेजिटेशन वहां ज्योग्राफिकली होता है, इसीलिए कच्चे आम को उत्तर भारत में आम पन्ना के रूप में गर्मियों में खाने का एक कल्चर कस्टम रहा है। आम में एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो गर्मियों में हमारे पेट को, एसिडिटी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, इसमें पेक्टिन है, कच्चे आम में पेक्टिन रहता है जो एक किस्म का सॉल्यूबल फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर हमारे स्टमक की लाइनिंग को टोन करता है, उसको सूद्ध करता है। तो गर्मियों में जो अपच की समस्या रहती है और जो उसमें इन्फ्लेमेशन, जलन या एसिडिटी की गैस की समस्या हो सकती है, उन सब के लिए ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो आम पन्ना इस प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है उत्तर भारत में। गुजरात और राजस्थान की तरफ उन्होंने छाछ लस्सी का जिक्र किया है। छाछ लस्सी अपने आप में प्रोबायोटिक्स है, ये तो अपने आप में ही एक क्लेम है। प्रोबायोटिक नाम अपने आप में एक क्लेम है क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया है। और ये यदि हम घर की बनी दही से बनाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी दूध के गुणवत्ता वाली चीजें भी मिलती है। और प्रोबायोटिक्स अपने आप में गट माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है और जो उसके कल्चरल माइक्रोफ्लोरा है उसमें गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ब्रेन गट जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को और गट बैरियर को एनहांस करता है, ब्रेन गट रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। उससे गर्मी में दिमाग भी शांत रहता है और स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये बेनिफिट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जिक्र उन्होंने हमें
0: पंजाब हरियाणा की लस्सी का भी जिक्र किया है।
1: लस्सी भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक ड्रिंक है इसमें। और लस्सी में क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वाटर अमाउंट एडेड हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को काफी डाइल्यूटेड रख सकते हैं, तो उसमें हम अपने प्रोबायोटिक के गुण भी हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमें फैट या हमें जो दूध का एक्सेस फैट या उसमें जो मलाई रहती है, चिकनाई रहती है, उसको भी हम डाइल्यूट करके उसकी चिकनाई को रिड्यूस कर सकते हैं। तो लस्सी, छाछ और इस प्रकार के भारतीय पेय पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तो सुनिश्चित करते ही हैं, रिहाइड्रेट करते हैं, रीमिनरलाइज करते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक है और हमें अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ना चाहिए और बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स और एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स से बचना चाहिए
0: जी। पर आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे और युवा जो हैं अक्सर जो बाजार में चीजें मिलती हैं, डिब्बा बंद सारी चीजें होती हैं, उन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे उसको कहीं प्रमोशन किया जाता है उनको उस तरह से। तो ये जो एक धारणा अब बढ़ रही है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घर में बनी हुई और ट्रेडिशनली जो चीजें बनती हैं वो ज्यादा लाभप्रद रहती हैं। तो क्या हाइजीन फैक्टर भी उसमें इम्पोर्टेंट है और क्या बाजार में जो चीजें मिलती हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं?
1: आजकल युवा पीढ़ी पूरी तरह से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ काफी आकर्षित है। उनको वो चीजें चाहिए जो कूल है, जो फैंसी है, वो ट्रेडिशनल और हमारे भारतीय दादी नानी के उसको वाली चीजों को अनकूल समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें इतनी अत्यधिक मात्रा में चीनी एडेड रहती है। एक 300 ml का यदि हम एक कोल्ड ड्रिंक देखें तो उसमें लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी रहती है। कंपेयर टू जब हम ये ट्रेडिशनल आम पन्ना और इस तरह के ड्रिंक्स घर पे बनाते हैं तो वो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं। उसमें हम एक दो चम्मच चीनी, शहद या गुड़ से काम चला लेते हैं। प्रोसेस्ड ड्रिंक्स में इवन फ्रूट जूसेस जो बाजार में मिलते हैं उसमें परमिटेड प्रिजर्वेटिव अलाउड है, उसमें फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स पड़ते हैं जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और और वो परमिटेड भी है। तो कई सारे एडेड प्रिजर्वेटिव्स, परमिटेड फ्लेवर्स, सिंथेटिक कलर्स, प्रोसेसिंग एड्स अलाउड है सिंथेटिक ड्रिंक्स में, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में तो कैफीन की मात्रा रहती है, उस

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शारणी मित्तल और कार्यक्रम में हम कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत अभी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए देश के अलग अलग कोनों से 10 पारंपरिक देसी ड्रिंक्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन इनमें हमारी पीढ़ियों का अनुभव छिपा है। तो मैं जानना चाहूंगी मोनी

0: अलावा उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स पड़ते हैं, तो काफी सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस जाते हैं इनके फॉर्मुलेशन में। उसके कंपैरिजन में जब हम ये ड्रिंक्स, कोकम ड्रिंक, सत्तू का शरबत घर पे बनाते हैं, एक तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड है, हम इनके फॉर्मूला को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसमें चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं। और हाइजीन का आपने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर उठाया, क्योंकि लोग शरबत के नाम पे गन्ने का जूस भी सड़क किनारे बिक रहे हॉकर से, वेंडर से लेते हैं, उसमें किस प्रकार का पानी का इस्तेमाल किया गया है, इवन जो बर्फ इस्तेमाल हुई है, क्या वो बर्फ गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी थी कि नहीं, क्योंकि हम कई बार इन पैरामीटर्स को इग्नोर करते हैं, हम बर्फ के बारे में इतनी तहकीकात नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि पानी उसमें जो यूज किया गया है गन्ने को धोने के लिए या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए वो किस प्रकार का रहा है। तो एक मसला उसमें
1: मतलब वो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हो सकते हैं,
0: और गर्मियों में बैक्टीरियल ग्रोथ काफी फास्ट रहती है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस का रिस्क रहता है जब हम ये चीजें खुले वेंडर से या स्ट्रीट फूड से हम खरीदते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इन सब ड्रिंक्स को युवा पीढ़ी को खुद बनाने को घर पे दे कि आप खुद बनाइए, क्योंकि जब वो खुद बनाएंगे तो वो पियेंगे भी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और कोशिश करते हैं कि सब लोग अपने से बनाएं और एक कुछ वेरिएशन लाके बनाएं और कुछ इंटरेस्ट के साथ बनाएं, तो एक अच्छी चीज बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको कंज्यूम करने में। डॉक्टर अनुपम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे हैं मोनी दीपा मैम से, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी बताई, तो जब आप एज अ डॉक्टर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो बहुत एक्सट्रीम लू लगने के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण आता है, तो किस तरह के आप पे उनको सजेस्ट करते हैं फॉर रिकवरी?
2: देखिए, हम लोगों के पास जब कोई आ जाता है मरीज जिसको कि लू लग गई होती है या कई बार कहते हैं सरसाम हो जाता है जैसे, तो हीट से इलनेस हो गई है, तो उसको हम लोग यूजुअली तो सादा पानी अगर नहीं है कुछ तो हम लोग कहते हैं, नहीं तो हम लोग तरल पदार्थ वाला देते हैं, जैसा मोनी दीपा मैडम ने कहा, बहुत सही कहा इन्होंने कि आपको जो है पानी में मिनरल्स डालने पड़ेंगे तो उसके लिए देते हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नींबू पानी है या बेल का शरबत है, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें आप अच्छे से दे सकते हैं, लस्सी है तो दही है, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। अब अगर अस्पताल में आता है तो फिर हम लोग जो है लिक्विड जो देते हैं तो फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, तो उसमें अलग तरीके का देते हैं, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट अगर उसके कमी है तो ओआरएस का घोल हम लोग पिलाते हैं, तो ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं। तो आप अगर वैसे सादा पानी समझिए, तो पानी जरा एक चुटकी नमक, जरा सी चीनी, ये डाल करके और नींबू डाल करके एक अच्छा पेयजल बन जाता है जो कि पूरी तरीके से पौष्टिक होता है। तो हम लोग अस्पताल में तो अब श्रोताओं के लिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें एसेस करना पड़ता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि कितना डिहाइड्रेशन है
1: जी, बिल्कुल,
2: और ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कैसी चल रही है, नब्ज कैसी चल रही है,
1: हर पेशेंट का अलग
2: है, वो उस हिसाब से अलग है। लेकिन श्रोताओं के लिए मेरे हिसाब से जरा सी चीनी, अगर डायबिटीज नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो जरा सा नमक और नींबू डाल करके पानी में एक बहुत अच्छा पेयजल बन जाता है, जो आसानी से हर कोने में, भारत के भी और विश्व के भी हर कोने में चीज मिल जाती है। बाकी अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसा मोनी दीपा जी ने बताया, आप लस्सी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो आप दूध के कई तरीके के प्रकार की चीजें हैं जो आप बना करके ले सकते हैं
1: जी।
2: तो प्रोबायोटिक्स वाली चीजें कई मिलती हैं, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत सही बात है कि स्ट्रीट वेंडर्स जब तक ऑथोराइज नहीं है तब तक आप नहीं लीजिए, क्योंकि इस गर्मी में ना सिर्फ गर्मी से लेकिन और बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना रहती है, और अगर आप किसी अनऑथोराइज वेंडर से लेते हैं तो ये जो मौसम होता है मई जून जुलाई, तो इसमें वाटर बॉर्न डिजीजेस, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, ये सारी चीजें बहुत होती हैं, और ये तो ज्यादा सीरियस डिजीजेस हैं, लेकिन बाकी जो है डायरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां भी बहुत संभव है कि हो जाएंगी।
1: जी जी, और खासतौर पर हम सुनते हैं गर्मियों में पेट संबंधी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये कारण भी जुड़ता है, पानी का तो है ही कारण कि साफ पानी नहीं पिया या खाना जो है रखा हुआ बना
2: घर
1: हुआ
2: में बना हुआ खाना और ताजा खाना, ताजा ये दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में जैसा मोनी दीपा जी ने भी कहा, रात का बना खाना अगर आपने सवेरे खाया तो कई बार वो खराब हो जाता है
1: क्योंकि बहुत गर्मी में इजीली वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं उसमें। यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी रीना जी कि बहुत सारी बातें अभी हमने की पेय पदार्थों के बारे में, अभी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि और सारे राज्यों की बात अभी छूट गई है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ओआरएस घोल है जो बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है नमक और चीनी मिलाकर, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे आसानी से बनने वाले कुछ ड्रिंक्स हैं जो आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
3: इसमें आयुर्वेद में खजूर आदि मंत्र एडवाइज्ड है टेक्स्ट बुक में, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, इसमें

0: इमली डालते हैं, एक वृक्ष अम्ल एक प्लांट है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुनक्का, इमली, खजूर, आंवला और अनार, चार गुना पानी में इसको भिगो देते हैं 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैश करके छान के पी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको और पतला कर सकते हैं। अगर किसी को मीठा डालना है तो गुड़ या चीनी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं। अब इसमें जो खजूर है और मुनक्का है ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए आंवला तो सबको पता है कंप्लीट रसायन है, अनार वैसे ही बहुत अमृत है वो बॉडी के लिए। तो देखो कितने चुन चुन के आयुर्वेद में उसमें डाली गई हैं चीजें जो बिल्कुल सारी ठंडी हैं और आपको ऐसा एकदम ओआरएस से ज्यादा बेटर शायद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी ये, कि अगर आपको अगर घबराहट हो रही है और गर्मी लगी और ये करे आपने ड्रिंक पी ली तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको जरा भी वीकनेस रहेगी। ये रूटीन में दे सकते हैं गर्मी में, बच्चों को भी, बड़े भी ले सकते हैं। शुगर नहीं है तो बिना शुगर के इनको ही मिक्स करके आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, अनंता, आम, कमल, किशमिश, गुलाब की पत्तियां, चंदन, उशीर यानी खस, खस की ठंडाई बनाते हैं लोग रात को भिगो के, सुबह ग्राइंड करके दूध में, बादाम वगैरह भिगो के वो भी उसमें डालते हैं, ऐसा कुछ घरों में बनता है सुबह ये ड्रिंक। ठंडाई जो आजकल बनी बनाई आती है ये उसका घर पे बनने वाला वर्जन है, कि रात को उसको भिगोते हैं, सुबह अच्छे से उसको पीसते हैं, दूध डाल के, थोड़ा पानी डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, थोड़ा सा काली मिर्च भी डालते हैं उसमें, एंड दिस इज वेरी गुड इन दिस समर सीजन। ये अक्सर बड़े लोग पहले पीते थे। और ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक यूज करके उसका ड्रिंक बना के भी घर पे पी सकते हैं। लेमन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दिस इज वेरी गुड, चंदन सबको पता है उसको भी पानी में घोल के चीनी डाल के ले सकते हैं, खस, किशमिश, गुलाब, कमल और अनंता ये कॉमन ही है बट बाकी चीजें आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं एडवाइस करूंगी, किशमिश, मुनक्का, खजूर, काश्मीरी एक चीज आती है और फालसा, आजकल का सीजन है फालसा बहुत आता है उसमें, तो इन चारों को भी ग्राइंड करके मिक्सी में और उसके बाद एक ड्रिंक बन सकता है। और अगर आप इजाजत दें शालिनी जी तो मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रिंक्स बताए थे 3-4 ड्रिंक्स की रेसिपी बता दूं शायद।
1: हाँ, तो ये मैं रेसिपी जरूर आपसे सुनूंगी। अभी मुझे और भी बहुत सारी बातें मोनी दीपा जी से भी पूछनी है, सर से भी पूछनी है, पर यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। डॉक्टर साहब कौन सा गीत आपको अभी याद आ रहा है या बहुत पसंद है आपको?
2: सुख के सब साथी दुख में ना कोई।
1: चलिए तो ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम लौटेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और अभी रीना जी से हम कुछ रेसिपीज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोनी दीपा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका खास तौर पर जिक्र किया है, जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सत्तू के शरबत के बारे में उन्होंने कहा है, और इनको सुपर फूड भी सत्तू को कहा जाता है न्यूट्रिशन की दृष्टि से। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कोंकण और गोवा की शान कोकम शरबत और सोल कढ़ी, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि एसिडिटी कम करती है। और दक्षिण भारत के पारंपरिक ड्रिंक्स जैसे पानकम, नीरमोर, संभाराम, उड़ीसा का बेलपना, इन सब की भी बात उन्होंने की है, तो इनकी खासियत भी जानना चाहूंगी, इन सब के बारे में बताइए।
1: सबसे पहले बात करते हैं सत्तू की।
0: जी,
1: इसको हम एक्चुअली वे पाउडर से कंपेयर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का सुपर फूड है कि इसकी कंपैरिजन वे पाउडर से की जा सकती है, जो कि 10 गुना महंगा है इससे, परंतु इसमें उसी प्रकार का कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। जी, सत्तू भुने हुए चने को पाउडर करके बनाया जाता है, इसीलिए ये पल्स बेस्ड प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये घर पे ही बनता है या इसमें सिर्फ ग्राइंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है, तो ये मिनिमली प्रोसेस कैटेगरी में आता है, और इसी कारण से इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में रहते हैं, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ही एनर्जी रिलीज करते हैं।
0: तो काफी समय तक ऐसा लगता है कि आप
1: पेट भरा महसूस होता है, क्योंकि इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो रहता है, तो ये स्थिर ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं लंबे समय तक। तो आप 4-5 घंटे आराम से टिक सकते हैं सत्तू के 2-3 चम्मच ड्रिंक बनाकर। और सत्तू का ड्रिंक बनाना आसान है, आप 3-2 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी 1 गिलास के करीब डालिए, काला नमक डालिए, उसमें भुना जीरा, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, और चीनी, गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार से डाल सकते हैं। तो ये ड्रिंक अपने आप में 100 ग्राम सत्तू, क्योंकि आपको 20 ग्राम प्रोटीन देता है, और इसमें फाइबर्स हैं, इसमें लीन प्लांट प्रोटीन्स है, तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, इसीलिए सत्तू को सुपर फूड कहा गया है। और इवन कॉलेज के बच्चे, जिम गोअर्स, स्पोर्ट्स पीपल, इन सभी लोगों के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये बहुत ही कंप्लीट फूड है। तो सत्तू पेट भी भरता है और ताकत भी देता है।
0: जी, जी।
1: इसके बाद हम बात करते हैं कोकम की, जो गोवा और कोस्टल एरियाज में बनता है, क्योंकि उन इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, इसलिए कोकम वहां अवेलेबल रहता है। कोकम एक प्रकार का आप फंक्शनल फूड की कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं, और फंक्शनल फूड वो फूड कैटेगरी है जो बियॉन्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो ये एक प्रकार का एक अपने आप में ही अनोखा एक फूड इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड इसका प्राइम इंग्रेडिएंट है। हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड तो आपको समर की इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता ही है, परंतु इसके अलावा इसका एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है गार्सिनॉल। गार्सिनॉल अपने आप में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है, ये पेट को ठंडा रखता है और पेट से जुड़ी हुई जो ये एसिडिटी और जलन की समस्याओं को कंट्रोल में करता है। और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इतने पोटेंट है कि वो कई बार कंप्लीट बाकी विटामिन से काफी स्ट्रेंथ, इनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है जो कोकम शरबत में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इट इज लोडेड विद कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो कोकम एक कंप्लीट फंक्शनल फूड है, और कोकम शरबत केवल भारत में भी हम इसको पी सकते हैं। सोल कड़ी

0: और नीर मोर की भी बात करी है प्रधानमंत्री जी ने। नीर मोर दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है और नीर मोर का यदि हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, नीर पानी को कहते हैं और मोर इज बटर मिल्क, तो अच्छा। पानी वाला बटर मिल्क, तो ये डाइल्यूटेड बटर मिल्क का ही फॉर्म है जो हम उत्तर भारत में लस्सी छाछ पीते हैं। नीर मोर उसी का ही एक पतला वर्जन है। इसमें काफी मात्रा में 3 से 4 गुना मात्रा में पानी डाला जाता है और फिर इसमें हींग, अदरक जैसी और पेपर, पुदीना, इस तरह का हरी मिर्च का भी तड़का लगाया जाता है। तो इस तरह से ये एक उनका छाछ है, ये भी प्रोबायोटिक ड्रिंक है और क्योंकि इसमें अदरक, कड़ी पत्ता का तड़का लगता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी मात्रा में हमें हरी पत्तियों से आयरन भी मिला। अदरक डाइजेस्टिव होता है तो ये, क्योंकि हमारा अपच की समस्या गर्मियों में बढ़ती है, डाइजेशन थोड़ा धीमा पड़ता है गर्मियों में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं सोल कड़ी की। सोल कड़ी भी एक प्रकार की प्रोबायोटिक बेस्ड एक रेसिपी है और जिस जिस खाद्य पदार्थ में हम प्रोबायोटिक, दही, लस्सी जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें अपने आप में हमें एक्टिव बैक्टीरिया के बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे हम उसको कड़ी के फॉर्म में खाएं, चाहे हम उसको लस्सी छाछ या हम उसको सांबरम के रूप में या नीर मोर के रूप में खाएं। इन सभी में जो जो मसाले पड़ रहे हैं, अगर जीरा पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा पोटेशियम दे रहा है, काला नमक पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा सोडियम दे रहा है, तो हम जो जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिला रहे हैं उस प्रकार से हमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते रहते हैं। तो ये जितने भी हम ट्रेडिशनल हर्ब्स, स्पाइसेस और प्रोबायोटिक्स मिला के ड्रिंक्स बनाते हैं वो अपने आप में एडेड हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, गट माइक्रोबायोम को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इनके बहुत बेनिफिट्स हैं।
1: फिजिकल मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में तो खैर कहा जाता है कि आप बैठ जाते हो एक जगह, पर गर्मियों में भी हम देख रहे हैं क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है उसमें हम फोन, मोबाइल, टीवी, इसके कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहां पर लाइफस्टाइल का काफी रोल बताया गया है और उसमें योग, प्राणायाम और ध्यान, इस पर भी काफी स्ट्रेस दिया गया है कि इससे भी तनाव कम होता है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उस पर कुछ बताएं। और कुछ ऐसे प्राणायाम भी होते हैं जो खास तौर पर गर्मियों में करने के लिए कहा जाता है?
2: जी शालिनी जी, सुबह अगर शीतली प्राणायाम करें या जब भी आपको गर्मी लग रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शीतलता आती है। इस पे बहुत रिसर्च हुई हुई है कि ये शीतलता प्रोवाइड करता है। और अगर हम योगा, जिम, एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो हमें सुबह करना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बहुत ज्यादा रिग्रेस एक्सरसाइजेस हम विंटर्स में एडवाइज करते हैं, समर्स में नहीं करते। बट क्योंकि आजकल के लोग सारा दिन भी कोई काम नहीं करते, ज्यादातर लोग सेडेंटरी वर्कर हैं और नहीं भी हैं तो काम कम करते हैं, तो इसलिए सुबह एक्सरसाइज जरूर करें और उसके बाद ओवर एक्सर्ट ना करें, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करें और जितने भी योगा हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करें ताकि गर्मी में आपको ना निकलना पड़े और आप आराम से उसके बाद नहा धो के बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सम्यक दिनचर्या में कह सकते हो।
1: तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम कि किस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है, क्योंकि बहुत आजकल केसेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के?
3: देखिए, लाइफस्टाइल का, रहन सहन का रोल तो हर चीज में है और बीमारी के बचाव में बहुत ज्यादा है। गर्मियों में तो बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यायाम करें, लेकिन इसको ध्यान रखें कि व्यायाम आप ठंडे समय में करें, तो अर्ली मॉर्निंग करें जहां तक संभव हो, और दिन में तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप को शाम को कर सकते हैं तो फिर खाने के बाद या शाम को खाने से जस्ट पहले करें। खाने के बाद आप बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जर्ट नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा व्यायाम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाने से जस्ट पहले कर सकते हैं। लेकिन वो भी एहतियात बरतनी पड़ेगी क्योंकि जब लू चल रही होती है तो रातें भी गर्म होती है और उस समय फिर बाहर जा करके आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शरीर का चलना जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि बैठने से काम नहीं होता, सर्दियों में तो लोग बैठ जाते हैं, इन गर्मी ऐसा मौसम है जबकि आपको चलना चाहिए और व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पर ध्यान रखें कि जो लोग अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वयस्क लोग हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब वो व्यायाम कर रहे हैं तो साथ में कुछ तरल पदार्थ वाला पानी रखें या पानी पीने के बाद व्यायाम करें या व्यायाम करने के बाद फौरन पानी लें, क्योंकि जब भी आप व्यायाम करेंगे तो थोड़ा पानी, पसीना तो आप लूज करेंगे ही और पसीने के साथ तरल पदार्थ भी लूज करेंगे, तो उसको जो है शरीर में रिप्लेनिश करना, आपूर्ति करना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान देकर के व्यायाम करें। बहुत ज्यादा जिनमें एनर्जी लग रही है या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको ध्यान दे। ऐसे में जिन लोगों को बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिल की, उनको जो है बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर से पूछ करके तभी व्यायाम करना चाहिए या कोई नया

0: व्यायाम शुरू करना चाहिए।
1: जी चालीन जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें, समर्स में सबको अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा नैप जरूर लेना चाहिए आफ्टरनून में, उससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और आप बाकी रात तक आप काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है ग्रीष्म ऋतुचर्या में कि समर्स में हो सके तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए हमें।
2: और मोनी दीपा जी, हमने बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात की, पर एक ड्रिंक और है जो दक्षिण भारत में बहुत पॉपुलर है और पारंपरिक ड्रिंक्स में शामिल होती है, वो है पनकम। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
3: पनकम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित ड्रिंक है और ये बहुत ही पतला रसम जैसा एक बेवरेज है। ये इसके तीन ही मेजर इंग्रेडिएंट्स है, इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें पेपर पड़ता है और इसमें जिंजर, सूखा जिंजर जिसको सौंठ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कैलोरीज, क्योंकि ये बेसिकली वाटर बेस्ड ड्रिंक है तो इसमें कैलोरीज 100 से भी कम रहती है, तो काफी वेट वॉचर्स के लिए भी इस तरह का ड्रिंक फायदेमंद है और इसमें बाकी चीजों का भी कोई लोड नहीं है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये जैगरी बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ में आयरन रहता है और साथ में इसमें पेपरिका, पेपर का इस्तेमाल किया गया है, तो पेपरिका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में काफी मदद करता है। ये एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है उस न्यूट्रिएंट के साथ, तो पेपरिका पड़ा हुआ जैगरी तो उसमें से आयरन एब्जॉर्प्शन काफी बढ़िया रहता है, तो पेपरिका और गुड़ का ये बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशन किया गया है। और पेपर का इसके अलावा भी एक रोल है, पेपर आपको गर्मियों में भी हमारे ब्रीदिंग कंजेशंस को ये रिलीफ करता है। ब्रीदिंग की समस्या आजकल पोल्यूशन के कारण गर्मियों में भी रहती है, तो पेपरिका, क्योंकि इस ड्रिंक में रहता है पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं, तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड समर कंजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये ड्रिंक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चों को खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन की काफी समस्या रहती है, तो पानकम अपने आप में एक कंप्लीट लिक्विड वाटर बेस्ड ड्रिंक है, प्लस इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं।
2: जी, एक आध ड्रिंक्स और बच गई थी जो मैं चाहूंगी कि वो भी श्रोताओं तक पहुंचे। एक तो उन्होंने बताया था संभाराम और ओडिशा का बेलपन्ना।
3: जी, संभाराम एक प्रकार का पनकम का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की तरफ पनकम को ही संभाराम के रूप में का नाम दिया गया है। इसका बेसिक फॉर्म्यूलेशन पनकम जैसा ही है और कई लोग इसमें गुड़ ना डाल के मिश्री डालते हैं, पर मोर और लेस इसके मेजर थ्री इंग्रेडिएंट संभाराम और पनकम के सेम ही है। बेल शरबत उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है और बेल शरबत भी अपने आप में एक फंक्शनल फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बेल में पाए जाने वाले टैनिन्स जो हमें चाय से भी मिलते हैं, हमें कॉफी से भी मिलते हैं, बट बेल में पाए जाने वाले ये टैनिन हमारे डाइजेस्टिव स्लगिशनेस जो समर्स में आती है उसको रिलीफ करता है। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों चीजों से ये टैनिन हमें सेव करता है और बेल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो विटामिन सी युक्त कोई भी बेवरेज आपकी समर इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, लू से बचाता है, और विटामिन सी बीइंग एंटीऑक्सीडेंट तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हमारे जो सेल्स में गर्मी की वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में डैमेज होता है उसको ये हील करता है। तो बेल रस अपने आप में बहुत ही एक थेरेप्यूटिक ड्रिंक जैसा है और ये भारत में आजकल उड़ीसा के अलावा बाकी कई क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात हुई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बीच में चाय कॉफी का जिक्र किया, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, मैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश से करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉमन है और इंडिया में और खासतौर पर अगर वर्किंग करें, वर्किंग भी नहीं घर में भी अगर हम रहते हैं तो बहुत ही इजीली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, हम कहते हैं अरे चाय पी लो, कॉफी पी लो, तो ये सही है कि नहीं? मतलब बाकी ड्रिंक्स की तो हम बात कर रहे हैं पर विच इज द मोस्ट कॉमन उसकी बात हमने नहीं की है, तो वो भी
0: देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोग चाय कॉफी या जैसे कि पहले बात हुई कि बच्चे लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कैफिनेटेड बीवरेजेस पीते रहते हैं, लोग ड्रिंक करते रहते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये सब नुकसानदेह हैं। ये सब हालांकि लिक्विड हैं, मतलब सब तरल पदार्थ है मतलब, लेकिन ये सब जो है ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें जो कैफीन होता है या टैनिन्स होते हैं ये थोड़ा डायरेसिस करते हैं, मतलब पेशाब बढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आप पानी पीते हैं लेकिन इनमें जो तत्व होते हैं टैनिन्स या कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफिनेटेड बीवरेजेस होते हैं, तो वो जो है वो आपको यूरिन बढ़ाते हैं, तो ये लेने से आपका ना डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है बल्कि नॉर्मल आदमी में भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्मियों में चाय या कॉफी जैसे पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर में पानी की कमी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
2: जी जी, तो गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय इस

0: पर हमने बहुत सी आज यहाँ पर चर्चा की और इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन शैली, उचित आहार, पर्याप्त जल सेवन और हमारे पारंपरिक भारतीय पेय जो है वो अगर हम नियमित उनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार स्थानीय और पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थों को अपनाने का आह्वान किया गया है वो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है बल्कि स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर आप निकाल कर आए हैं, विचार हमारे श्रोताओं तक साझा किए हैं। हमारे साथ मैं बता दूं इस चर्चा में शामिल रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में। हमारे साथ रही डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेद विशेषज्ञ और हमारे साथ थी मुनी दीपा तालुकदार, आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
0: और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर्याप्त पानी पिएं और इस गर्मी में अपने पारंपरिक पेय पदार्थ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य में लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्मार्ट डिजिटल गाइड के रूप में NZP साथी ऐप लॉन्च किया और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाकर चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं सुरभि, प्रोग्राम है गीत सुहाने। चलिए आगाज करते हैं गीत सुहाने का। बहुत खूब कहा है किसी ने कि आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया, आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया, सहते सहते हमको आखिर रंज सहना आ गया। सहल हो जाएगी मुश्किल जब सोजो सास की बातें होंगी, खूने दिल को आंख से जिस रोज बहना आ गया। मैं किसी से अपने दिल की बात कह सकता न था, अब सुखन की आड़ में क्या कुछ ना कहना आ गया, आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया, सहते सहते हमको आखिर रंज सहना आ गया। तो चलिए आगाज करते हैं श्री 420 फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश, रफी और लता मंगेशकर और साथियों ने आवाजें दी हैं।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि समझता हूं मैं सब कुछ सिर्फ समझाना नहीं आता, समझता हूं मैं सब कुछ सिर्फ समझाना नहीं आता, तड़पता हूं मगर औरों को तड़पाना नहीं आता, मेरी जीस्त खुद एक मुस्तकिल तूफान है अख्तर, मुझे इन गम के तूफानों से घबराना नहीं आता, समझता हूं मैं सब कुछ सिर्फ समझाना नहीं आता, तड़पता हूं मगर औरों को तड़पाना नहीं आता।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं दिल को चीर के रख दूं ये एक सूरत है, मैं दिल को चीर के रख दूं ये एक सूरत है, बयां तो हो ही नहीं सकती जो अपनी हालत है। मेरे सफीने को धारे पे डाल दे कोई, मैं डूब जाऊं कि तैर जाऊं मेरी किस्मत है। मैं दिल को चीर के रख दूं ये एक सूरत है, बयां तो हो ही नहीं सकती जो अपनी हालत है।

वो इत्तेफाक से रस्ते में मिल गया था मुझे, वो इत्तेफाक से रस्ते में मिल गया था मुझे। मैं देखता था उसे, वो देखता था मुझे। मैं जानता हूं कि बरसों से जानता था मुझे। तलाश कर न सका फिर मुझे वहां जाकर, गलत समझ के खो दिया उसने मुझे। वो इत्तेफाक से रस्ते में मिल गया था मुझे। मैं देखता था उसे, वो देखता था मुझे।

तो इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। अनिर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुष

की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। और चलिए आगाज करते हैं साजन फिल्म के इस गीत के साथ।

राज सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। मैं तो समझा था जिस वक्त मुझको वो मिलेंगे तो जन्नत मिलेगी। मैं तो समझा था जिस

0: अंदाज अपना अपना फिल्म का ही गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में। और चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म है हम आपके हैं कौन।
1: टेन नाइन एट सेवन

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए आप सुनवाते हैं आपको सैनिक फिल्म का गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में।

गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। और चलिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भूकंप भूटान में आज देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान या जानमाल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोवोली को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फिलिप चैट्रियर कोर्ट पर खेले गए 4 घंटे 20 मिनट के मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:09। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हमारे जीवन में साथ का बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो उस गीत की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है।

जी हाँ, जब प्यार इतना अनमोल हो, दोस्ती इतनी अनमोल हो, रिश्ता इतना अनमोल हो, तो याद क्यों ना रखा जाएगा। बिल्कुल, चाहे दो मिनट का साथ हो, जीवन भर का साथ हो, या थोड़ी देर का साथ हो, साथ अच्छा हो तो राहें जो हैं और भी आसान हो जाती हैं, खुशगवार हो जाती हैं, यादगार हो जाती हैं। जैसे कि इस समय हम और आप साथ साथ हैं हमरा ही कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले इस गीत के बारे में डिटेल आपको बताए देते, फिर वही दिल लाया हूं। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था और आवाजों का जादू मोहम्मद रफी आशा भोसले का। और अब ये रचना क्या कह रही है, रात के रंगीन नजारों का जिक्र कर रही है।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं की रचना, 1949 रिलीज, इस फिल्म का नाम दुलारी। की ओर बढ़ते हैं, एक और ऐसा गीत जिसमें साथ का महत्व खुद ब खुद पता चल रहा है, पुकारा जा रहा है अपने मितवा को।

मन्ना डे और वाणी जयराम के सुंदर स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम परिणय, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना जिगरी दोस्त फिल्म से। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, युगल गीतों से सजता है ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। समय हुआ है रात्रि के 3:34 कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और अब दिल कुछ कह रहा है, किन का दिल कुछ कह रहा है सुनते हैं। दिल कह क्या रहा है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है।

जी हाँ, दिल तो हमेशा अच्छी बातें ही कहता है, फिर भी दिल को इतना सुनने को मिलता है। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है जी, दिल दीवाना, दिल मस्ताना, और ना जाने क्या क्या हमारे शरीर में। छोटा सा दिल हमारे पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को कहिए कि ये ही चलाता है, लेकिन फिर भी दिल को हम ना जाने क्या क्या कहते हैं। नन्ना सा दिल, प्यारा सा दिल, बहुत कुछ कहता रहता है। कई बार हम इस दिल की मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते। जी हाँ, दिल और दिमाग के बीच ये जो विरोधाभास है, कई बार चलता रहता है। फिलहाल ये गीत आपने सुना तलत महमूद आशा भोसले के स्वरों से सजा, मेम साहेब, ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी 1956 में। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है भाई, बीच बीच में बारिश, गर्मी का मौसम तो है ही, लेकिन कहीं कहीं बरसात हो जाती है, फुहारें बरस जाती हैं, तो तन और मन दोनों को ही प्रफुल्लित कर जाती हैं। अब यहाँ इस अगले गीत में क्या कहा जा रहा है, कुछ इसी तरह की बात है। आइए हम भी कुछ ठंडक ले लेते हैं इस गीत से, इस गर्मी भरे मौसम में।

रोशन का संगीत बद्ध किया। ये गीत अभी आपने सुना साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम चित्रलेखा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

अब ऐसे गीतों को सुन करके कौन दीवाना नहीं होगा. बिल्कुल, ये गीत ही ऐसे हैं, अपना रंग अपना जादू हम पर हमेशा हमेशा छोड़ते हैं. ओपेरा हाउस ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना. ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में. चित्रगुप्त का संगीत था, मुकेश लता मंगेशकर के स्वर थे और गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी. और अब जरा इधर भी चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये. कई बार नींद नहीं आती और हम कहते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही. नींद आने के ना आने के सबब तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों नहीं आ रही नींद. कई बार बेचैनी रहती है, कई बार तनाव रहता है, कई बार अगली सुबह अपने कामों को बिल्कुल पूरी तरह से हम चाहते हैं कि पूरे हो जाएं, जल्दी से उठ जाएं. बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इनका कारण क्या है, कोशिश करते हैं जानने की.

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। प्यारे लाल संतोषी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पोस्ट बॉक्स 999, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1958 में। गिला भी तुमसे है, गिला भी तुमसे है बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुमसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह।

मोहम्मद रफी और आरती मुखर्जी के स्वरों से सजा ये गीत दो दिल फिल्म से था, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। हेमंत कुमार का संगीत था और कैफी आसमी की लिखी रचना थी। साथियों, जीवन में रूठना मनाना इसका सिलसिला भी कई बार चलता ही है। जी हाँ, कभी हम रूठ जाते हैं, कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई गलत फहमी की वजह से भी रूठ मनाई हो जाती है। लेकिन रूठना मनाना अपनी जगह है। रूठना मैं तो कहती हूँ कि कम ही चाहिए, और कोई रूठ जाए तो मनाने वाला भी हो।

ना चाहिए। रूठने का मजा तो तभी है ना जब कोई मनाने वाला हो, जब कोई मनाने वाला ही नहीं है तो रूठने का क्या लाभ है बताइए। इसी तरह के खूबसूरत बानगी से सजा एक गीत आपको सुनवा रही हैं।

साथियों, ये गीत आप सुन रहे हैं पार्श्व में लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों से सजा आस का पंछी। ये फिल्म का नाम 1961 रिलीज फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। ये थी आज के इस कार्यक्रम की यानी हमराही कार्यक्रम की अंतिम रचना। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए, मिलेंगे 4:10 पर अरुणिमा कार्यक्रम में, और इससे पहले आपको समाचार सुनवाएंगे।

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिवसीय जोन सेकंड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन हरियाणा विधानसभा कर रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भूटान में देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इसके झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय पहलवानों ने मंगोलिया में चल रहे उलान बतार ओपन 2026 में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 6 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना धरती फिल्म से। 1970 रिलीज ये फिल्म। शंकर जयकिशन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। और आइए इस सुबह को और भी खूबसूरत बनाएं कुछ अच्छे नगमे सुनकर, सुनवा कर, गुनगुना कर, साथ गाकर।

सुमन कल्याणपुर की स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। मित्रों, जीवन का सफर और भी सुहावना तब हो उठता है जब जीवन साथ कहे ये बात। जी हाँ, क्या बात ऐसी हो सकती है जो कानों को सुंदर लगे और कानों को सुनने में बहुत ही एक सुकून का अनुभव हो और ऐसी बात रूह में उतर जाए। कौन सी बात हो सकती है, सोचिए। गीत तो आपके बिल्कुल आ ही रहा है सामने सुनने के लिए, यानी कि कौन सी बात वो हो सकती है। तो ज्यादा रहस्य ना बनाते हुए बताए देते हैं वो बात, ये वाली बात।

मुकेश के स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। इंदिवर की लिखी रचना, फिल्म का नाम सफर, जो रिलीज हुई थी 1970 में। आशा से भरा, उम्मीद से भरा एक गीत ये भी इस तरह का, आइए सुनते हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज से सजाइएगी। तभी आपने सुना सचिन देव बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम आराधना। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों,
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। मदन मोहन का संगीत था, इंदिवर की लिखी रचना, फिल्म का नाम छोटे बाबू, जो रिलीज हुई थी 1957 में। मित्रों, जो भी रिश्ता जुड़ता है उसमें कोई ना कोई पहली पहचान तो अवश्य ही होती है। जब पहली पहचान होगी तभी कोई रिश्ता जुड़ेगा, बनेगा, आगे तक चलेगा। कारण उस पहचान का जो भी हो, उसी पल भर की पहचान को बताता ये सुंदर गीत। आइए सुनते हैं।

मन्ना डे की आवाज से सजी अभी आपने ये गैर फिल्मी रचना सुनी और अब इन गीतों को कौन भुला सकता है, कोई नहीं। इसी तरह का गीत ये सुंदर बानगी लिए आइए सुनते हैं।

बिल्कुल साथियों, ये गीत हमारी रूह में बसे हैं, कभी नहीं भुलाए जा सकते ये गीत। इन गीतों को बार बार बारंबार सुनने का जी चाहता है। पगला कहीं का इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। 1970 रिलीज फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शंकर जयकिशन का

गीत और हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं। कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है इस समय अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके मित्र नीता अग्रवाल। प्रातः की 4:46 हो चुके हैं। ऐसे गीत सुने के तो मुझे लगता है नींद अपने आप ही गायब हो जाती है, क्योंकि ऐसे गीतों को सुनने का जी चाहता है। इसी तरह का एक और गीत आशा उम्मीद से भरा आपको सुनवाते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना डॉक्टर विद्या फिल्म से। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, सचिन देव बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

दुनिया झुकती है इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज से सजा। 1960 रिलीज ये फिल्म साथियों हेमंत कुमार का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की रचना। और अब ये सुंदर गीत सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर एहसास कराता ये खुशनुमा गीत है।

मन्ना जी, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत राहगीर फिल्म से अभी आपने सुना। 1969 रिलीज फिल्म गुलजार की लिखी रचना थी, हेमंत कुमार का संगीत। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आशा उम्मीद का दामन थामे ये रचना।

कार्यक्रम अरुणिमा की अंतिम रचना आप सुन रहे हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में। तेरे मेरे सपने इस फिल्म से 1971 रिलीज है फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत, नीरज की लिखी रचना। इसी गीत रचना के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे 5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ, और इससे पहले आपको समाचार भी सुनवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।